शांति और ऊर्जा के साथ करने की, तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: दिव्य दर्शन के एक और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र प्रोग्राम में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हम हमेशा बात कर रहे हैं कि ये विषय गूढ़ है, ये मजे मजे का विषय नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से हम कुछ ऐसे प्रबुद्ध इंसानों को, प्रबुद्ध व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं जिससे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ समझा हो और हमें वो उस बात को समझा सके। तो आज मेरे साथ जो मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारे साथ हैं, वो हैं अनिल गौड़ साहब। बाकी मैं अनिल गौड़ साहब से ही प्रार्थना करूंगा, उनका आभार व्यक्त करते हुए, उनका स्वागत करते हुए, कि अनिल जी अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, जिससे कि हमारे जानने वाले जो इस हमारे सुनने वाले जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो अनिल जी के साथ आध्यात्मिक तौर पर जुड़ सकें। तो अनिल जी बहुत बहुत आभार है आपका जो आप आए। अब आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें परिचय दीजिए, भला आप कौन हैं?
2: हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार आपको समीर जी। और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि आप कौन हैं, और ये जो कौन का जो जवाब है यही स्पिरिचुअलिटी में छुपा होता है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम क्यों हैं। और इसी का जवाब जब मिल जाता है लोगों को

0: वो निश्चित तौर से आगे बढ़ जाता है। जहां तक मेरा सवाल है, जो मेरा परिचय है वो ये, मैं कानपुर शहर का निवासी हूँ और आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। और जहां तक भगवत भक्ति की बात है, स्पिरिचुअलिटी की बात है, तो ये संवेदनाओं का विषय है। और चूंकि मैं कलाकार हूं, तो जाहिर सी बात है कि कलाकार संवेदनशील होता है और वो आसपास जितनी भी घटनाएं घटती हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं कानपुर शहर में रहता हूँ, भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता हूँ, संगीत का विद्यार्थी हूँ, गीत वगैरह गाता हूँ, और साथ में एक अभियान चला रहा हूँ अपनी तरफ से कि स्पिरिचुअलिटी, धर्म, रिलीजन और इससे जुड़ी जो विषय हैं, जिसमें काफी कुछ भ्रांतियां भी हैं लोगों के मन में, काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सही रास्ते पर नहीं जा रही, तो क्यों ना उन्हें जागृत किया जाए अपने भजनों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से। तो वो प्रयास मैं करता रहता हूँ, मेरे लेख अखबारों में भी छपते हैं। और ये जो आपके पास आपने जो हमें बुलाया है और इसके लिए आपने जो इंटरव्यू किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं अपने विषय को कह पाऊंगा। बाकी तो बस ये ऐसे ही है, बस एक छोटा सा प्राणी हूँ इस धरती पर और अपना प्रयास, अपना कर्तव्य कर रहा हूं।
1: बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी परिचय, बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ताकतवर। आपने बहुत ही प्यारी बात कही अनिल भाई की। आप कोशिश कर रहे हैं आध्यात्म, धर्म, सनातन, इन सब चीजों के बारे में लोगों को और ज्यादा पहचान कराने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको जगाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ही, मेरे दिमाग में अचानक ये सवाल कौंध गया है आपके बात करने से कि इसकी क्या आवश्यकता है। अनिल भाई, जो आप कोशिश कर रहे हैं, सचमुच बहुत ही ज्यादा उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। तो लेकिन एक साधारण इंसान होने के नाते, मैं एक बिल्कुल ही साधारण सा व्यक्ति हूं, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो आपकी कोशिश है, उससे मैं स्वार्थी होके पूछूं, मुझे क्या फायदा होगा?
0: हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि ये जितने भी स्पीशीज हैं इस दुनिया में आते हैं, जीव जंतु और जितनी भी चीजें आपकी जो पूरी की पूरी सृष्टि में विद्यमान है, इसमें मानव योनि, जिसको ये आदमी बोलते हैं, इंसान बोलते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। और
1: जी
0: श्रेष्ठ इसलिए मानी गई है क्योंकि उसके पास दिमाग होता है और तर्क करने की क्षमता होती है, जो कि जानवरों में नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो तर्क होते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं। अब चूंकि हम बचपन से, जब से पैदा हुए हैं, तब से हमारे माता पिता और हमारे चारों तरफ का माहौल हमें जो भी समझाता है, जो भी बताता है, हम उसी को मान लेते हैं और उसी पे आगे बढ़ जाते हैं। ये ऑलमोस्ट 99% केसेस में होता है कि जो कुछ हमें जन्म से सिखाया गया है, वो हम उसी को मानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भी हमारे कर्म कांड है, जो भी हमारा रिलीजन है, हम ईश्वर को किस रूप में देखते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई जीसस कहता है ना। तो इस तरीके से जो जो जहां पैदा हुआ उसके हिसाब से उसको मिलता है। लेकिन आपको बताएं कि जब जब ये लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें बन गए कि उसमें कुछ धन का या कुछ प्रभाव बना ले, तो ऐसे में वो चीजें कहीं ना कहीं डिरेल्ड हो गई और पटरी से उतर गई, और उसके जो विसंगतियां हैं, जो उसके विकार हैं, वो समाज में देखने को आते हैं। तो उसको ठीक करना, उसे ठीक से बताना और सही रास्ते पे लाना, ये हर बार हर समय पे होता रहा है।
1: साधुवाद, धन्यवाद कि आपने इस चीज को क्लियर किया है कि ये प्रोग्राम या आपने, आपकी जो कोशिशें हैं, आपके जो प्रयास हैं, वो भला हम साधारण मनुष्यों के लिए जरूरी क्यों हैं। तो मुझे जो समझ में आया आपकी इस व्याख्यान से, आपकी इस बातचीत से, या जो आपने अभी बताया मेरे अपने लिए, कि बहुत बहुत ज्यादातर टाइम हम कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन आपने एक बात ये भी बताई कि हम में तर्क करने की या समझने की या तर्क वितर्क करके उसको सुलझाने की क्षमता है, जो कि जानवरों में नहीं होती। तो हम आपकी बातचीत सुनकर या इस प्रोग्राम को सुनकर कुछ दृढ़ निश्चय कर सकते हैं, कुछ दृढ़ नियम कानून अपना सकते हैं, जिससे कि हम डरे नहीं, कमजोर नहीं पड़े और धर्म को और आध्यात्मिकता को मतलब जो सांसारिक चीजों से है उससे न जोड़कर कुछ और ऊपर उठे। और उसके क्या फायदे होंगे वो अभी हम समझ ही लेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये प्रोग्राम जिस बारे में है, जिस बारे में हम सीखना चाहते हैं, वो है आध्यात्मिकता। तो अनिल जी, प्लीज अपने शब्दों में हमें समझाइए, एक साधारण व्यक्ति के लिए आध्यात्मिकता से हम क्या समझें।
0: हाँ जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। और ये स्पिरिचुअलिटी, मैंने बोला ना कि वो जो तर्क करने की क्षमता है आदमी के अंदर, यानी कि वो कहीं कुछ सोच सकता है, समझ सकता है। तो जाहिर सी बात है, उसका जन्म हुआ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितने लोग, क्या वजह है, हम यहाँ पे क्यों आते हैं और क्या वजह होती है हम चले जाते हैं, ये लगातार प्रोसेस चल रहा है। कौन सी ऐसी शक्ति है जिसने इन सब चीजों का निर्माण किया है? तो इनसे जुड़ने का, इनसे कनेक्ट करने का और इसको समझ पाने का जो हमारे अंदर जो क्षमता है, वही स्पिरिचुअलिटी है। अब स्पिरिचुअलिटी में जाहिर सी बात आती है कि ये सवाल तो पैदा होता है कि ये सारी के सारे ग्रह नक्षत्र, पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण है ना, आकाश गंगा और हमारा पृथ्वी लोक, और इसके बाद सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, तारे भी हैं, ये पेड़ पौधे, झील, झरने, ये सब चीजें रियली हमने नहीं बनाए, ये किसने बनाए, कौन है इसका निर्माता? तो जाहिर से बात है कि सवाल पैदा होता है। फिर दूसरी बात आपको सच बताऊं तो जब इस सृष्टि के निर्माण के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बहुत बड़े फिलोसफर्स ने इसके बारे में शोध करना शुरू किया और अलग अलग तरीके से, साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करी, और बहुत कुछ उन्होंने बताया कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, प्रोटॉन था, ये था, वो था, परमाणु थे, आपस में टकराए, ताकत के साथ तैयार, तो इस तरीके से इन चीजों का निर्माण होना शुरू हुआ। ये उनके अपने लॉजिक्स हैं जिन्होंने अपने हिसाब से इस चीज को ढूंढने की और देखने की कोशिश करी, लेकिन आखिर में उन्होंने ये जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी मृत्यु क्यों होती है और हम जन्म कहां लेते हैं, ये दो चीजें हमारे हाथ में नहीं है कि हम जन्म कहां लेंगे और मृत्यु हमें पता नहीं कि कब होगी, इसका आज तक जवाब नहीं मिल पाया है। साइंस और दार्शनिक इसकी जबरदस्त खोज कर रहे हैं और लगातार चलता रहेगा, यही प्रोसेस है, यही इस पूरी सृष्टि का निर्माण है कि आपको तर्क दिया है, आप तर्क करिए और देखिए कि ये पूरा निर्माण कैसे, इतनी खूबसूरत धरती, इतनी खूबसूरत दुनिया, ऐसे खूबसूरत इंसान, कितने कितने तरीके के चेहरे, कितने तरीके के लोग, कितने तरीके के पशु पक्षी, फूल, पेड़ पौधे, क्या खूबसूरती से बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो चीजें बनी हैं, इनको जानने की कोशिश करना और उससे कनेक्ट करना, जाहिर सी बात है कि पूरी प्रकृति बहुत पॉजिटिव है, इसलिए निर्माण करती है। हमेशा ध्यान रखिए समय जी कि जो पॉजिटिव व्यक्ति होगा वो निर्माण करेगा और जो डिस्ट्रक्टिव होगा वो निश्चित तौर से खत्म करेगा, जो नेगेटिव होगा वो डिस्ट्रक्शन करेगा। और इस तरीके के लोग आते रहेंगे दुनिया में, कुछ लोग पॉजिटिव होंगे, कुछ लोग नेगेटिव होंगे, और यही पॉजिटिविटी लोगों तक पहुंचाई जाए और उनको बताया जाए कि ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई, ये इसके निर्माण के पीछे कौन सा उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है और इस किस उद्देश्य से इसको बनाया गया है। तो इसको जानने की कोशिश करना, इसको समझने की कोशिश करना और मानवता के साथ, मानव लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित करना और खूबसूरत जिंदगी बनाना, एक खूबसूरत दुनिया बनाना, ये हमारा फर्ज है, यही स्पिरिचुअलिटी है सर, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ है।
1: बहुत सुंदर, क्या बात है दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अनिल जी ने किस तरह से आध्यात्मिकता को, यानी कि स्पिरिचुअलिटी को, हमारी प्रकृति के साथ जोड़कर और इसके बनने के साथ जोड़कर समझाया है। तो बात बिल्कुल अनिल जी ने शुरू से शुरू की है कि कब, कैसे, क्यों ये प्रकृति आई और उसको किस किस तरीके से साइंटिस्ट्स ने दिया, दूसरे लोगों ने समझा, और फिर आध्यात्मिकता हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाती है। बहुत सुंदर। तो थोड़ा सा रुकिए, विचार कीजिए जो अनिल जी ने अभी कहा है गहराई से। तब तक उन्हीं की आवाज में गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा भजन हम यहां सुनते हैं। यहां पर मैं ये भी बात जरूर बता देना चाहूंगा कि अनिल गौड़ साहब हमारे आज के कलाकार के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। जब हमारा ये प्रोग्राम आज से 2 साल पहले शुरू हुआ था तो अनिल जी ने उस वक्त हमारा हाथ थामा था और उनकी गायकी अब आप सुनेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। चलिए इस भजन का आनंद उठाइए, मैं वापस लौटता हूं।

0: अति सुंदर, बहुत ही खूबसूरत भजन, हमेशा की तरह वही सधी हुई आवाज और वही सौंधी सौंधी खुशबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अनिल जी, आध्यात्मिकता को अगर हमने एक्सप्लेन कर दिया जैसे आपने बताया, तो एक और शब्द है जो पीछे नहीं रहता, वो भी उसके अगल बगल ही घूमता है, वो है धर्म। तो जरा सा हमें धर्म भी समझाइए। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन टोटैलिटी में, मतलब संपूर्णता में अगर देखें तो धर्म क्या है?
1: हाँ जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका, और यही ये बहुत जरूरी भी है, और यही बहुत सारी बोन ऑफ कंटेंशन भी यही है, मतलब कुल मिलाकर के झगड़े की जड़ भी यही है। अब होता क्या है कि हमारी मानव प्रवृत्ति का स्वभाव होता है कि जो चीज भी हम पसंद करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, धारण करते हैं, उसी को हम श्रेष्ठ मानते हैं, और हम कोशिश यही करते हैं कि बाकी लोग भी इसको समझें और उसी को फॉलो करें। एक एक मानव प्रवृत्ति होती है, इसमें कोई नहीं, हमेशा चलती रहेगी। अब बात आती है कि धर्म की बात आती है, तो धर्म की व्याख्या गलत हो गई और धर्म को गलत तरीके से समझा गया। बेसिकली धर्म जो है वो कहते ना कि मानव धर्म, कि मानव धर्म क्या है, जाहिर सी बात है कि आपके अंदर जितनी भी चीजें हैं जो इस दुनिया में आपको श्रेष्ठ बनाती हैं और दूसरों से जोड़ती हैं, वो धर्म को धारण करने वाली स्थिति, यानी कि आपको क्या क्या धारण करना चाहिए। तो जैसे धर्म के लक्षण बताए गए कि जो धारण करने चाहिए, धैर्य, क्षमा, सद्बुद्धि, स्वच्छता, विद्या यानी शिक्षा, अक्रोध यानी क्रोध ना करना, इंद्रिय संयम और चोरी ना करना, ये चीजें बताई गई हैं कि इस तरीके से। और निश्चित तौर से ये जितने भी मानक हैं, अगर हम सही तरीके से पूरी ईमानदारी से इसको फॉलो करें, तो हमारे कोई भी रास्ते हो जो जिसको हम धर्म कहते हैं, बेसिकली वो धर्म नहीं है। मैंने आपको बताऊं कि मैंने एक भजन लिखा है इसके ऊपर कि धर्म को प्रतीकों से कैसे अलग देखा जाए। तो मैंने जैसे इन सारी चीजों के बारे में बताया कि ये सब चीजें जो धर्म के आते हैं, जो एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए जो मैंने अभी बताया कि धैर्य, क्षमा, सद्बुद्धि, संयम, स्वच्छता, विद्या, शिक्षा, क्रोध, इंद्रिय संयम, चोरी ना करना, ये सब बहुत जरूरी है। बट इसमें दो चीजें जो ज्यादा जरूरी जो मैंने जोड़ी, आपको बताऊं, अगर ये सारी चीजें हों और उसके बाद अगर आपके अंदर करुणा और आपके अंदर प्रेम नहीं है, ध्यान रखिए समीर जी कि करुणा और प्रेम सर्वोच्च है। अगर हम ये सारी चीजें अपने पास रखें, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, इसके बाद अगर हमारे अंदर करुणा नहीं है और प्रेम नहीं है, तो ये धर्म हमारा किसी काम का नहीं रहता है। आपके अंदर करुणा और प्रेम बहुत जरूरी है और यही लोगों के साथ जोड़ता है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने एक छोटा सा भजन लिखा था, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पढ़ के बता दूं।
0: जी
1: आपको, जी जी हाँ जी। तो मैंने लिखा था कि तिलक टोपी पगड़ी क्रॉस, देखिए तिलक सनातन में आ जाता है, टोपी इस्लाम में आ जाता है, पगड़ी सिखिज्म में आ जाता है, क्रॉस आपका जो है क्रिश्चियनिटी में आ जाता है। हाँ जी, हम तो तिलक टोपी पगड़ी क्रॉस तो प्रतीक यार है, मतलब ये सिंबल्स हैं, ठीक है ना, तो प्रतीक यार है करुणा और प्रेम प्यारे धर्म का आधार। अगर इन सारे के सारे प्रतीकों में करुणा और प्रेम को अगर जोड़ दिया जाए तो ये संपूर्ण हो जाता है। और करुणा और प्रेम के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि आमतौर से करुणा उसी पर्टिकुलर पंथ को मानने वाले लोगों के लिए है, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने परिवार के लिए है, नहीं, करुणा शाश्वत होती है, ये सबके लिए होती है और बराबर से होती है। उसमें जितने भी जीव जंतु, जितने भी स्पीसीज आपके पूरी दुनिया में देख रहे हैं, सबके प्रति करुणा होनी चाहिए, मानव के लिए तो होनी चाहिए और दूसरे लोगों के लिए भी होनी चाहिए। और प्रेम, प्रेम अगर आपके अंदर, और प्रेम की जो व्याख्या है यही है साहब कि प्रेम कोई लेने देने की चीज नहीं है, सिर्फ देने की चीज है। प्रेम ऐसी चीज है जिसमें कि सिर्फ सामने वाले को देने का प्रयास किया जाए और उसे कोई भी किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशंस ना रखी जाए, हमेशा उसका भला, उसकी शुभचिंता, यही प्रेम है। अगर ये चीजें आधार हो जाए, बन जाए, तो बहुत अच्छा है। तो तिलक टोपी पगड़ी क्रॉस तो प्रतीक यार है, करुणा और प्रेम प्यारे धर्म का आधार है, ये जनेऊ दाढ़ी बाल तो निशानी मात्र है, करुणा और प्रेम ही तो धर्म का आधार। इसके आगे लिखता हूं, जी जी, मस्जिद चुनवाई तूने, मंदिर तूने गढ़े। देखिए मस्जिद कहीं से नहीं निकली, हमारे पास पर्वत हैं, झील हैं, सागर हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, आकाश गंगा, लेकिन मस्जिद नहीं निकली कहीं से। तो मस्जिद चुनवाई तूने, मंदिर तूने गढ़े, गुरुद्वारा चर्च तेरी मर्जी से है बने, आरती नमाज सुबह शाम तो तू ही करे, गुरुद्वारा माथा टेके शीश गिरजाघर नवे, ये विचार नियम तेरे सब तो कर्म कांड है, करुणा और प्रेम प्यारे धर्म का आधार। तो जितनी भी चीजें हम ये कर रहे हैं, ये सब हमारे कर्म कांड है, ये हों या ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं साहब, अगर करुणा और प्रेम आपके जीवन में है तो निश्चित तौर से आप सबसे ज्यादा धार्मिक है। जन्म सबकी एक जैसी। अब देखिए होता क्या, हम एक दूसरे को छोटा बड़ा करने लगते हैं कि मेरा धर्म, मेरा पंथ, मेरा रिलीजन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ है और इसी को सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। इसका बहुत सारा प्रयास बहुत सारे लोगों ने अपने समय पे करते रहे और अभी भी लगे हुए हैं इस पे। मैं फिर कहता हूं कि जो आदमी जन्म लेता है उसकी उसकी प्रकृति कैसी है। जन्म सबकी एक जैसी, मृत्यु सबसे ना परे। सबके जन्म एक ही जैसे होते हैं साहब, कोई कोई बता दीजिए कि किसी का जन्म अलग तरीके से होता हो, है ना। सबका जन्म एक जैसा है और मृत्यु से सब ना परे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु जरूर प्राप्त करेगा, भले उसने बड़े प्रयास किए हों कि साहब हम अमर हो जाएं। बहुत सारे प्रयास हुए इतिहास में और आप प्राचीन सभ्यता में देख सकते हैं, लेकिन कभी नहीं हुआ। तो जन्म से, जन्म सबकी एक जैसे, मृत्यु से सब ना परे। बचपन जवानी बुढ़ापा से हम सभी बड़े, रक्त मज्जा हड्डी मांस से हम सभी बने। श्वास लेते श्वास छोड़ते यूं ही सब जीवन चले, मतभेद श्रेष्ठता की खिली सब में रार है। देखिए सब यही बात मैं कहना चाहता हूं, मतभेद जो है हमारा एक धर्म से दूसरे धर्म का जो मतभेद है वो श्रेष्ठता की है कि हम श्रेष्ठ है। मतभेद श्रेष्ठता की छिड़ी सब में रार है। रार मतलब झगड़ा है। करुणा और प्रेम प्यारे धर्म का आधार है। धर्म अपना, नियम अपना, वेशभूषा अपनी अपनी, है ना। हमने अपना धर्म बना लिया, हमने नियम बना लिया, अपनी अपनी वेशभूषा बना ली, है ना। धर्म अपना, नियम अपना, वेशभूषा अपनी अपनी, खान पान अपने अपने, चाल ढाल अपनी अपनी, मेरा मेरी तेरा तेरी, आस सबकी अपनी अपनी, सर्वश्रेष्ठ बनने की चाह सबकी अपनी अपनी। सर्वश्रेष्ठ बनने की चाह सबकी अपनी अपनी, अपनी अपनी ढपली है, अपना अपना राग है, लेकिन भाई करुणा और प्रेम प्यारे धर्म का आधार है। हर आदमी अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग सुना रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि करुणा और प्रेम अगर आपके यहाँ से मिसिंग है तो किसी भी तरीके का धर्म आपका नहीं चलता। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं कि भेदभाव जो सिखाए, इसके आगे जाता हूं, भेदभाव जो सिखाए धर्म नहीं हो सकता। आपस में जो लड़ाए धर्म नहीं हो सकता। हत्या कर जीव खाए धर्म नहीं हो सकता। मार सब खुद को जियाए धर्म नहीं हो सकता। मार सब, सबको मार कर खुद को जियाए धर्म नहीं हो सकता। लालच भय दुर्गुण दोनों धर्म शत्रु यार हैं। लालच और भय इन्हीं दोनों चीजों से साफ पूरी दुनिया चल रही है, या तो लालच है या भय है। तो लालच भय दुर्गुण दोनों धर्म शत्रु यार हैं। करुणा और प्रेम करे धर्म का आधार है। ठीक है जी
0: जी।
1: तो एक एक बात आखिरी में कहना चाहूंगा कि धर्म का आडंबर कर पैर जो पुजवाता है, सुनिएगा मेरी बात
0: जी,
1: धर्म का आडंबर कर पैर जो पुजवाता है, धर्म का चोला पहन जो सब जन ठकवाता है। धर्म का आडंबर कर पैर जो पुजवाता है, धर्म का चोला पहन जो सब जन ठकवाता है, धर्म की आड़ में जो जन जन लड़वाता है, धर्म की दुहाई देके स्वयं भू बन जाता है, जगत पिता ऐसों को करता धिक्कार है। ये जगत पिता जिनसे पूरी सृष्टि को रचाया वो तीसरी शक्ति है, वो दिखाई पड़ती है नहीं दिखाई पड़ती है, साकार है निराकार है, निर्गुण है सगुण है, इसके झगड़े में मैं नहीं पड़ता, लेकिन कोई तो है जिसने इसको निर्माण किया है। तो धर्म की दुहाई दे के स्वयं वो बन जाता है, जगत पिता ऐसे को करता धिक्कार है। करुणा और प्रेम ही प्यारे धर्म का आधार है। तो जो आपने धर्म की बात करी सर, उसके बारे में बस एक ही बात कहूंगा, समझे कितनी बात हमने कही है। जो ये बात समझने की है कि करुणा और प्रेम जिनके अंदर है वही धार्मिक है, बाकी सब तो सब नियम है, संयम है, करुणा और कर्मकांड है। ये सब आप करके कहीं ना कहीं अपने आप को मानते हैं कि आप धार्मिक है। धार्मिक वही है जो करुणा और प्रेम के साथ चलता है।
0: बहुत सुंदर, क्या व्याख्या है और कितनी ही बहुत ही खूबसूरत भजन, जो बहुत कुछ मुझे एक बहुत ही प्यारी सी कविता के रूप में सुनाई दिया। इस बात से अनिल जी, मेरे सामान्य बुद्धि में एक सवाल उठ रहा है कि चारों तरफ हमें यही दिखाई दे रहा है कि आपने कहा ना पीछे कि कोई अपने पैर छुआ रहा है और लोगों को बांट रहा है और लोगों को समझा रहा है। हम चारों तरफ देखते हैं तो अनिल जी, मुझे लगता है 90% से ज्यादा लोग वही हैं जो इनके पीछे जा रहे हैं, और आंखों पर पट्टी बांधकर जितने भी हमारे सो कॉल्ड प्रबुद्ध बाबा जी लोग बैठे हैं चारों तरफ, वो कुछ कुछ बता रहे हैं और करोड़ों की तादाद में उनके पंडालों में भीड़ लग रही है, और कोई उनके खिलाफ क्या, उनकी उनकी अथॉरिटी के ऊपर एक छोटा सा सवाल उठा दे तो लोग तलवारें निकालकर मारने काटने को आ जाते हैं कि आपने हमारे गुरु के बारे में एक ऐसा बोल कैसे दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर बहुत जबरदस्त परेशानी खड़ी हो जाती है इस बात को देख के, बहुत छटपटाहट आ जाती है कि फिर इन सब बातों की सार्थकता कहां रह जाती है अनिल जी, कि हम धर्म को समझें, आध्यात्मिक हो जाएं, क्योंकि ये जो बाबा बैठे हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने तो धर्म और आध्यात्मिकता को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और 90% लोग उन्हीं की तरफ जा रहे हैं, तो बाकी जो बचे 10% जिन्होंने आपकी और मेरी इस प्रोग्राम की बात को समझकर आध्यात्मिकता अपनाई, उनका होगा क्या सर? 90% तो उधर चली गई है, वो 90% जनता इन 10% लोगों को तबाह कर रही है, तो फिर आध्यात्मिकता और धर्म की सार्थकता कितनी रह गई, इसके बारे में थोड़ा बताइए ना।
1: बहुत बहुत अच्छा सवाल है साहब आपका, रियली बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने, और ये सवाल का जवाब एक मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जब कभी अपने प्रोग्राम्स करता हूँ, जब भजनों का प्रोग्राम करता हूँ, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि एक ही व्यक्ति, सुनिएगा मेरी बात, एक ही व्यक्ति किसी चीज को बहुत बड़ा कर सकता है, और वो एक ही व्यक्ति, यानी आपने व्यक्ति को इतनी ताकत मिली है, सृष्टि के निर्माण ने इतनी ताकत दी है कि लगभग वो ईश्वर जैसा ही है, उसके अंदर वो ताकत सारी की सारी समाहित है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि एक सोने का पर्वत है, और उसमें से एक जो उसकी सोने की जो क्वालिटी है, जो उसकी कॉस्ट है, उसमें से अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी निकलता है, तो भले वो छोटा सा टुकड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी कॉस्ट उस पर्वत से कम नहीं आकी जा सकती, उसकी क्वालिटी उसकी कॉस्ट वैसे ही है। तो एक व्यक्ति के अंदर, तो आपने जो निराशा जाहिर करी, निराशा आमतौर से मेरे जीवन में भी आती है कि जिस तरीके से एक बहुत बड़ा समूह ऐसे लोगों को फॉलो कर रहा है, जिनको कैसे समझाया जाए। नहीं साहब, मैं फिर कहता हूं कि एक व्यक्ति पूरे दुनिया को बदल सकता है, और इसके बड़े बड़े उदाहरण है साहब, आप कबीरदास जी को ले लीजिए, बुल्ले शाह जी को ले लीजिए, आप स्वामी रैदास जी को ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, नाम हुए, ये अपने समय पे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं विवादित भी रहे, है ना, सोक्रेटिस हो गए, प्लेटो हो गए, है ना, आर्यभट्ट हो गए, जिन्होंने वास्तव में साइंस के साथ लोगों को धर्म और अध्यात्मिकता समझाने की कोशिश करी, कई बार उनका विरोध भी हुआ, लेकिन आज किताबों में उनको पढ़ा जाता है लोग। तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक व्यक्ति ही बहुत काफी है, आप 100 लोगों को बताते हैं, अगर 100 में से 2 आदमी भी आपकी बात को समझ गए ना साहब, तो निश्चित तौर से दुनिया बेहतर तरीके से चलेगी, और इसको चलने में एक डिसिप्लिन मिल जाएगा। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपने प्रयास करते रहना चाहिए, पॉजिटिविटी ही इस दुनिया को चलाएगी, सकारात्मकता ही चलाएगी, और सकारात्मक अगर आप हैं, आप समझदार रहते कि इतना बढ़िया प्रोग्राम आपने बनाया है, ये बहुत सफल प्रयास है आपका, निश्चित तौर से आज जो सुनने वाले लोग हैं अगर इसको समझ पाएंगे, तो इनमें से अगर 2 लोग भी सुधर गए, तो रियली बता दें आपको कि निश्चित तौर से दुनिया बहुत अच्छे से चलेगी, बहुत अच्छे से निर्माण होगा, इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। हम जितने भी लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, जो भी सकारात्मक लोग हैं, जो इस दुनिया में सबको प्रेम और करुणा के साथ देखते हैं, निश्चित तौर से सृष्टि का हमेशा बैलेंस बना रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। हमें अपने प्रयासों को कमी नहीं करनी चाहिए, ये चीजें दिखती जरूर हैं, लेकिन होता वही है। और एक बात बताएं आपको सर, कि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति पॉजिटिव है और पॉजिटिव लोगों को सुरक्षित करती है, मेरा अपना अटूट विश्वास है साहब।
0: चलिए दोस्तों, सकारात्मक रहते हुए, अपने आप को वापस से अपलिफ्ट करते हुए, विचार करते हुए, एक प्यारा सा भजन और अनिल जी की ही आवाज में हम लोग सुने, उसका आनंद लें, उसे समझें, और फिर अनिल जी के पास वापस प्रस्तुत होते हैं।

0: बिल्कुल ठीक अनिल जी, बहुत ही प्यारा सा भजन और बहुत ही प्यारी गायकी। अब बात थ्योरी से हम लोग प्रैक्टिकल पर आए थे, एक और प्रैक्टिकल बात ही पूछना चाहूंगा जिससे कि लोग बाग उस प्रैक्टिकलिटी को समझ सके, अपना सके कि आपके ऊपर ही बात लेकर आते हैं। छोड़िए ना किसी और साधु की, संत की, बड़े लोगों की बात नहीं करते, क्राइस्ट की या पैगंबर की या नहीं करते, छोड़िए ना, मैं अपनी और आपकी बात करता हूं। हम लोगों को सीखना है, ये लोग तो बड़े बड़े लोग थे जो सिखा के गए। आप अपने बारे में बताओ, आपके दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास क्या क्या हैं, जिससे शायद हमें कुछ हिंट मिल जाए।
1: हाँ जी बिल्कुल सही है। हाँ देखिए, ये जो अभ्यास हैं बेसिकली ये अपने आप को कूल करने के लिए हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपको निश्चित तौर से आप सपोर्ट नहीं मिलता लोगों को, और विरोध ज्यादा होता है कई बार, तो उसमें एक वेलत होता है, एक मन में कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, शरीर में भी और विचारों में भी कहीं ना कहीं होता है इन चीजों को। तो उसको शांत करने के लिए भाई जाहिर सी बात है कि कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, कि जैसे मेडिटेशन है, मेडिटेशन करते हैं लोग। तो भाई मेडिटेशन क्या है, सांसों को देखना, पढ़ना और अपने ब्लड प्रेशर को पूरी तरीके से कूल करना और फ्रेश कर लेना। तो जाहिर सी बात है कि हमें फ्रेश रखना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि जिस तरीके की भौतिक जीवन है, जो पूरा का पूरा सांसारिक जीवन है, इसमें बहुत सारी कठिनाइयां है। कहते नहीं कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, तो रियली हर कदम एक नई जंग है। तो उस जंग से लड़ते हुए आगे बढ़ना है और अपने आप को कूल रखना। अगर आप कूल नहीं रहेंगे, आप ठंडे नहीं रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि स्पार्क आप ही के अंदर से निकलने लगेगा, तो वो किसी और को क्या शांत करेगा। तो मेडिटेशन हो गया, और सबसे बड़ी बात अध्ययन करना, और अध्ययन करते समय इस बात को हमेशा ख्याल रखना। मैंने बार बार बोला कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो सकता है, तो अच्छे विचारों के साथ लोगों के साथ बैठना, उनके साथ बातें करना और वो मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना। ठीक है, मैं फिर कहता हूँ ध्यान लगता नहीं है साहब, मैं प्रैक्टिकलिटी की बात बता रहा हूँ। ध्यान लगाने की जितनी कोशिश आप करते हो उतना ही ध्यान इधर उधर जाता है, भटकता है। तो ठीक है, कुछ लोग इस थेरेपी को भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो फायदा होता है। मैं ये नहीं कह सकता 100%, लेकिन हाँ 10-20% भी अगर आप कूल हो गए, मेंटली आप फ्री हो गए, फ्रेश हो गए, तो निश्चित तौर से आपकी काम की ऊर्जा बढ़ जाती है और आप आगे बढ़ करके अच्छे से अपने काम को कर सकते हैं। तो चाहे भौतिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, इसमें जरूरी है कि हम अपने को फ्रेश रखें और रिफ्रेश करते रहें। और जाहिर सी बात है कि अगर दो चीजें मैं बार बार कहता हूं सर, करुणा और प्रेम अगर आपके अंदर है, आपके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाएगा, आप अपने साथ के लोगों के साथ हमेशा बहुत ही लविंग रहते हैं, उनके बारे में चिंतन करते हैं, उनके बारे में उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने के लगातार प्रयास करते हैं या सोचते ही हैं, तो भी आपको चारों तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और ये जो पॉजिटिव एनर्जी है यही आपको रिफ्रेश करती है। बाकी तो ठीक है, ध्यान लगाइए, सवेरे बैठ करके योगा करिए, और पूजन ध्यान भी उसमें कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है कि आप अगर आप कोई मूर्ति पूजा करते हैं या नमाज पढ़ते हैं या गुरुद्वारा जाते हैं, ये भी आपको कहीं ना कहीं शांति प्रदान करता है और आपको ईश्वर से जोड़ता है, तो वो भी करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
0: जी जी, मैं बिल्कुल ठीक समझ गया। तो ये कुछ अभ्यास हैं जिसमें से अभी जो अनिल जी ने बताया मुझे, उसमें एक चीज पकड़ में आई जिसको मैं अपना सकता हूं, अपनाने की कोशिश करता हूं, और मुझे सच बताऊं दोस्तों अच्छा लगता है। अब आप तय कीजिए कि अनिल जी की बातों से कौन सा अभ्यास आप उठाना चाहते हैं, क्योंकि जैसा अनिल जी ने बताया कि सब लोग सही हैं, उचित हैं, कोई गलत नहीं है। बहुत सुंदर। चलिए तो एक ब्रेक ले लेते हैं एक बहुत ही प्यारे से भजन के नाम, जो अनिल जी ने हमारे लिए इस प्रोग्राम के लिए रिकॉर्ड किया।

0: अति सुंदर, बहुत खूबसूरत, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। तो अनिल जी आगे बढ़े, जाहिर से बात है हमने अभी आध्यात्म की बात करी, उसके पीछे पीछे आते हुए एक शब्द धर्म की बात करी, फिर हमने प्रैक्टिसेस की बात कर ली कि दैनिक अभ्यास हम क्या कर लें। अब एक शब्द और है जो पीछे पीछे है, जिसे समझना जरूरी है, वो है प्रार्थना, प्रेयर। तो आ जाता है हमने ध्यान लगाया या प्रार्थना करी। अब मुझे इनकी या तो समानता के बारे में बताओ अनिल जी, या इनके डिफरेंसेस के बारे में, क्या ये अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो कैसे?
1: हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है, रियली फिर से आपने एक बहुत बेहतरीन सवाल किया। और प्रेयर्स यानी प्रार्थना पे चीजें जो एक पूरा का पूरा कहना चाहिए पंथ है क्रिश्चियनिटी, जो प्रेयर्स पे ही पूरा डिपेंडेंट है, वो प्रार्थना के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। उनके पास ज्यादा कर्मकांड नहीं है, लेकिन प्रार्थना को मूल रूप से गिरजाघरों में जाके करते हैं। मैं हमेशा जो जो जो मैं समझ पाया वो ये कि प्रार्थना आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करते हैं। मीन्स कि जो चीजें आपके बस में हैं, जो कुछ आप स्वयं कर सकते हैं किसी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए, उसकी लाइफ को बेहतर करने के लिए, वो तो आप करते ही हैं। लेकिन जहां पर आपके संसाधन कम पड़ जाते हैं या आप कहीं ना कहीं आपकी कैपेसिटी कमजोर हो जाती है, तो वहां पे हम प्रार्थना करते हैं। और बताऊं आपको, सच बताऊं कि जो ये तीसरी शक्ति है वो ये कहती है कि आप प्रार्थना करें। मीन्स प्रार्थना फिर से सकारात्मक ऊर्जा, जाहिर सी बात है प्रार्थना जो की जा रही है वो उसके व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, यानी उसको बेहतर करने के लिए। तो बेहतरी तो पॉजिटिविटी से ही आती है, और जब ये पॉजिटिविटी एक साथ कई लोगों से इकट्ठी होती है तो निश्चित तौर से उसका आता है रिजल्ट, पक्की बात बता रहे हैं। कहते नहीं दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है सर।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। कई बार मेरे मन में ऐसा विचार आया अनिल जी कि मैं प्रार्थना करता हूं ना भगवान की, या किसी की भी जो मैं प्रार्थना करता हूं, अपने आप को एकाग्र करता हूं, तो भटक जाता हूं और अक्सर अपने लिए मांगता रहता हूं, हे भगवान मुझे स्वस्थ कर दो, हे भगवान मेरी तकलीफें हटा दो, हे भगवान मेरे चारों तरफ सब सुख शांति ला दो, हे भगवान मेरे परिवार को। तो मतलब ये हुआ कि मैं स्वार्थी हो चला हूं, मैं बस अपने लिए मांगे जा रहा हूं। तो यहां पर आपने ये चीज साफ की कि प्रार्थना दरअसल हमें दूसरों के लिए करनी चाहिए, न कि अपने लिए। क्योंकि मुझे जो संदेश मिला वो ये कि अगर आप अगल बगल के और दूसरे लोगों को सुखी कर पाए तो वो सुख आपके पास अपने आप छलक के आ ही जाएगा, तो फिर
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: काहे को मांग के स्वार्थी बने।
1: ना, अभी आपने दूसरे के लिए प्रार्थना करी, मैंने बोला ना कि प्रार्थना दूसरों के लिए होती है, तो जब आप दूसरों के लिए कर रहे हैं तो दूसरा भी तो आपके लिए कर रहा है ना, तो क्या ना रेसिप्रोकल होगी ना।
0: जी आपने सही
1: जब आप किसी की जिंदगी, बिल्कुल सीधी सी बात जी,
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों, अनिल जी की इन बिल्कुल शुद्ध बातों के साथ साथ हम अपने आप को इनके भजनों से भी दूर नहीं रखेंगे। लीजिए ना एक और भजन का आनंद उठाएं पहले।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जाहिर सी बात है अनिल जी, शुरू शुरू में ही आपने प्रारंभ में ही ये बात काफी अच्छे तरीके से डिटेल में हमें समझाई, लेकिन फिर भी हो सकता है सुनते सुनते हम थोड़े भटक गए, क्योंकि मैं ही भटकता हुआ महसूस कर रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज महसूस कर रहा हूं। तो मैं फिर से एक बार फोकस होना चाहता हूं, थोड़ा स्वार्थी हूं तो इसलिए फिर से आपसे पूछूंगा, तो मैं अपने आप को रिवाइज करके संभल जाऊंगा कि क्या आध्यात्मिकता को समझें, धर्म को माने, प्रार्थना करें, ध्यान लगाएं, इससे मेरे फायदे की बात कर रहा हूं, इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, तो क्या ये सब चीज अगर मैं करने लगू तो मेरा टेंशन कुछ कम हो जाएगी क्या?
1: बिल्कुल साहब, बिल्कुल। आप देखिए, समझिए, टेंशन तनाव जो है ना, देखिए तनाव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो जीवन आपको मिला है वो निर्माण के लिए। देखिए, एक बड़े निर्माता ने आपको एक रोल दिया, ठीक है, एक बड़े निर्माता ने आपको एक रोल दिया और वो भी निर्माण का ही काम कर रहा है। एक फिल्म बना रहा हूँ मैं, डायरेक्टर हूँ या प्रोड्यूसर हूँ, मैंने फिल्म का निर्माण किया, अब मैंने आपको हीरो बना दिया। अब ये हीरो एक पूरी इमेज का निर्माण कर रहा है कि वो हीरो है, वो कमजोरों को बचाता है, महिलाओं की सुरक्षा करता है, माता पिता को प्रेम करता है, देश के लिए काम करता है, तो ये निर्माण कर रहा है। तो उस पूरी सृष्टि ने हमको निर्माण के लिए भेजा, पर निर्माण में कष्ट होता है साहब।
0: क्या बात है, चलिए हंसते खेलते तनाव को स्वीकार करते हुए उससे बिना डरे एक प्यारे से भजन का आनंद उठाइए, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत ही प्यारा सा भजन। अनिल जी, बस अब चलते चलते मैं आपसे इतनी सी ही प्रार्थना करूंगा कि हम सब लोगों को 1-2-3 स्टेप बताते जाइए कि किस तरीके से हम आध्यात्मिक हो जाएं और किस तरीके से हम धर्म का पालन कर लें, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टेप्स कि भाई आप ये कर लो, 1-2-3 खत्म।
1: जी, अनिल बहुत ही बढ़िया है। और मैंने जैसे भी बताया कि युवाओं के लिए मैं सारा काम युवाओं के लिए कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ कि

0: अगर युवा नहीं है तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप चाहें तो उसको बंद कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो दुनिया भर के तर्क करेगा, फालतू की बातें करेगा और आपकी ऊर्जा को खराब करेगा, है ना? तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मैं कहीं यहाँ पे धार्मिक नहीं, इस तरीके का धार्मिक नहीं हूँ कि वो मैं एक बात सारे बच्चों से कहना चाहूंगा कि जो मैं एक छोटी सी टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप कोई भी चीज डिवाइस लाते हैं घर पे, टीवी लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, वॉशिंग मशीन लाते हैं, कार लाते हैं, जो भी लाते हैं, तो उसका एक मैनुअल होता है,
1: बिल्कुल।
0: वो मैनुअल से आप ये देखते कि हाउ ये कैसे इसको हाउ टू ऑपरेट ठीक है जी। अब मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि एक डिवाइस के रूप में इस दुनिया में आया जिसके पास अनंत शक्तियां हैं, जो खराब भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है। इस डिवाइस का जो मैनुअल है सर, वो भगवत गीता है सर। मैं फिर से रोक के कहना चाहूंगा, भगवत गीता कहने का मतलब मैं हिंदुओं की बात, सनातन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। भगवत गीता एक ऐसा मैनुअल है जो धार्मिक ग्रंथ में नहीं मानता, मैं कह रहा हूँ वो धार्मिक ग्रंथ नहीं, उसमें पूजा अर्चना कर्मकांड कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा। उसमें बस यही है कि जो डिवाइस, यानी कि आप एज ए ह्यूमन बींग आए हो, हाउ टू ऑपरेट योर सेल्फ, ये जरूर आप पढ़ दो। उसमें सिर्फ आपके जीवन को बेहतर करने के सारे नियम दिए हुए हैं और आपको सब कुछ बताया हुआ है।
1: अनिल जी, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, लोगों से बातचीत की, अपने भजन भी आपने हमको दिए, सुने हमने, अब कविताएं भी आपने सुनाई जो आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हमारे जीवन के ऊपर लिखी और धर्म के ऊपर लिखी और किस तरह से हमें जीना चाहिए। बहुत बहुत आभार है आपका, धन्यवाद साहब।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। तो हम अक्सर बोल देते हैं, अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी राशि ऐसी ही है। लेकिन क्या सिर्फ राशि एक टैग है, या फिर एक दर्पण है जिसमें हम अपनी आदतें, अपने डर, अपनी ताकत देख सकते हैं? आज हम सरफेस लेवल के ट्रेड्स की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे हर राशि के अंदर छुपे मनोवैज्ञानिक पैटर्न की, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी शैडो और उनका जीवन मंत्र। चलिए शुरू करते हैं एक गहरी सच्ची यात्रा। मेष, शुरुआत करने वाले। मेष लोग जन्म से पायनियर होते हैं, इनके अंदर एक अलग सी आग होती है कुछ नया करने की। इन्हें रुकना पसंद बिल्कुल नहीं है, इन्हें कम्पीट करना बहुत पसंद है। साइकोलॉजी के लेवल पर देखें तो सबसे ज्यादा डर अगर मेष राशि वालों को किसी चीज का होता है तो वो ये है कि उन्हें लोग भूल जाएंगे। इसीलिए ये हर जगह अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, पहला कदम हमेशा लेना चाहते हैं। पर जब चीजें इनके हिसाब से नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है इनमें। इनकी ताकत इनका करेज, हिम्मत इनकी कमजोरी, इनकी जल्दबाजी और इनका जीवन मंत्र, हर जंग लड़ना जरूरी नहीं है मेष राशि वालों, कभी कभी शांति भी जीत होती है। वृषभ राशि, वृषभ को सुकून चाहिए और कुछ नहीं, स्टेबल रिश्तों का, स्टेबल करियर का।

स्टेबल जीवन का इनका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल नीड है सिक्योरिटी, सुरक्षा। ये लोग तब फलते फूलते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि जमीन मजबूत है। पर इसी सिक्योरिटी की वजह से ये बदलाव से बहुत ज्यादा ही डरते हैं। चेंज इन्हें पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी लॉयल्टी और इनकी कंसिस्टेंसी, और इनकी कमजोरी इनकी जिद और कंफर्ट जोन से चिपक जाना। इनका जीवन मंत्र जो टूट रहा है शायद वही जगह बना रहा है नए के लिए। मिथुन राशि, विचारों के यात्री। मिथुन का दिमाग कभी रुकता नहीं, ये ऑब्जर्व करते जाते सवाल पूछते ही रहते, एनालाइज करते ही रहते हैं। इनकी साइकोलॉजी का बेस है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। इन्हें सब कुछ जानना है, सब समझना है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब माइंड ओवरलोड हो जाता है, फोकस टूट जाता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी

शायद इन्होंने कभी नहीं किए। इनका जीवन मंत्र, हर बात जानना जरूरी नहीं है, जो जरूरी है उसमें गहरा उतरना जरूरी है। कर्क राशि, भावनाओं के रक्षक। कर्क राशि के लोग इमोशनल इंटेलिजेंस से भरे हुए होते हैं। ये लोग रूम का मूड फील कर लेते हैं। इनका सबसे बड़ा नीड है बिलोंगिंग। इन्हें अपनापन चाहिए, अपनी स्पेस चाहिए, एक सेफ स्पेस चाहिए। पर जब उन्हें लगता है कि उनकी केयर का रिटर्न नहीं मिल रहा, तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और बहुत गहराई से हर्ट होते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी संवेदनशीलता, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनके मूड स्विंग्स और बार बार पास से जाकर चिपक जाना। इनका जीवन मंत्र, हर याद को संभाल कर रखना जरूरी नहीं, कुछ को आशीर्वाद देकर जाने देना चाहिए। सिंह राशि, प्रकाश के वाहक। सिंह को स्पॉटलाइट पसंद है, पर स्पॉटलाइट सिर्फ ईगो नहीं होता, ये इनकी नेचुरल वार्मथ है। साइकोलॉजी के हिसाब से सिंह का सबसे बड़ा डर होता है इग्नोर हो जाना। इसीलिए ये लाउड भी हो सकते हैं और आपको लग भी सकते हैं कुछ ज्यादा ही लाउड, पर इनका दिल बहुत बड़ा होता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी जेनरोसिटी और नेचुरल लीडरशिप। ये कहीं भी किसी भी क्राउड को अपने आप लीडरशिप से मोहित कर सकते हैं। और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका बड़ा सा ईगो। इनका जीवन मंत्र, सच्चा राजा वो है जो सबको साथ लेकर चले। कन्या राशि, कन्या हर चीज को बेटर बनाना चाहती है। इनकी नजर डिटेल्स पकड़ती है और गहराई पकड़ती है। इनका इनर पैटर्न होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर कभी कभी ये इम्प्रूवमेंट को ऑब्सेशन बना लेते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म इनका सबसे बड़ा बोझ है। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका डिसिप्लिन, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी खुद पर बहुत कठोर हो जाना। जीवन मंत्र, जो आप कर चुके हैं उस पर गर्व कीजिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: हम इंडियंस का असली टैलेंट क्या है पता है? ऑनलाइन 1999 का प्रोडक्ट देखकर बोलते हैं, अरे महंगा है। फिर 1899 का देखते ही मन से एक बात निकलती है, वाह 100 रुपीज बचा लिए। प्रोडक्ट वही है पर फीलिंग बिलियनेयर वाली। What?

दिमाग, किस्मत और फ्री विल, हम चुनते हैं या हमें चुना जाता है। दोस्तों, कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, जो फैसले मैं लेता हूं क्या वो सच में मैं ले रहा हूं, या वो मेरा दिमाग पहले ही डिसाइड कर चुका है, या फिर कहीं सितारे भी इस कहानी का हिस्सा तो नहीं। आज हम बात करेंगे तीन चीजों की, न्यूरोसाइंस, फ्री विल और एस्ट्रोलॉजी। तीनों अलग लगती हैं, पर कहीं ना कहीं एक ही सवाल जुड़े हैं, इंसान कितना आजाद है। पहला अध्याय, दिमाग का राज। न्यूरोसाइंस क्या कहती है? ये कहती है कि हमारा दिमाग एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। हर सोच, हर इमोशन, हर डिसीजन न्यूरॉन्स के बीच चलने वाली छोटी सी बिजली की लहरों का एक नतीजा है। रिसर्च में ये पाया गया है कि कभी कभी हमारा दिमाग डिसीजन ले लेता है और हमें उसका एहसास मिलीसेकंड्स बाद होता है। सोचिए, आपने हाथ उठाया, आपको लगा आपने डिसाइड किया, पर एक्सपेरिमेंट बताता है दिमाग ने सिग्नल पहले ही भेज दिया था। तो सवाल ये है, अगर दिमाग पहले ही तय कर लेता है तो मैं कहाँ हूं? क्या फ्रीविल सिर्फ एक महसूस करने वाली चीज है, एक दूर का इल्यूजन है? दूसरा अध्याय, सितारे और ग्रह। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजी पर। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष कहती है, जब आप पैदा होते हो उस वक्त ग्रहों की पोजीशन आपके स्वभाव और आपके जीवन की दिशा पर असर डालती है। ये कहती है आपका टेम्पर, आपका गुस्सा, आपका डिसीजन लेने का तरीका, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, सब कुछ एक कॉस्मिक पैटर्न है। अब न्यूरोसाइंस कहता है आपका बिहेवियर दिमाग के स्ट्रक्चर और हार्मोन से आता है, और एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आपका पैटर्न जन्म के वक्त ही सेट हो जाता है। दोनों अलग जुबान बोलते हैं, पर दोनों एक बात मान रहे हैं, इंसान का एक पैटर्न जरूर है और एक पैटर्न में ही चल रहा है। तीसरा अध्याय, फ्री विल बीच में कहां है? फ्री विल का मतलब है मैं अपनी मर्जी से चूज करता हूं, पर अगर मेरा दिमाग केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है और मेरी पर्सनालिटी एक जन्म कुंडली के पैटर्न से बंधी हुई है, तो मेरी मर्जी कहां है और कितनी मेरी है? ये डिबेट बहुत सालों पुरानी है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं फ्री विल पूरी तरह से एक इल्यूजन नहीं है, हमारे पास एक पॉज बटन जरूर होता है। इंपल्स आता है जैसे गुस्सा, लालच, डर, पर हम इंपल्स पर एक्शन लें या रोकें, ये हम सीख सकते हैं। इसी ट्रेनिंग, इसी अवेयरनेस को कहते हैं फ्री विल, और यही एक बीज हो सकता है अपने खुद के डिसीजंस लेने के लिए। एक सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आता है और बहुत जल्दी गुस्सा आता है। न्यूरोसाइंस कहेगा आपके ब्रेन का इमोशनल सेंटर ज्यादा एक्टिव है। एस्ट्रोलॉजी कहेगी आपका मास स्ट्रांग है। पर दोनों के बीच एक तीसरा सच है, आप अपने रिएक्शन को धीरे धीरे समझ के बदल सकते हो। मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस, थेरेपी, ये सब दिमाग के सर्किट्स को बदलते हैं। मतलब पैटर्न लिखा हो सकता है, पर कहानी पूरी तरह पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है। किस्मत वर्सेस चुनाव। सोचिए, जिंदगी एक नदी है। एस्ट्रोलॉजी कह सकती है नदी का सोर्स और डायरेक्शन पहले से ही तय है। न्यूरोसाइंस कह सकता है पानी का फ्लो ग्रेविटी और टेरेन डिसाइड करता है। पर फ्री विल क्या है? फ्री विल शायद ये है कि आप नदी में तैरना सीख सकते हो, धारा के साथ या उसके खिलाफ। पानी को रोक नहीं सकते, पर अपनी चाल संभाल सकते हो। आज का जमाना, आज के समय में ब्रेन स्कैन मशीन बता सकती है कि कौन सा हिस्सा कब एक्टिव हो रहा है। एस्ट्रोलॉजर जन्म का समय देखकर आपका टेम्परमेंट बता सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल वही है, अगर आपको पता चल जाए कि आपका ये पैटर्न है, तो क्या आप उस पैटर्न के गुलाम रहोगे या उसे समझकर
उसका फायदा उठाकर उस पर काम करोगे। एक गहरी सोच, शायद फ्री विल का मतलब ये नहीं कि सब कुछ हम कंट्रोल करते हैं। शायद फ्री विल का मतलब ये है कि हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। न्यूरोसाइंस हमें दिखाता है कि दिमाग कैसे काम करता है। एस्ट्रोलॉजी एक सिंबॉलिक मैप देती है कि हम किस प्रकृति के हो सकते हैं। पर स्टेयरिंग व्हील वो शायद फिर भी हमारे ही हाथ में है। दोस्तों, सच इन तीनों के बीच कहीं ना कहीं है, आधा आगे आधा पीछे आधा बीच में। हम पूरी तरह आजाद तो नहीं हैं, पर हम पूरी तरह बंधे हुए भी नहीं हैं। हम एक पैटर्न के साथ पैदा होते हैं, पर उस पैटर्न को समझकर उसे इवॉल्व करना शायद वही इंसानियत का सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसीलिए अगली बार जब आपको कोई फैसला लेना हो, एक पल रुककर जरूर सोचिए, ये मेरे दिमाग का इंपल्स है, मेरी कुंडली का पैटर्न है, या मेरी सजग सोच का चुनाव है। हो सकता है तीनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हो, और शायद यही जिंदगी का असली राज है। हम लिखे हुए भी हैं और लिख भी रहे हैं। जरा लिख कर देखिए।

0: से दिल में समा, आ जा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आ जा रे आ जरा, लहरा के आ जरा।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
2: शादी में कोई रिलेटिव मिलते ही बोलता है, बेटा कितना कमा लेते हो, शादी कब कर रहे हो, वेट थोड़ा बढ़ गया है ना। मैं सोचती हूँ आप लोग रिश्तेदार हो या एंजल परफॉर्मेंस अप्रेजल की कमिटी। और सबसे डेंजरस लाइन, तुमसे छोटी वाली की शादी हो गई क्या? मतलब कंपैरिजन का ओलंपिक चल रहा है और मुझे पता भी नहीं था कि मैं पार्टिसिपेंट हूँ। What?

पूछो ना यार।

तुला राशि। तुला का मिशन है बैलेंस। ये कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं हर लेवल पे, हर कीमत पर। इनका साइकोलॉजिकल नीड है शांति, पर कभी कभी दूसरों को खुश करते करते अपनी आवाज खो देते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत डिप्लोमेसी, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका डिसीजन नहीं ले पाना। जीवन मंत्र, अपनी आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी दूसरों की। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि सुपरफिशियल नहीं होते, इन्हें सच चाहिए और सिर्फ सच, पूरा सच। इनका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पैटर्न है कंट्रोल और ट्रस्ट। ये तब तक दिल नहीं खोलते जब तक श्योर ना हो जाएं, पर जब ट्रस्ट हो जाता है तो लॉयल्टी अनमैच्ड होती है। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका ट्रांसफॉर्म होने की कैपेबिलिटी, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनके शक की आदत। जीवन मंत्र, हर इंसान दुश्मन नहीं है, कभी कभी जिंदगी को सरप्राइज देने दो। धनु राशि। धनु को बंधन पसंद नहीं है, इन्हें एक्सप्लोर करना है जगह भी विचार भी। इनका कोर नीड है फ्रीडम, आजादी, बट कभी कभी कमिटमेंट से बचने लगते हैं ये लोग। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी पॉजिटिविटी, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनकी रेस्टलेसनेस, किसी भी करवट चैन ना पा पाना। जीवन मंत्र, आजादी और जिम्मेदारी साथ साथ चल सकते हैं। मकर राशि। मकर बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। इनका साइकोलॉजिकल बेस है अचीवमेंट, और इन्हें रिस्पेक्ट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए हर कीमत पर कभी कभी इमोशंस को साइड कर देते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका पेशेंस और इनका एम्बिशन, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका इमोशनल डिस्टेंट हो जाना बार बार। जीवन मंत्र, सफलता तब और सुंदर लगती है जब किसी के साथ बांटी जाए। कुंभ राशि। विचारों के क्रांतिकारी। कुंभ अलग सोच के होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। इनका सबसे बड़ा पैटर्न है इनकी इंडिविजुअलिटी, पर कभी कभी इमोशनल कनेक्शंस कम हो जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनोवेशन, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बात बात पे अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना समाज से। जीवन मंत्र, बदलाव दिल से शुरू होता है, सिर्फ आइडिया से नहीं। मीन, सपनों के सौदागर। मीन इंट्यूटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और बहुत क्रिएटिव होते हैं। इनकी बेसिक नीड है इमोशनल यूनिटी, सब साथ चले, पर कभी कभी रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हैं ये लोग। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी इमेजिनेशन और इनकी संवेदनशीलता, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है बात बात पर भाग जाना, जगह छोड़ के किसी और जगह चले जाना। जीवन मंत्र, सपनों को पंख दो पर जमीन मत छोड़ो। दोस्तों, राशियां लेबल नहीं होती, वो पैटर्न्स होती हैं। हर साइन एक कहानी है, हर साइन एक सफर है, और सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ अपनी राशि नहीं हैं, आप अपनी चॉइसेस भी हैं। सितारे दिशा देते हैं, पर मंजिल पर चलना आपको ही है। आज अपनी राशि को समझिए, पर उसे एक्सक्यूज मत बनाइए, उसे एक अवेयरनेस बनाइए। क्योंकि जब इंसान अपनी प्रकृति को समझ लेता है, तब वो अपनी किस्मत को लिखने लगता है। राशियां आसमान में होती हैं, पर उनका सच दिल में जगता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: घर में एसी 24 डिग्री पर चला दो तो पापा तुरंत आकर 26 पर कर देते हैं। बोलते हैं, बेटा ठंड लग जाएगी। पर असली रीजन, बिजली का बिल उनके दिमाग में लाइफ टिकर की तरह चल रहा होता है। और जब लाइट चली जाती है, देखा मैंने बोला था ना ज्यादा मत चलाओ, देखा बिजली चली गई। ऐसा लगता है जैसे बिजली डिपार्टमेंट को उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक

एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है बुलबुल।

बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा बिसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

0: दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे, तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: आओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता। नहीं विनोद भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

0: हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ, कहीं का उल्लू कपट्ठा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहे डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्तिधाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये तो साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, हे मेरे, कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त ना रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी, कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है, और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं, लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझा कर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर लें, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: नमस्कार साथियों।
2: मेरा भी नमस्कार।
1: साथियों, राजस्थान की भूमि रणबांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
2: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
1: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियां ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
2: आप पूछेंगे, कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोग गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
1: तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
2: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
1: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
2: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
1: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
3: अंग्रेजों, भारत छोड़ो, अंग्रेजों, भारत छोड़ो,
4: भारत माता की जय, भारत माता की जय।
1: आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरें ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजा मंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
2: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी, सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
1: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
2: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
1: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गाँव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
2: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
1: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
2: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सिंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सिंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सिंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
1: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं, बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं, यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
2: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
5: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो, अभी बताता हूँ तुमको। सिपाहियों, इसे ट्रक से बांधकर घसीटो।
2: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
1: साहब, ये पाठशाला तो प्रजा मंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
2: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता? वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
1: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
2: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
1: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
2: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
1: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
2: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
1: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
2: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
1: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
2: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो?
1: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
2: सिंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
1: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भागकर आईं, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
2: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई।
1: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा।
5: भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
2: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
5: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
2: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
5: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
2: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
5: कालीबाई, तुम्हें हमारा सलाम।
6: कालीबाई भारत की एक जनजातीय वीरांगना।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्याभील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
7: सीखने की प्रक्रिया में विराम नहीं होता।
8: ये कहानी है प्राचीन यूनान की, लेकिन आइए कहानी सुनने से पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं यूनान की। आपको बता दें कि यूनान दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। अंग्रेजी में इसे ग्रीस भी कहते हैं।
9: ये देश भूमध्य सागर में स्थित बहुत से द्वीपों का समूह है। यहाँ के निवासियों को यवन या यूनानी कहते हैं। यहाँ की राजभाषा यूनानी है, अंग्रेजी में इसे ग्रीक कहेंगे। ग्रीक भाषा बहुत ही समृद्ध भाषा है और यूरोप की लगभग सभी भाषाओं को इसने बहुत से शब्द दिए हैं। यहाँ की मुद्रा या करेंसी है यूरो। तो साथियों, लगभग सभी राष्ट्रों का कोई ना कोई राष्ट्र वाक्य होता है, जैसे हमारे देश का राष्ट्र वाक्य है सत्यमेव जयते, वैसे ही यूनान का राष्ट्र वाक्य है एलेफ्थेरिया थानाटोस, जिसका अर्थ है या तो स्वतंत्रता या मृत्यु, अन्य कोई विकल्प स्वीकार्य नहीं है।
8: यूनान की राजधानी है एथेंस, जहां से ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। उन दिनों आज की तरह ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक नहीं हुआ करते थे।
9: प्राचीन ओलंपिक खेलों में उन दिनों प्रथम आने वाले विजेता को जैतून की पत्तियों का मुकुट, द्वितीय आने वाले को जैतून के फलों की माला और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को जैतून के पत्तों की माला पहनाई जाती थी। तो साथियों, आइए अब सुनते हैं प्राचीन यूनान की ही एक बहुत ही प्यारी और प्रेरक कहानी। ये कहानी है प्राचीन यूनान के एक बहुत अच्छे चित्रकार की। उसके बनाए गए चित्रों की हर जगह बड़ी धूम थी।
8: एक बार की बात है, उसने एक नर्तकी का आदमकद चित्र बनाया। वो बेहद खूबसूरत चित्र था। जब इस चित्र की प्रदर्शनी की गई तो समझिए कि तहलका मच गया। यूनान में हर जगह उस चित्र की चर्चा होने
10: लगी।
8: भीड़ की भीड़ उस चित्र को देखने के लिए आने लगी। ये इतना सुंदर और जीवंत चित्र था कि लगता था कि नर्तकी बस अभी बोल पड़ेगी।
9: नर्तकी का पूरा सौंदर्य इस पेंटिंग में मानो सजीव हो गया था। इस पेंटिंग की चर्चा उस देश के राजा के कानों में पड़ी। राजा भी ये प्रदर्शनी देखने आया और इस चित्र को देखकर वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने चित्रकार को बहुत से उपहार दिए।
8: इतना ही नहीं, राजा ने उस चित्रकार को शाही चित्रकार घोषित कर दिया। इस चित्र ने उस चित्रकार को रातों रात बहुत लोकप्रिय बना दिया। वो स्टार बन गया। इस चित्र की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल गई। अब वो बेनाम चित्रकार बहुत प्रसिद्ध हो गया था।
9: जहां भी वो जाता, लोग सम्मान से खड़े हो जाते, उसका अभिनंदन करते और उसकी प्रशंसा के फूल बांध देते थे।
8: कहते हैं कि सफलता का भूत कई बार सिर चढ़कर बोलता है। व्यक्ति के मन में अहंकार पैदा हो जाता है और वो अपने अलावा, अपने कौशल के अलावा

0: कुछ और नहीं सोचता।
1: यही उस चित्रकार के साथ भी हुआ। अपनी कला से वो इतना प्रभावित हुआ कि अब वो दिन भर उस चित्र के सामने बैठा रहता था और उसे ही निहारता रहता था। वो बेसुध सा हो गया था। वो सबको यही बताता कि देखो मैंने कितना महान काम किया है और मेरी बराबरी का और कोई कलाकार है ही नहीं। क्या बात है, वाह वाह रे मेरी कला, क्या सुंदर चित्र बना है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा चित्र कोई और कभी बना सकता है। शायद ऐसा चित्र कभी किसी ने नहीं बनाया है। वाह कितनी महान कला है मेरे अंदर।
0: जी हाँ साथियों, इस मनोदशा में इंसान अपने आप से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे अपने सिवाय कुछ नहीं सोचता। अब तो ये होने लगा कि वो उस चित्र से उठते बैठते बात करता था। उसकी दीवानगी इतनी हद तक बढ़ गई कि वो अक्सर रातों को भी उठ जाता था और उस चित्र से बातें करने लगता था।
1: हाँ हाँ आइए आइए, देखने आइए। क्यों नहीं, देखिए देखिए, है ना कमाल का चित्र। बिल्कुल, कितना सुंदर चित्र है ये। मैं जब जब इसे देखता हूं मुझे ऐसा लगता है ये और सुंदर होता जा रहा है। वाह अथा सुंदर।
0: और सुबह जो भी उसे मिलता सबको यही बताता कि देखो मैंने कैसा महान कार्य कर दिखाया।
1: लोगों को शुरू में ये बात अजीब नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये तो असामान्य बात है। महीने बीत गए, अब उस चित्रकार ने दूसरी पेंटिंग्स बनाना भी छोड़ दिया था। वो बस अपने उसी चित्र को देखता रहता था।
0: एक दिन की बात है, वो सवेरे उठा और हर रोज की तरह अपनी उसी पेंटिंग को देखने चल दिया। उसे बहुत गहरा झटका लगा जब उसने देखा कि उसकी पेंटिंग पर किसी ने ढेर सारा रंग उड़ेल दिया है और किसी तेज चाकू से उस पेंटिंग को जहां तहां से काट दिया है। ये देखकर उस चित्रकार को मानो पागलपन का दौरा पड़ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा।
2: ये क्या हो गया, किसने किया है ये काम, किसने किया ये?
0: वो पूरे म्यूजियम में शोर मचाने लगा।
2: किसने किया, किसने किया ये?
0: सब सहम गए थे। अचानक पीछे से गंभीर आवाज आई।
3: मैंने किया है।
0: वो चित्रकार पीछे मुड़ा तो चौंक गया। पीछे उसके गुरुजी खड़े थे।
1: गुरुजी आप? क्या ये आपने किया है?
3: हाँ मैंने किया है ये काम।
1: लेकिन क्यों?
3: इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है। तुम अपनी कला से संतुष्ट हो गए हो।
1: लेकिन गुरुजी, वो मेरी सर्वोत्तम रचना थी, इससे अच्छा तो कुछ बन ही नहीं सकता।
3: नहीं, तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया जिसे संपूर्ण कहा जा सके।
1: गुरुजी,
3: अब तुमने अभ्यास करना, कुछ नया बनाना सब छोड़ दिया है। अब तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुमने बनाया उससे अच्छा कुछ बन ही नहीं सकता। ये बात गलत है।
1: लेकिन गुरुजी, मैं जानता हूं कि अब मैं इस पेंटिंग से बेहतर कुछ बना ही नहीं सकता।
3: तुम्हारी यही सोच गलत है। तुम प्रसिद्ध तो हो गए हो लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हुए। उठो, पेंट ब्रश लेकर अब फिर से शुरू हो जाओ। कुछ नया और बनाओ जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं।
0: दोस्तों, उस चित्रकार को बहुत पश्चाताप हुआ और फिर जब उसने दोबारा पेंट ब्रश उठाया तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक से एक ऐसी बहुमूल्य पेंटिंग्स बनाई जो आज यूनानी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। साथियों, सीखने का कोई अंत नहीं है।
1: जी हाँ, सीखते रहिए, प्रश्न करते रहिए, अवलोकन करते रहिए।
0: इस बात से संतुष्ट मत हो जाइए कि प्रकृति में या आसपास कुछ होता है। आप तब तक संतुष्ट न होइए जब तक ये न जान लें कि ऐसा क्यों होता है।
1: यदि आपने कोई काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, किसी विषय में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, संगीत के अभ्यास से बहुत निपुणता प्राप्त कर ली है, तो अब इतने में ही संतुष्ट ना हो जाइए कि अब और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है।
0: सीखते रहिए। किसी ने बहुत खूब कहा है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग।
1: यानी सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिंदगी कभी सिखाना नहीं छोड़ती।
3: सीखने की प्रक्रिया में विराम नहीं होता।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: साथ है तो संभव है।
6: ये बात बहुत पुरानी है। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उन सब में गहरी मित्रता थी। वे सभी बड़े मेल प्रेम से रहते थे। जंगल में बड़े बड़े तालाब थे जहां बहुत से जल जंतु भी रहा करते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा घना पेड़ था। उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं थी जिस पर बहुत से जंगली हंस बसेरा करते थे। वे हंस सुबह दाना पानी लेने के लिए उड़ जाते और शाम को उसी पेड़ पर वापस आ जाते। पेड़ के पास ही एक झील थी। उसके शीतल जल में वे खूब नहाते और किलोल करते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था।
7: एक दिन की बात है, जब पक्षी शाम को वापस आए तो उन्होंने देखा कि पेड़ के पास एक छोटा सा पौधा उगाया है। उस पौधे में एक छोटी सी कोमल लता थी जो पेड़ के तने से चिपकी हुई थी। उसे जब हंसों ने देखा तो आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक हंस, जो आयु में दूसरे हंसों से बड़ा था और बुद्धिमान भी, उसने कहा,
8: क्या तुम उस छोटे पौधे को देख रहे हो जिससे लता निकल रही है?
9: हाँ, देख तो रहे हैं, लेकिन इसमें कौन सी नई बात है?
10: ऐसे तो बहुत से पौधे निकलते रहते हैं।
11: ये तो कोई बड़ी बात नहीं है।
9: हाँ, बेकार ही ऐसी छोटी छोटी बातों की चिंता करते रहते हैं।
8: लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
10: अरे छोड़िए भी, हमारे पास बातें करने के लिए क्या अब यही बचा है?
9: हाँ, और कोई बात हो तो कहिए, वरना चुप रहिए।
11: मानते हैं कि आप हम सबसे बड़े हैं,
10: लेकिन हम भी कोई कम समझदार नहीं हैं।
9: हाँ।
6: सभी हंसों ने उस बुद्धिमान हंस की बात काट दी और उसका मजाक भी उड़ाया। खैर, दिन बीतते गए। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगा और उसकी लता पेड़ के तने का सहारा लेकर बड़ी होने लगी। अब वो लता इतनी बड़ी हो गई कि वो लगभग पेड़ की आधी ऊंचाई तक पहुंच गई।
7: उस पेड़ पर बसेरा करने वाले जंगली हंसों का झुंड रोज सुबह भोजन की तलाश में निकल जाता और शाम को हमेशा की तरह वापस आ जाता था। उन्हें वो पेड़ बहुत सुरक्षित लगता था क्योंकि वो ऊंचा था और उसका तना इतना चिकना और सीधा था कि कोई भी इस पेड़ पर आसानी से चढ़ नहीं सकता था। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन की बात है, शाम को जब सारे हंस वापस आ गए तो बुद्धिमान हंस ने सबको बुलाया और कहा,
8: साथियों, आज मैंने एक बार फिर से उसी विषय पर बात करने के लिए आप सबको बुलाया है।
9: उसी विषय पर? अरे किस विषय पर?
8: उसी पौधे के बारे में जिस पर हमने एक दिन चर्चा की थी, लेकिन आप सब ने उसे टाल दिया था।
10: ओफो, फिर वही बात? अरे ऐसा तो सारे जंगल में होता रहता है।
9: हाँ, पौधे उगते हैं, बड़े हो जाते हैं, आपको क्यों बेकार की चिंता हो रही है?
8: साथियों, मेरी चिंता व्यर्थ नहीं है।
9: ओहो,
8: ध्यान से देखो।
9: अरे देख तो रहे हैं।
8: वो लता पहले बहुत छोटी थी, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़कर वो इतनी ऊंची हो गई है कि हमारे पेड़ की डालियों तक पहुंच गई है।
6: बात आई गई हो गई, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। वो लता धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी और अब उसने एक मोटी रस्सी का रूप धारण कर लिया था। वो लता अब लगभग पेड़ की सभी शाखाओं तक पहुंच गई थी।
7: और वही हुआ जिसका डर था। एक सुबह जब सभी पक्षी भोजन की तलाश में निकल गए, एक बहेलिया वहां आया। उसने चुपके से कई बार देखा था कि उस पेड़ पर बहुत से जंगली हंस रहते हैं।
12: ये जगह ठीक है, यहाँ जाल बिछाता हूँ, यहाँ बहुत सारे

0: कर वो चला गया। उसे पता था कि पक्षी अब शाम को ही आएंगे। शाम को पक्षी वापस आए। बहेलिए के बिछाए जाल पर उनकी नजर नहीं गई और जैसे ही वो डालियों पर बैठे, वे सब के सब उस जाल में फंस गए।
1: अरे कोई है, हमारी सहायता करो।
2: अरे हमें छुड़ाओ भाई, हमारी सहायता करो भाई।
3: अरे ये क्या हो गया?
2: फंस गए भाई,
1: हम सब जाल में फंस गए।
3: अरे ये कैसे हुआ? बचाओ। तुम लोग भी मेरी बात नहीं मानते हो ना? मैंने कहा था
2: ऐसे फंस गए हम।
3: अरे क्या हो गया? मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुम लोग सुनते कहाँ हो?
4: वे सभी चिल्लाते रहे, पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन सब बेकार। संघर्ष करते करते वो थक गए। उन्होंने बुद्धिमान हंस से कहा,
2: हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपकी बात नहीं मानी।
1: काश हमने आपकी बात मानी होती तो आज का दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता।
2: अब आप ही कुछ कर सकते हैं, कोई उपाय बताइए।
3: शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने बहुत पहले ही तुम सबको चेतावनी दी थी, लेकिन तुम सब ने नहीं सुना। संकट के समय अब हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। ध्यान से सुनो, कल सुबह जब वो बहेलिया आएगा तो हम सबको ऐसा अभिनय करना होगा मानो कि हम मर चुके हैं।
2: भला इससे क्या होगा?
3: कोई भी बहेलिया मरा हुआ पक्षी नहीं चाहेगा। वो एक एक करके हमें जाल से निकालकर भूमि पर फेंक देगा।
2: हाँ?
3: जैसे ही वो आखिरी पक्षी को नीचे फेंकेगा और पेड़ से नीचे उतरेगा, इसी बीच हम सब एक साथ उड़ जाएंगे।
2: हाँ, ये ठीक है,
1: उड़ जाएंगे हम सब।
0: और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन सुबह बहेलिया वहां आया। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि बहुत से पक्षी उसके जाल में फंस गए हैं, उसे बड़ा लाभ होने वाला है। वो तेजी से पेड़ पर चढ़ा और जाल के पास जा पहुंचा। लेकिन ये क्या,
4: बहुत से पक्षी फंसे हुए थे, लेकिन वो निश्चल पड़े हुए थे। उनकी गर्दनें ढलकी पड़ी थी और कोई हरकत नहीं थी। उसने जाल को हिलाया भी, लेकिन किसी पक्षी ने कोई हरकत नहीं की। बहेलिया बड़बड़ाने लगा,
5: अरे ये क्या, ये सब तो मरे पड़े हैं। हो सकता है इन्होंने कोई विषैला बीज खा लिया, पर अब तो कोई लाभ नहीं। अब क्या करूं, इन्हें नीचे फेंक देता हूं, फिर जाल लेकर उतरना भी आसान हो जाएगा। हाँ ऐसा ही करता हूं।
0: तो इस तरह बहेलिए ने एक एक करके पक्षियों को जाल से निकालना शुरू किया और वो उन्हें नीचे जमीन पर फेंकता चला गया। अब अंतिम पक्षी भी भूमि पर फेंका जा चुका था।
4: जैसे ही आखिरी पक्षी जमीन पर गिरा, योजना के अनुसार सभी उठे, अपने पंख फड़फड़ाए और पलक झपकते ही आकाश की ऊंचाइयों में उड़ गए। बहेलिया हाथ मलता हुआ आश्चर्यचकित और ठगा सा उन्हें देखता रह गया।
0: साथियों, प्रसिद्ध मोटर व्यवसायी हेनरी फोर्ड ने कहा था, यूनाइटेड वी स्टैंड बट डिवाइडेड वी फॉल। इसका भाव ये है, संगठित होकर हम सशक्त बनते हैं और विभाजित रहकर निर्बल। यानी
6: साथ है तो संभव है।
7: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
8: वो आखिरी पत्ता।
4: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
0: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है।

0: प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
1: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
0: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
2: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
3: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
2: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
3: यस।
1: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
0: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
1: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
4: सू
2: जी,
4: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
2: जी हाँ
4: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
2: जी डॉक्टर साहब।
4: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
2: मैं पूछती हूँ।
0: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
1: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40
2: क्या?
0: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
5: 13, 12, 11 ओह
2: जॉन्सी,
5: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
1: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
2: क्या गिन रही हो?
5: 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
2: क्या कम हो गए हैं?
5: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
0: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था। लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
2: जॉनसे उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
5: 6, now it's 6, 5, 4, oh,
2: जॉनसी, जॉनसी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है। तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉनसी।
5: Only 4,
2: मेरी तरफ देखो।
5: सू, only 4. ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
2: क्या 3 बचे हैं? What's 3, dear?
5: 3 पत्तियां।
2: पत्तियां?
5: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
2: हाँ, हाँ।
5: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
2: क्या लगता है?
5: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं। और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
2: क्या जॉनसी?
5: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
2: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
5: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
2: हाँ
5: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
2: जॉनसी,
0: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
1: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
0: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
1: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
6: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
0: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
1: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
5: 2, ओह, अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
0: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
6: जॉनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना

0: वहां से चले गए।
1: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
2: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
0: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
2: सू मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
2: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
3: सू।
2: हाँ जॉन्सी।
3: सू,
2: ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
3: हाँ बिल्कुल,
2: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
3: बिल्कुल जॉन्सी।
2: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
3: पत्ता?
2: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
3: हाँ,
2: हाँ,
3: मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
2: देखो अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
3: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
2: हाँ, हाँ।
1: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
1: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
3: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
2: बेहतर।
3: ये लो कॉफी पियो।
2: थैंक यू
3: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
2: क्या हुआ?

0: मिस्टर बेयरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
1: कौन बेयरमैन? वही बुरे कलाकार?
0: हाँ।
1: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
0: हाँ वही।
1: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
0: हाँ वही मिस्टर बेयरमैन।
1: ओ गॉड,
0: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉनसी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या?
0: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
0: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
2: जॉनसी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
0: जॉनसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेयरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंच ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेयरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉनसी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉनसी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
0: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
0: हाँ,
1: मास्टरपीस।
0: हाँ।
1: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
3: डबडबाई आंखों से जॉनसी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
2: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉनसी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रही हूं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, लेखक प्रोफेसर के.जी. रस्तोगी, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम

0: निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति के साथ रोज उठता बैठता हूँ, खेतों को सहलाता हूँ, खेतों से

0: FM, આપણો રેડિયો આપણી બાતેં.
1: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में. किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटियाबिल 90.8 FM छावा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है. किसान साथियों, रेडियो टांटियाबिल 90.8 FM की एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और बिना किसी रुकावट के आप हमारा खेती बाड़ी कार्यक्रम को रोज शाम को 6 से 8 बजे तक सुन सकते हैं. किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं मक्का की खेती को लेकर. आइए जानते हैं कैसे मक्का हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है. हमारा झाबा का किसान जो अधिकतर मक्का ही हमारे खेतों में लगाता है, तो आज हम जानेंगे कैसे इस मक्का को हम अच्छी सी अच्छी मंडी में बेचकर ज्यादा से ज्यादा कैसे मुनाफा इससे कमाया जा सकता है. साथ ही जानेंगे इसके उत्तम बीजों के बारे में और भी मक्का से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे. कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को.

0: किसान साथियों, आइए मिलवाते हैं आपसे कृषि एक्सपर्ट से और जानते हैं किस तरीके से आने वाले समय में किस तरीके कैसे हमें मक्का की खेती में किस क्या क्या फायदे मुनाफे हो सकते हैं, आइए सुनते हैं।
1: मक्के के दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है
2: जी।
1: फिलहाल अभी काफी हद तक स्टॉक की डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है और आने वाले 2 से 3 महीनों में इसके दामों में थोड़ा सा तेजी का ट्रेंड बन सकता है और दाम 5 से 8% तक तेजी के रुझान में आ सकते हैं।
2: बिल्कुल, तो आपका कहना है कि आगे आने वाले समय में 5 से लगभग 8% तक ही यहाँ पर बढ़ोतरी हम अनुमान लगा सकते हैं इसका। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी?
1: जिन किसान भाई बहनों के पास ये स्टॉक है उनको यहाँ पर अभी रुकना चाहिए और आने वाले 2 से 3 महीने में स्टॉक को निकालना चाहिए जिससे कि आपको यहाँ पर बेहतर मुनाफा मिल सके।
2: बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कर ले हमारे किसान जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है मक्का का, आगे आने वाले 2 से 3 महीने के दौरान अगर बिकवाली करते हैं तो अच्छे दाम आप अर्जित कर सकते हैं। और इसी के साथ रवि जी आपसे हम गुजारिश करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अलग अलग जिनसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे।
0: किसान साथियों, जैसा कि हमने अभी चर्चा में सुना किस तरीके से एक आशा की किरण हम देख सकते हैं, किस तरीके से मंडियों में इसका मक्का का भाव बढ़ा जा सकता है, आइए डालते हैं एक नजर सोयाबीन के भाव पे और सोयाबीन की खेती में इस समय कौन सा मुनाफा हो सकता है। उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से भीली गीत को, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना एक प्यारे से भीले गीत को। आइए डालते हैं एक नजर सोयाबीन के भाव और सोयाबीन की खेती के ऊपर। आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को।
1: उठापटक के साथ हुए सोयाबीन के कारोबार में हाल। खातेगांव मंडी में 6,300 रुपए रहा बाजार भाव। मामूली बदलाव के साथ हुआ मसूर का कारोबार। कुछ मंडियों में स्थिर रहे बाजार भाव।

0: आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की जो आवक है सामान्य बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में सोयाबीन के सौदे उठापटक के साथ दर्ज किए गए। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार 1,38,00,000 टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 12,18,000 टन अधिक है। हाल फिलहाल में सोयाबीन के बाजार में किस तरह का बना हुआ है हाल, आइए जानें।
1: पीली सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हाल ही में केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की है। खरीफ सीजन 2022-23 के लिए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। खरीफ फसलों में शामिल पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 3,950 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए सोयाबीन के MSP में 350 रुपए की भारी बढ़ोतरी की, जिसके बाद पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,300 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन के सौदों में उठापटक देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्केट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 17 जून को सोयाबीन का भाव था 6,055 रुपए। 18 जून को इसके सौदों में 225 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,830 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही दाहोद मंडी में भी इस दौरान सोयाबीन के भाव में गिरावट देखने को मिली। यहां 17 जून को सोयाबीन का भाव रहा 6,525 रुपए, 18 जून को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 6,425 रुपए पर आ पहुंचा। जबकि मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 17 जून को इसका भाव रहा 5,215 रुपए, जो कि 18 जून को 1,085 रुपए की भारी बढ़त के बाद 6,300 रुपए हो गया। यहीं की खुजनेर मंडी में 17 जून को सोयाबीन का भाव रहा 6,550 रुपए, जो कि 18 जून को 100 रुपए बढ़कर 6,650 रुपए पर पहुंच गया। सोयाबीन एक खरीफ फसल है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 12,18,000 टन की बढ़त होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2021-22 में 1,38,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,26,10,000 टन रही थी।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, अभी हमने जाना अलग अलग जगहों की मंडी का भाव, आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
4: सोयाबीन के दामों में धीरे धीरे करके एक तेजी का ट्रेंड बनता जा रहा है
5: जी।
4: इस साल पैदावार भी अच्छी देखने को मिली है, लेकिन उसके साथ में डिमांड भी यहां पर काफी अच्छी रही है
5: जी।
4: मंडियों में सोयाबीन के दामों में थोड़ा बढ़ोतरी का दौर देखने को मिल सकता है। अपसाइड के लेवल की बात करें तो लगभग 5-8% तक की तेजी बन सकती है।
0: बिल्कुल, तो यहाँ पर आगे तेजी का माहौल ही है जो बना रह सकता है, यही अनुमान जताया जा रहा है। तेजी का फायदा उठाएं कैसे हमारे किसान?
4: जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर सोयाबीन है, उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अभी जुलाई अगस्त तक अपना स्टॉक धीरे धीरे करके निकालना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो धीरे धीरे यहाँ पर आगे आने वाले समय में बिकवाली करेंगे तो अच्छी आमदनी हम कहें, अच्छे दाम हम कहें, अर्जित कर सकते हैं हमारे सोयाबीन के किसान।
3: किसान साथियों, अभी आपने सोयाबीन से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों को जाना और ये भी जाना कि किस समय हमें सोयाबीन को किस समय किस वक्त कौन से वक्त पे ऐसे निकालना चाहिए, और अनेकों जानकारियों को आपने सुना। जानकारी को जारी रखेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से सुंदर से भीली गीत को।

सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: किसान साथियों, अभी तक हमने सुना मक्का और सोयाबीन की खेती करके हम किस तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं मूंग की खेती के ऊपर।
1: शनिवार को अधिकांश मंडियों में मसूर के सौदे मामूली उठा पटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई फेरबदल दर्ज नहीं किया गया। वहीं बात मसूर की पैदावार की करें तो बता दें कि इस साल मसूर की उपज में कुछ कमी जरूर आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कैसा है मसूर का बाजार, आइए जानें।
2: घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 14,40,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज महज 14,90,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 50,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22,90,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 17 जून को मसूर का भाव रहा 6,200 रुपए। 18 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,200 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में मसूर का कारोबार

0: आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्याभील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, आप लगातार हम जान विभिन्न भिन्न फसलों की जानकारी हम ले रहे हैं। आइए डालते हैं एक नजर बाजरे की खेती के ऊपर।
1: आगे बात करते हैं अब बुलेटिन में बाजरे की। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 94,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन की रही थी। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य ही बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में बाजरा बिकवाली के लिए पहुंचा। इसके साथ ही अगर हम इसके हाजिर भाव की बात करते हैं, इस पर नजर डालते हैं, तो बता दें एक मार्क नेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,940 रुपए। इसके साथ ही राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें, यहां पर सौदे दर्ज किए गए 1,922 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे हुए 2,010 रुपए पर। और वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की ही बहजोई मंडी की, तो यहां पर बाजरे का भाव रहा 2,010 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना अपने बाजरे के बाजार के बारे में, प्रतिक्रिया लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। रवि जी, बाजरे को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप?
2: बाजरे की डिमांड इस बार काफी अच्छी देखने को मिल रही है
1: जी।
2: और खास तौर से बात करें तो स्टॉक में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है
1: जी।
2: और इसी वजह से दामों में बहुत ज्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है।
1: बिल्कुल, तो एक सीमित दायरा यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं?
2: बाजरे का स्टॉक जिन किसान भाई बहनों के पास है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और आने वाले हफ्तों में अपना स्टॉक निकालकर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना बाजरे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंट्याभील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्याभील 90.8 FM।
4: आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: आपको ऐसा कोई रिकॉल करती है, किसी ने आपको कहा मैं पेंटिंग से आपको जोड़ा हो, आपको अपने आप ही शुरुआत से ही पेंटिंग से दोस्ती हो गई या रिश्ता
1: ना
0: बन गया?
1: शुरुआत से नहीं, मेरा किसी किसी ने मुझे नहीं कहा कि यार मैं ड्राइंग अच्छी करती हूँ तो मुझे पेंटिंग करनी चाहिए। इट इज जस्ट दैट जैसे कि एक ऑटोमेटिकली अंदर से चीज आती थी और मैं अपना पेंट और ब्रश लेके बैठ जाती थी। यही मेरा घर में भी पास टाइम ही रहता था। तो बस ये है कि मैंने BFA, मेरे फादर चाहते थे कि मैं इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करूं, तो इसलिए मैं यहाँ से इंडिया से मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स नहीं ज्वाइन किया, और उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। लिटरेचर का एक अपना ही आनंद है।
0: तो चलिए, इतना एक जो आपका पेंटिंग से रिश्ता बन गया था, इसी बात को याद करके हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं, एक अच्छा सा गाना सुनते हैं। आपका ये जो एक बॉन्ड बन गई थी पेंटिंग से, उसी को याद करके एक गाना सुनते हैं कुछ देर के लिए, और उसके बाद में हम अपने इस इंटरव्यू को जारी रखेंगे।

0: उनकी हिस्ट्री इतनी टर्मोइल भरी रही है कि उन मतलब उनका पॉजिटिविटी उनसे हमने सीखी है कि किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स के बीच में भी, अपने टर्मोइल्स के बीच में भी अपनी लाइफ जी सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। आजकल भी देखिए लेबनान में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। पहले से लेबनान बदल गया। आप किसी नई कंट्री में जाते हो, वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है, कल्चर अलग होती है, लोगों की बातचीत का तरीका अलग, तो कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हो आप? आई मीन कुछ कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रूमिंग सेशंस होते हैं या कुछ ऐसा होता है? हाउ डू यू डू दैट?
0: व्हेन वी एंटर द फॉरेन सर्विस एज स्पाउसेस, सो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेन किया जाता है, बट दैट इज राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द ऑफ जॉइनिंग माय हस्बैंड फॉर अ फॉरेन पोस्टिंग। उसके बाद वी लर्न ऑन आवर वे, हम ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं। बस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि थोड़ा सा इंसान को एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है। इतना ज्यादा मिलना जुलना फॉरेन डिप्लोमैट से होता है, इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट है, कॉकटेल्स हैं, पार्टीज हैं, तो उन सब चीजों को फेस करने के लिए या उन सब चीजों में कंफर्टेबल होने के लिए थोड़ा इंसान को अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाना पड़ता है और थोड़ा सा अपने कंट्री के बारे में वेल रेड होना होता है, सो दैट यू आर एबल टू कंटिन्यू विद द कॉन्वर्सेशन।
1: That's very important. पर आपको अपनी कंट्री, अपनी कल्चर, अपना हिस्ट्री, इसके बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए, तभी आप वहां से कोई बात कर पाएंगे।
0: बहुत ना भी हो, लेकिन हाँ काफी हद तक जानकारी होनी चाहिए। So that is very important. In fact, in my posting in Brunei, I was writing articles every week for the leading newspaper. Borneo Bulletin, उसमें मैं अपने कंट्री के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में लिखती थी। So that is the way I was promoting my country.
1: तो श्रोताओं देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग कई बार यहाँ बैठ के हमें अपनी कंट्री की बहुत चीजों के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन जब लोग हमारे यहाँ से एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर्स बाहर जाते हैं तो उनको अपनी कंट्री के बारे में प्रोजेक्ट करना पड़ता है, बताना पड़ता है, तो उनको जानकारी अपनी कंट्री, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए अपने इस कंट्री की मोहब्बत के बारे में, इस प्यार के बारे में रुक के एक गाना सा सुनते हैं अच्छा सा, और फिर हम इस बातचीत को जारी रखते हैं।
0: जी।

0: हाँ, वेलकम कल्पना जी।
1: जी
0: अब मैं भी ये जानना चाहता हूँ और हमारे बहुत सारे लिसनर्स भी ये जानना चाहते होंगे कि
1: जी
0: जब कोई एम्बेसडर किसी देश के हेड ऑफ द स्टेट को अपना लेटर ऑफ क्रेडेंस या अपने
1: जी
0: क्रेडेंशियल प्रेजेंट करता है तो ये
1: जी
0: सेरेमनी कैसे होती है, कुछ इसके बारे में हमें बताइए। और कुछ हमें हमें बड़ी क्यूरियोसिटी है इसके बारे में जानने की, कुछ बता
1: जी
0: सकेंगे?
1: श्योरली श्योरली। सो क्रेडेंशियल्स की जो सेरेमनी है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक इवेंट होता है, और इस इवेंट में जो न्यूली अपॉइंटेड अम्बेसडर होते हैं वो फॉर्मली एक लेटर ऑफ क्रेडेंस दूसरे कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट को प्रेजेंट करते हैं फ्रॉम द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द पेरेंट कंट्री। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया अगर किसी दूसरे देश के अम्बेसडर पोस्ट होते हैं तो ही हैज टू प्रेजेंट देयर क्रेडेंशियल्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट एन ऑफिशियल सेरेमनी जो कि राष्ट्रपति भवन में
0: ऑर्गेनाइज होती है।
1: ऑर्गेनाइज की जाती है। अब ये जो कैन आई स्पीक अ लिटिल मोर अबाउट
0: हाँ,
1: क्रेडेंशियल्स।
0: श्योर श्योर श्योर, प्लीज प्लीज।
1: ओके, सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट सेरेमनी इन द सेंस कि ये एक ऑफिशियल पहचान है, ये फॉर्मली एम्बेसडर के स्टेटस और अपने देश की के रिप्रेजेंटेटिव अपने देश को रिप्रेजेंट करने के अधिकार को कंफर्म करता है। डिप्लोमेटिक ड्यूटी की शुरुआत इसी से होती है। एम्बेसडर क्रेडेंशियल दिखाने के बाद ही पूरी तरह से ऑफिशियल काम कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है, दोनों देशों के बीच में रिश्तों की मजबूती और दोस्ती और आपसी सम्मान और सहयोग का ये प्रतीक माना जाता है। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल और परंपरा ये लंबे समय से चले आ रहे इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रीति रिवाजों को बनाए रखता है। तो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर क्रेडेंशियल सेरेमनी।
0: तब तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मेरे ख्याल में परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है। जब मोनार्क्स होते थे, किंग्स होते थे, उनके सामने भी जो एम्बेसडर जाते थे वो भी अपने क्रेडेंस करते। कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसा एक्सपीरियंस इस सेरेमनी से रिलेटेड जो आपने खुद देखा हो या आपके हस्बैंड ने आपको बताया हो, कोई ऐसा कोई किस्सा याद है, कोई एनीथिंग अगर कुछ?
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि इट इज अ वेरी प्योरली ऑफिशियल सेरेमनी, तो एंड इट इज मेनली बिटवीन द एम्बेसडर एंड द हेड ऑफ द स्टेट। सो इट इज नॉट मेंट फॉर रियली फॉर सो मच फॉर स्पाउसेस और फॉर पब्लिक। सो आई वुड लाइक टू दैट इज द वे इट इज।
0: ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो चलिए अब ऐसा करते हैं कि जो वहां की कल्चरल जो एक फैब्रिक होता है हर कंट्री का और सोशल जो फैब्रिक होता है, तो उससे आप जो एसिमिलेट करते होगे, किसी तरह बातचीत करते होगे, तो वो किस तरह से आप मैनेज करते हो? क्या आपको वहां का कोई लोकल कोई अपॉइंटी होता है जो आपको गाइड करता है साथ साथ में उस कंट्री का? हाउ यू मैनेज दैट, किस तरह से करते हो आप?
1: देखिए, अगर तो लैंग्वेज का इश्यू है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग जिस कंट्री में रहे हैं वहां पे इंग्लिश हैज आल्सो बीन स्पोकन, लेकिन एक इंटरप्रेटर हमेशा साथ रहता है एम्बेसडर के और विद द डिप्लोमैट इफ देर इज अ नीड। एंड एज फार एज द स्पाउसेस आर कंसर्न, वी मिंगल विद द अदर डिप्लोमैट्स वाइव्स एंड वाइव्स। So most of them are speaking English, and if they are not speaking English, then we are able to manage because they are all able to speak broken English. Okay, so we tend to make friends with almost most of the people around. I would also like to say that as a diplomat's wife, I have had the privilege of engaging with diverse cultures and, participating in various public and diplomatic events. जिससे इट हैज रियली ब्रॉडन माय ग्लोबल आउटलुक एंड स्ट्रेंथन माय इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स.
0: तो चलिए, जैसे आप पोलैंड में भी रहे हैं, सिंगापुर में भी रहे हैं, इन दोनों कंट्रीज में से आप किसी के बारे में बताना चाहें कि पोलैंड की दिनों की यादें आपकी कैसी रही, या सिंगापुर एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है उसके बारे में कुछ बताना चाहें, एनी इंसिडेंट दैट यू रिमेम्बर, कोई सी खास बात जो. हाँ बताइए.
1: वेल, सिंगापुर के लिए जो चीज बहुत ही इम्प्रेसिव लगी मुझे, वो सिंगापुर के रेगुलेशंस, उनकी क्लेंलीनेस, उनके रूल्स.
0: ओके.
1: दे आर वेरी फर्म अबाउट देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड सो इट इज अ वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड कंट्री. मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ नेचर बहुत थी, लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज्ड कंट्री था. और किंगडम ऑफ ब्रुनाई, दैट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. बिकॉज जब हम सुल्तान का पैलेस विजिट करते थे, सुल्तान ऑफ ब्रुनाई पैलेस ऑन वेरियस फॉर्मल ओकेजन्स, तो मुझे तो ऐसा ही लगता था जैसे बचपन में हम लोग फेरी टेल्स पढ़ते हैं, किंग्स और क्वींस और पैलेसेस के बारे में पढ़ते हैं. तो दोज रीडिंग्स एंड दोज इमेजिनेशंस, दे जस्ट बिकेम अ लिविंग रियलिटी for me when I used to enter the palace of the king of Brunei.
0: मतलब बहुत ही opulence थी क्या, बहुत बड़ा था, larger than life.
1: Yeah, larger than life, absolutely. And the kingdom of Brunei, it's a very rich country. The Sultan of Brunei once upon a time was one of the richest man in the world. उनके यहाँ palace में जाइए, everything is in gold. I mean, like we see in movies. मूवी में तो सब आर्टिफिशियली दिखाते हैं, बट उनके तो लाइक पिलर्स हैं या उनके सोफा के हैंडल्स, एवरीथिंग वाज इन गोल्ड. उनके सोफा के हैंडल्स, एवरीथिंग वाज इन गोल्ड. इट वाज एब्सोल्युटली लार्जर देन लाइफ. और जैसे कि किताबों में हमने जो, एज मैंने पहले भी कहा, जो भी कहानियां हमने राजाओं के बारे में या रानियों के बारे में पढ़ी हैं या उनके पैलेसेस के फोटोग्राफ्स देखी हैं, आई थिंक इट वाज जस्ट लाइक बुक्स कमिंग टू लाइफ.
0: तो ये तो बहुत मजेदार बात बताई. हाँ, अच्छा एक बात बताइए, जब डिनर वगैरह होता था, मैं वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऑफ द कफ सवाल पूछ रहा हूँ, तो जब डिनर हाँ, वगैरह होता है तो के ये किंग ऑफ ब्रुनाई क्या आपके साथ इंटरमिंगल करते हैं, साथ में बातचीत करते हैं, या बिल्कुल अलूप से रहते हैं क्या?
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. बहुत जैसे सुल्तान की बर्थडे ब्रुनाई में बहुत ही जोर शोर से मनाई जाती है. उनकी बर्थडे एक महीने तक सेलिब्रेट होती है.
0: Okay.
1: सारे डिप्लोमैट्स जो हैं उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. दे बी टुगेदर वी वुड होस्ट अ फंक्शन फॉर द सुल्तान ऑफ ब्रुनाई फॉर ऑन हिज बर्थडे, एंड ही यूज्ड टू ग्रेस द ओकेजन एंड मिंगलिंग विद एवरीबॉडी, टॉकिंग टू एवरीवन. ऑफ कोर्स दे आर वेरी फॉर्मल फंक्शंस, एंड हम लोग को सबको अपनी नेशनल ड्रेस में ही होना होता है. जैसे लेडीज हैं, दे हैड टू वेयर साड़ीज, एंड माय हस्बैंड वाज वेयरिंग अ शेरवानी बिकॉज इट हैड टू बी ऑल नेशनल ड्रेसेस दैट वी हैड टू वेयर एज वी वर रिप्रेजेंटेटिंग आवर कंट्री. तो दे डेफिनेटली बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत वेरी कल्चर, वेरी पोलाइट. So, I mean, it has been a wonderful experience.
0: That's great. चलिए मजा आ गया आपकी बात सुन के. तो फिर ये सुल्तान ऑफ ब्रुनाई की बर्थडे की बात पे लेके हम एक अच्छा सा शानदार सा गाना सुनते हैं, वैसे ग्रैंड सा, और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं. और अब हम आपके दिल के करीब जो टॉपिक है पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे.
1: Sure.

0: वेलकम बैक कल्पना जी।
1: जी
0: अब आते हैं आपके जो बहुत ही सब्जेक्ट आपके दिल के करीब है। अब ये जो लगातार आपकी यात्राएं रहती हैं और विदेश प्रवास के बीच में, आप पेंटिंग आपके साथ साथ कैसे चलती रही, किस तरह से आप मैनेज करती थी, कुछ इसके बारे में बताइए।
1: पेंटिंग हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ मी। तो पेंटिंग तो मैं इतना भी बिजी रहते थे लेकिन इतना नहीं कि पेंटिंग के लिए टाइम ना निकाल पाए। मॉर्निंग आवर्स में मैं हमेशा अपना पेंट करती थी और इनफैक्ट नेचर मेरे नेचर हैज ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू मी। तो ट्रैवलिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, सीइंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेचर, अलग अलग रूप में नेचर को देखा मैंने और उस नेचर को मैंने अपने कैनवस पे डिपिक्ट किया है इन डिफरेंट फॉर्म्स। लाइक लेबनन की नेचर वाज डिफरेंट, इट हैड दोज ब्यूटीफुल सीडर ट्रीज। सिंगापुर डिडंट हैव मच नेचर बट देन इट हैड द सी, सो दैट वाज वेरी सीनिक। एंड आई वुड से दैट इट हैज बीन अ जर्नी विच इज जो कि बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। डिप्लोमेटिक सर्विस में मेरे हस्बैंड के साथ मेरी आर्ट ने बहुत फ्लरिश किया। आई इवॉल्व एज एन आर्टिस्ट और ये शायद इसी कारणवश हो सका है क्योंकि हमने इतना ट्रैवल किया, इतने कंट्रीज देखे, हर जगह की डिफरेंट रहन सहन, हर जगह की डिफरेंट नेचर, लैंडस्केपिंग, ऑल दिस हैज बीन सो वंडरफुल दैट उसको कैनवस पे उतारने का के लिए एक आर्टिस्ट वुड रियली वांट टू डू इट।
0: तो अब जैसे मैं एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछ रहा हूँ, अजीब सा तो इन द सेंस के थोड़ा ऑफ द कफ है। अगर किसी ने, लिसनर्स ने आपकी पेंटिंग नहीं देखी हो और मैं आपसे कहूं कि उसके लिए आपका जो पेंटिंग का स्टाइल है या जो फॉर्म है उसको अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो आप किस तरह, क्या बताना चाहेंगे उसको, किस तरह की पेंटिंग्स आप बनाती हैं?
1: ओके, तो आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई द मीडियम जिससे मैं पेंट करती हूँ। मेरा मीडियम बेसिकली मेनली ऑयल्स ऑन कैनवस है। इसके अलावा मैंने वॉटर कलर्स, एक्रेलिक्स, तंजोवर आर्ट, इन सबसे पे भी बहुत काम किया है लेकिन मेनली शुरुआत मेरी ऑयल्स ऑन कैनवस से ही हुई। बचपन में वॉटर कलर से, फिर मैं ग्रेजुएट कर गई थी काफी यंग एज पे ही ऑयल्स ऑन कैनवस पे। तो वही मेरे साथ हमेशा रहा है और मैं नेचर, जनरली नेचर डिपिक्ट करती हूँ अपने नेचर एंड बुद्धा। गौतम बुद्ध हैज ऑल्सो बीन, सो लेबनन में मेरी बुद्धा की जो पेंटिंग्स थी मैंने ऑयल्स में बनाई थी और बाटिक में भी बनाई थी, वो काफी अप्रिशिएट हुई और काफी फॉरेनर्स ने उनको खरीदा भी पेंटिंग्स को। तो बुद्धा हैज बीन वेरी पॉपुलर इन लेबनन आई मस्ट से, एंड नेचर हैज बीन पॉपुलर इन मोस्टली ऑल द कंट्रीज।
0: तो ये तो आपने बता ही दिया कि कोई खास थीम या मोटिव जो बार बार आपकी पेंटिंग्स में रिपीट होते हो, यही आपने बता ही दिया कि बुद्धा, नेचर एंड बुद्धा, और कोई खास चीज ऐसी रिपीट करती हो?
1: सो मोस्ट ऑफ माय आई थिंक एक समय आ गया था पेंटिंग करते करते कि मुझे ये रियलाइजेशन होने लग गया कि दिस आर्ट इज माय स्पिरिचुअल जर्नी। सो मोस्टली इन नेचर आई ऑलवेज ट्राई टू, मैं हमेशा एक स्पिरिचुअल एंगल से डिपिक्ट करने की कोशिश करती हूँ। जैसे अगर हमें बुद्धा भी बनाने हैं तो वो भी इट विल बी सराउंडेड विद नेचर। मैं कभी बुद्धा ऑन कैनवस अलग नहीं बनाती, इट इज ऑलवेज सराउंडेड विद नेचर बिकॉज मेरे लिए नेचर इज द जर्नी, द स्पिरिचुअल जर्नी। पेंटिंग नेचर इज द स्पिरिचुअल जर्नी फॉर मी। नहीं, एंड आई जनरली डोंट डू एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। तो उसमें जब मैं नेचर भी पेंट करती हूँ तो एक इट इज नॉट सो, इट इज रियलिज्म प्लस एक्सप्रेशनिज्म। उसमें मेरे वर्क्स ओरिजिनल होते हैं तो जितनी कलर थीम्स हैं या जो कलरिंग है या जो भी उसमें मैं ऐड करती हूँ या सब्ट्रैक्ट करती हूँ, दैट इज ऑल वेरी एक्सप्रेशनिस्टिक।
0: तो चलिए, ये जो आपने नेचर और बुद्धा की जो आपकी पेंटिंग्स का बातचीत की है, इससे हम आते हैं, आपने बहुत सारी सोलो एग्जीबिशंस भी की हैं, वेरियस कंट्रीज में की हैं, कोई खास
1: जी
0: ऐसी एग्जीबिशन जो आपको याद है, आपकी सोलो एग्जीबिशन, एनीथिंग, एनी इंसिडेंट दैट यू रिमेम्बर, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी?
1: ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि हमारी एवरी एग्जीबिशन हैज बीन अ सक्सेस एंड एवरी एग्जीबिशन हैज बीन सो क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज ये बहुत ही एक पूरे साल का हार्ड वर्क होता है एक सोलो एग्जीबिशन में. लेकिन हाँ, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ब्रुनाई में जो हमने मैंने और एक मैंने सोलो भी करी है ब्रुनाई में, और एक एग्जीबिशन हमने और इंडोनेशियन एम्बेसडर की वाइफ ने मिलके करी थी टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ द किंग सुल्तान ऑफ ब्रुनाई.
0: ओके ओके,
1: सो दैट वाज अ वेरी बिग सक्सेस फॉर बोथ ऑफ अस, और इट वाज रियली अप्रिशिएटेड. एंड अदरवाइज हमारी सारी एग्जीबिशंस दे हैव बीन बाय ग्रेस ऑफ गॉड सक्सेसफुल, एंड माय हार्ड वर्क हैज बीन अप्रिशिएटेड.
0: नहीं नहीं बहुत बढ़िया, तो मजा आ गया आपकी बात सुन के. तो ऐसा करते हैं, इसी बढ़िया सक्सेस के ऊपर हम रुक के गाना सुनते हैं, और फिर हम इस इंटरव्यू की आखिरी पायदान पर कुछ और बातें करते हैं.

0: हाँ, वेलकम बैक कल्पना जी। आपके
1: जी
0: हस्बैंड एक सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं, तो आपकी ये जो आर्ट की जर्नी है या पेंटिंग की जर्नी है, उसमें
1: जी
0: उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, उनका कितना सपोर्ट रहा है, कुछ उसके बारे में बताएंगी? क्या वो भी पेंटिंग की तरफ उनका भी झुकाव है, या वो किस आर्ट फॉर्म की तरफ उनका झुकाव है?
1: नहीं, मेरे हस्बैंड का जो इंटरेस्ट पेंटिंग से बिल्कुल अलग है, लेकिन ही हैज बीन द पिलर ऑफ माय स्ट्रेंथ एंड ही हैज इट इज बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट दैट आई हैव बीन एबल टू इवॉल्व एज एन आर्टिस्ट. बिकॉज उनका हमेशा प्रोत्साहन रहा है, उन्होंने हमेशा मेरे काम को देखा है. उसमें मैं उन्हीं से पूछती हूँ, अगर कोई भी चीज मुझे डाउट आता है तो वो मुझे उनसे पूछती हूँ, तो वो मुझे अपनी एडवाइस देते हैं दैट ओके इसमें यू कैन ऐड दिस और यू कैन ऐड दैट. सो आई वुड से दैट माय हस्बैंड हैज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव इन माय जर्नी ऑफ आर्ट.
0: दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो चलिए, तो फिर अब एक बात बताइए कि
1: जी
0: आपकी ये पूरी लाइफ जर्नी है, डिप्लोमेसी भी है, ट्रेवल भी है, आर्ट ही है, अगर इन सबको मिला के कैनवास पे अगर कोई चीज आप उतारेंगी तो, और
1: जी
0: उस पेंटिंग बनाएंगी, तो उसका टाइटल क्या
1: जी
0: देंगी? आपकी पूरी लाइफ जर्नी को अगर आप कैनवास पे उतारें, उसका क्या
1: जी
0: टाइटल देंगी? क्या उनमें कौन कौन से रंग? हाँ
1: मैं तो मुझे तो एक ही टाइटल, एक दो टाइटल समझ में आते हैं. अगर मैं पूरा अगर अपने जर्नी को एक कैनवस पे उतारना चाहूं, अनुभवों का इंद्रधनुष.
0: ओहो, वंडरफुल, अनुभवों का इंद्रधनुष, दैट्स गुड,
1: इंद्रधनुष,
0: बहुत बढ़िया टाइटल,
1: दैट इज
0: रेनबो ऑफ
1: व्हाट आई वुड.
0: एक्सपीरियंस,
1: यस, रेनबो ऑफ एक्सपीरियंसेस.
0: एक्सपीरियंसेस, यस,
1: या
0: वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत
1: यस
0: बढ़िया बात है। चलिए, और आप अगर कोई एक मैसेज देना चाहें जो

0: और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि बहुत से आजकल मैं नोट करती हूँ कि लोग हैं या यंगस्टर्स हैं कि एक काम शुरू करते हैं इन फील्ड ऑफ आर्ट ही मैंने नोट किया है, उसको बीच में छोड़ देते हैं कि हम बोर हो गए इससे, दूसरा शुरू कर देते हैं, तीसरा शुरू कर देते हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगी दैट देयर इज नो सच थिंग एज बोर्डम। आपने जो एक काम शुरू किया है उसको पहले खत्म करें, उसके बाद दूसरा काम उठाएं, उसी को लगन और डेडिकेशन कहते हैं।
1: बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आजकल पेशेंस बहुत कम है, इंपेशेंट हो जाते हैं।
0: नहीं है, देयर हैज टू बी पेशेंस एंड डेडिकेशन। व्हाई शुड यू से दैट यू हैव गॉट बोर्ड ऑफ दिस पेंटिंग। मैं जब एक पेंटिंग बनाती हूँ तो मेरा मैं यही देखती हूँ कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये पेंटिंग कैसी बन के आएगी व्हेन आई कंप्लीट इट।
1: ओके, सही।
0: एंड दैट इज व्हाट मेक्स मी कंप्लीट माय पेंटिंग।
1: ठीक है, कल्पना जी, आप आज की इस आत्मीय और प्रेरणादायक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि कला केवल कैनवस पर रंग भरने का नाम नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों, यात्राओं, संस्कृतियों और मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आपने अपना समय दिया और हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की।
0: Thank you, Alok ji. Thank you for having me on your show. It has been a great privilege to be talking to you and to be sharing my life with you.
1: Radio SN परिवार की ओर से हम आपके उत्तम स्वास्थ्य, निरंतर सृजन और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज के लिए मुझे आलोक कुमार को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभरात्रि और याद रखिए, यात्राएं हमें दुनिया दिखाती हैं, लेकिन कला हमें दुनिया को महसूस करना सिखाती है। नमस्कार
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

0: दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए, सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे किताब पढ़ रहे थे। तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को

0: दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने एक बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए एक काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे? दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
1: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: आओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें।
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं विनोद भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: दैट्स द स्पिरिट सर।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ, कहीं का उल्लू कपट्ठा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहे डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं। टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये दुस्साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, हे मेरे, कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त ना रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है, और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं, लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझा कर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर लें, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है जैकी श्रॉफ। जी हां, जैकी श्रॉफ जी का जन्म बॉम्बे में ही, जो कि आज की डेट में मुंबई है, हुआ था। इनका जन्म 1 फरवरी 1957 को हुआ था। लीजिए, पेशा खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। जैकी श्रॉफ जी ने 11वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद बस फिल्मों में आने की कोशिश में लग गए, और उसके बाद इतनी ढेर सारी फिल्में इन्होंने की कि बस मजा आ गया। इनकी शानदार पर्सनालिटी, इनके बोलने का अंदाज हम सभी को हमेशा याद रहता है। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं पर फिल्माया हुआ ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? कैसे हैं दोस्तों? आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

यागी श्रॉफ जी ने कुछ टेलीविजन शोज भी किए, जैसे लहरें, चित्रहार एंड मिसिंग। वहां भी इन्होंने अपनी कलाकारी की छाप छोड़ी। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। भाई साहब, आपको पता है गूगल का जन्म कैसा हुआ? एक बार रजनीकांत सुबह सुबह उठे, उन्हें ख्याल आया कि अगर उनकी नॉलेज का 1% हिस्सा भी दुनिया को मिल जाए तो उनका भला हो जाएगा। बस गूगल का जन्म हो गया।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना दोस्तों? आज के कलाकार प्रोग्राम के कलाकार जैकी श्रॉफ जी का ये गीत

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। आइए सुनते हैं जैकी श्रॉफ जी के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: 1992 से लेकर 1993, यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

sap sune sarsaye sap sune sarsaye sai sai surma sa sa sang samaye samay sabak samjhaye khoka khoka ji mera khoka khoka hai फांसी फंदा फुसकी फांके फुंगी फन फैलाए फिरते फिरते फेरा फेरी फेरे।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना?
1: Dum-da-dum-da-dum, dum-da-dum-da-dum, dum-da-dum-da-dum, dum-da-dum-da-dum, dum-da-dum-da-dum, dum-da-dum-da-dum.

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के।

भेल 90.8 FM से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सबके मनपसंद प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक में। दोस्तों, आज का ये सफ़र बेहद ख़ास है, क्योंकि आज हमारे इस शो की महफिल में लफ्ज़ों के शहंशाह और सुरों के सुल्तान एक साथ तशरीफ़ ला रहे हैं। जी हाँ, आज की शाम गवाह है उस ऐतिहासिक मिलाप की, जिसने उर्दू शायरी और गज़ल की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज हमारे इस प्रोग्राम के जादुई शायर हैं गुलजार साहब, और इन अल्फाजों को रू देने वाले हमारे अजीम गुलुकार हैं जगजीत सिंह जी। दोस्तों, जब गुलजार साहब की कलम चलती है तो कागज़ पर अल्फाज नहीं, जज्बात छपते हों जैसे, और जब उन जज्बातों को जगजीत सिंह की रेशमी आवाज़ छू लेती है तो वो सीधे हमारे एहसास तक पहुंच जाते हैं। गुलजार साहब ने खुद अपने दोस्त जगजीत जी के बारे में एक बार क्या खूब कहा था, जरा गौर फरमाइए। एक बौछार था वो शख्स, बिना बरसे किसी अब्र की सहमी सी नमी से जो भिगो देता था। जब वो गुनगुनाता था तो खुलते हुए आसमान से बरसते बादल की तरह लगता था। वाह, क्या बात है! वाकई जगजीत जी की आवाज में वो नमी थी जो सूखे दिलों को भी भिगो देती थी। गुलजार साहब कहते हैं कि जब वो गाता था तो ऐसा लगता था कि जैसे बंद खिड़कियां धीरे धीरे खुल रही हों। आज हम इन दोनों की जुगलबंदी से सजे इतिहास के सबसे बेहतरीन एल्बम मरासिम की यादें ताज़ा करेंगे। मरासिम यानी वो रिश्ते जो वक्त के पार चले जाते हैं। गुलजार साहब लिखते हैं, जिसकी आवाज में सलवट हो, निगाहों में शिकन, जिसकी आवाज में सलवट हो, निगाहों में शिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते। लोग सदियों की रफाकत को भुला देते हैं। तो दोस्तों, आइए जगजीत सिंह की रूहानी आवाज में प्रोग्राम की पहली गजल सुनते हैं। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। शौक फरमाएं ये गजल।

दोस्तों, गुलजार साहब ने जगजीत जी के बारे में बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि गजल को मुशायरों के घेरे से निकालकर आम इंसान के ड्राइंग रूम तक पहुंचाने का सेहरा जगजीत जी के सर पर ही बंधता है। उसने शायरी को भारी भरकम लफ्जों से आजाद कर दिया। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सी उदासी थर कर लेती है। शाम होते ही पुरानी यादें खिड़की से चुपके से अंदर आ जाती हैं। ये जो आंखों में ठहर जाती है शाम की नमी, शायद किसी अधूरी बात की कमी है कहीं। कुछ खामोशियां भी शोर करती हैं अंदर, बस सुनने वाला चाहिए दिल की गमी। गुलजार साहब के यहाँ दर्द भी बहुत सलीके से आता है, कभी शोर नहीं करता, बस हल्के से छू जाता है। जगजीत जी की सुनहरी आवाज में सुनिए ये अफसुरदा सी गजल। शाम से आंख में नमी सी है, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। सुनिए ये बहुत बहुत बहुत खूबसूरत गजल।

दोस्तों, वक्त एक ऐसी चीज है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। कभी-कभी जिंदगी बस यूं ही गुजर रही होती है, हम उसे जी नहीं रहे होते। दिन बस एक ढर्रे पर कटता चला जाता है। इसी कश्मकश को बयां करते हुए गुलजार साहब कहते हैं, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। फिर इसके आगे लिखते हैं, आईना देखकर तसल्ली हुई, आईना देखकर तसल्ली हुई, इस घर में कोई तो जानता है मुझे। जब अकेलापन इस हद तक बढ़ जाए, जगजीत सिंह जी के सुर मरहम का काम करते हैं। सुनिए उन्हीं की जबानी ये लाजवाब गजल। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई,

दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में व्हाट्सएप और ईमेल ने खतों की वो पुरानी खुशबू छीन ली है, ये तो आप भी मानते हैं। लेकिन एक दौर था जब अल्फाज कागज पर लिखे जाते थे और दिल की धड़कनें उन खतों में महसूस होती थी। कागज के टुकड़ों में भी कहानियां होती थी, क्योंकि हर कटा हुआ फटा हुआ खत भी एक अफसाना सा होता है, जो कहा नहीं गया कभी लफ्जों में, वो अक्सर इन टुकड़ों में छुपा होता है। गुलजार साहब यादों को भी बहुत खूबसूरती से लिखते हैं, जैसे हर याद एक अधूरी चिट्ठी हो। वो कहते हैं, उसी का ईमा बदल गया है, कभी जो मेरा खुदा रहा था। फिर कहते हैं, वो उम्र कम कर रहा था मेरी, मैं साल अपने बढ़ा रहा था, हवाओं का रुख दिखा रहा था। दोस्तों, जगजीत सिंह जी की आवाज में सुनिए ये मशहूर गजल। वो खत के पुर्जे उड़ा रहा था, हवाओं का रुख दिखा रहा था।

दोस्तों कहते हैं आंखें दिल का आईना होती हैं। जो बातें जुबान नहीं कह पाती वो आंखों के रास्ते आंसू बनकर बह निकलती हैं। पर कभी कभी वो आंसू आंखों में ही ठहर कर एक अजीब सी जलन बन जाते हैं। गुलजार साहब फिर कहते हैं, आंखों से आंसुओं के मरासिम पुराने हैं, आंखों से आंसुओं के मरासिम पुराने हैं, मेहमान ये घर में आए तो चुप था नहीं धुआं, उठता तो है घटासा बरसता नहीं धुआं। सुनिए ये पुरअसरार सी गजल हमारे जगजीत जी की आवाज में। आंखों में जल रहा है क्यों, बुझता नहीं धुआं, उठता तो है घटासा बरसता नहीं धुआं।

दोस्तों, गुलजार साहब की शायरी अपनी सादगी, गहरे मायनों और अनोखी उपमाओं यानी मेटाफोर्स के लिए जानी जाती है। वे रोज़मर्रा की आम चीज़ों जैसे धूप, खत, आँखें, किताबें को बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। रिश्तों की गहराई को उन्होंने बहुत गहराई से लिखा। वक्त का गुजरना और पुरानी यादें उनकी शायरी का बड़ा हिस्सा हैं। और फिर उन्होंने त्रिवेणी नाम की एक नई जॉनर की शुरुआत की, जो तीन लाइन की कविता होती है। दोस्तों, गुलजार साहब जगजीत सिंह के बारे में एक बार कहते थे कि उनकी आवाज में जो ठहराव है, वो भागती हुई जिंदगी को रोक कर सोचने में मजबूर कर देता है। कभी कभी हम जिंदगी में जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाते, और जहां पहुंचे हैं वहां हमारी मर्जी ही नहीं होती। वक्त और तकदीर के इस पहिए को बयां करता ये शेर सुनिए। पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है, उधर के हम हैं। वक्त के साथ हैं मिट्टी का सफर सदियों से, किसको मालूम है कहाँ के किधर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है, उधर के हम हैं। सुनिए, इंसान की बेबसी और लाचारी को बयां करती जगजीत जी की आवाज में ये बहुत प्यारी सी गजल। अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है, उधर के हम हैं।

दोस्तों, गुलजार साहब जगजीत जी के बारे में कहते हैं कि जगजीत के साथ काम करना ऐसा था जैसे किसी पुराने दोस्त के साथ बैठकर चाय पीना। वो लफ्जों को ऐसे टटोलता था जैसे कोई जौहरी हीरे को परख रहा हो। जैसे मरासिम एल्बम हमारे उसी सूफियाना रिश्ते की पैदाइश है। बेशक जगजीत जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ की वो नमी, वो कशिश हमेशा हमारे एहसासों में जिंदा रहेगी। आज के इस खास प्रोग्राम का सफ़र अब यहीं मुकाम लेता है, इस उम्मीद के साथ कि आज के अल्फाजों ने आपके कई एहसासों को छुआ होगा। जाते जाते गुलजार साहब की ये खूबसूरत लाइनें आपकी नजर कर रही हूं। वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। अच्छा मोड़ आए तो ठहर जाना, बुरा आए तो गुजर जाना। तो मुस्कुराते रहिए जिंदगी के हर मोड़ का, कीजिए स्वागत और अपनी रेडियो दोस्त आरती रॉय को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए अल्फाज और कुछ अनछुए एहसासों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और खुश रहिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम
1: भावना

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना एक सुंदर से प्यारे से भिल्ली गीत को। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम चर्चा करने वाले हैं मक्का की खेती के ऊपर, साथ ही हम जानेंगे सोयाबीन से जुड़ी हुई भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। इसलिए चलिए, आपका समय ज्यादा ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं।
1: मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, निर्यात में हुआ खासा इजाफा। आइए बात मक्का के बाजार से ही। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। साल 2021-22 के दौरान कुल मक्का की उपज 3,31,00,000 टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 15,00,000 टन अधिक है। फिलहाल बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मक्का की जो आवक है वो सामान्य सी ही बनी हुई है। हाल फिलहाल में मक्का के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है, जानने के लिए आइए दिखाएं आपको ये रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। खरीफ फसलों में शामिल मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 1,870 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए मक्का की एमएसपी में 92 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,962 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं बात मक्का के निर्यात की करें तो देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से 3,70,000 टन मक्का का निर्यात हुआ था। वैश्विक बाजार में भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारत के मक्का की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी है। भारत मक्का का निर्यात मुख्य रूप से वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल के अलावा दूसरे अन्य देशों में भी करता है। मक्का मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है। मक्का भारत में चावल और गेहूं के अलावा भी एक महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 15% है। मनुष्यों के लिए मुख्य भोजन और पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण फीड के अलावा मक्का हजारों औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बुनियादी कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल में लाई जाती है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3,31,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3,16,50,000 टन ही रही थी। फिलहाल मक्का की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में मक्का बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 17 जून को मक्का का भाव रहा 1,600 रुपए। 18 जून को इसके भाव में 150 रुपए की बढ़त दर्ज हुई और भाव हो गया 1,750 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 17 जून को मक्का का भाव रहा 2,295 रुपए, जो कि 18 जून को 5 रुपए बढ़कर 2,300 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 17 जून को मक्का की कारोबार 2,150 रुपए पर हुआ। 18 जून को यहां इसका भाव 150 रुपए टूटकर 2,000 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में 18 जून को मक्का का भाव 10 रुपए बढ़कर 1,930 रुपए से 1,940 रुपए हो गया।
1: तो जाना आपने मक्का के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां यहां पर बनी हुई हैं, आगे क्या माहौल रह सकता है। जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट रवि सिंह का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। मक्का के बाजार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको?
0: तो किसान साथियों, अभी आपने देखा किस तरीके से मक्के का उछाल मंडियों में किस तरीके से देखा जा सकता है, जानकारियों को हम जारी रखेंगे। उससे पहले आइए सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिल्ली गीत को।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: किसान साथियों, आइए मिलवाते हैं आपसे कृषि एक्सपर्ट से और जानते हैं किस तरीके से आने वाले समय में किस तरीके कैसे हमें मक्का की खेती में किस क्या क्या फायदे मुनाफे हो सकते हैं, आइए सुनते हैं।
1: मक्के के दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है
2: जी।
1: फिलहाल अभी काफी हद तक स्टॉक की डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है और आने वाले 2 से 3 महीनों में इसके दामों में थोड़ा सा तेजी का ट्रेंड बन सकता है और दाम 5 से 8% तक तेजी के रुझान में आ सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो आपका कहना है कि आगे आने वाले समय में 5 से लगभग 8% तक की यहाँ पर बढ़ोतरी हम अनुमान लगा सकते हैं इसका। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी?
1: जिन किसान भाई बहनों के पास ये स्टॉक है उनको यहाँ पर अभी रुकना चाहिए और आने वाले 2 से 3 महीने में स्टॉक को निकालना चाहिए जिससे कि आपको यहाँ पर बेहतर मुनाफा मिल सके।
3: बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कर ले हमारे किसान जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है मक्का का, आगे आने वाले 2 से 3 महीने के दौरान अगर बिकवाली करते हैं तो अच्छे दाम आप अर्जित कर सकते हैं। और इसी के साथ रवि जी, आपसे हम गुजारिश करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अलग अलग जिनसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे।
0: किसान साथियों, जैसा कि हमने अभी चर्चा में सुना किस तरीके से एक आशा की किरण हम देख सकते हैं, किस तरीके से मंडियों में इसका मक्का का भाव बढ़ा जा सकता है, आइए डालते हैं एक नजर सोयाबीन के भाव पे और सोयाबीन की खेती में इस समय कौन सा मुनाफा हो सकता है। उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना एक प्यारे से भीले गीत को। आइए डालते हैं एक नजर सोयाबीन के भाव और सोयाबीन की खेती के ऊपर। आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को।
1: उठापटक के साथ हुए सोयाबीन के कारोबार में हाल, खातेगांव मंडी में 6,300 रुपए रहा बाजार भाव। मामूली बदलाव के साथ हुआ मसूर का कारोबार, कुछ मंडियों में स्थिर रहे बाजार भाव। तो आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की जो आवक है सामान्य बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में सोयाबीन के सौदे उठापटक के साथ दर्ज किए गए। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार 1,38,00,000 टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 12,18,000 टन अधिक है। हाल फिलहाल में सोयाबीन के बाजार में किस तरह का बना हुआ है हाल, आइए जानें।
2: पीली सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हाल ही में केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की है। खरीफ सीजन 2022-23 के लिए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। खरीफ फसलों में शामिल पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 3,950 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए सोयाबीन के MSP में 350 रुपए की भारी बढ़ोतरी की, जिसके बाद पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,300 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन के सौदों में उठापटक देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्केट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 17 जून को सोयाबीन का भाव था 6,055 रुपए। 18 जून को इसके सौदों में 225 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,830 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही दाहोद मंडी में भी इस दौरान सोयाबीन के भाव में गिरावट देखने को मिली। यहां 17 जून को सोयाबीन का भाव रहा 6,525 रुपए, 18 जून को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 6,425 रुपए पर आ पहुंचा। जबकि मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 17 जून को इसका भाव रहा 5,215 रुपए, जो कि 18 जून को 1,085 रुपए की भारी बढ़त के बाद 6,300 रुपए हो गया। यहीं की खुजनेर मंडी में 17 जून को सोयाबीन का भाव रहा 6,550 रुपए, जो कि 18 जून को 100 रुपए बढ़कर 6,650 रुपए पर पहुंच गया। सोयाबीन एक खरीफ फसल है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 12,18,000 टन की बढ़त होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2021-22 में 1,38,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,26,10,000 टन रही थी।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, अभी हमने जाना अलग अलग जगहों की मंडी का भाव। आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
4: सोयाबीन के दामों में धीरे धीरे करके एक तेजी का ट्रेंड बनता जा रहा है
5: जी।
4: इस साल पैदावार भी अच्छी देखने को मिली है, लेकिन उसके साथ में डिमांड भी यहां पर काफी अच्छी रही है
5: जी।
4: मंडियों में सोयाबीन के दामों में थोड़ा बढ़ोतरी का दौर देखने को मिल सकता है। अपसाइड के लेवल की बात करें तो लगभग 5-8% तक की तेजी बन सकती है।
1: बिल्कुल, तो यहाँ पर आगे तेजी का माहौल ही है जो बना रह सकता है, यही अनुमान जताया जा रहा है। तेजी का फायदा उठाएं कैसे हमारे किसान?
4: जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर सोयाबीन है, उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अभी जुलाई अगस्त तक अपना स्टॉक धीरे धीरे करके निकालना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो धीरे धीरे यहाँ पर आगे आने वाले समय में बिकवाली करेंगे तो अच्छी आमदनी हम कहें, अच्छे दाम हम कहें, अर्जित कर सकते हैं हमारे सोयाबीन के किसान।
0: किसान साथियों, अभी आपने सोयाबीन से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों को जाना और ये भी जाना कि किस समय हमें सोयाबीन को किस समय किस वक्त कौन से वक्त पे ऐसे निकालना चाहिए और अनेकों जानकारियों को आपने सुना। जानकारी को जारी रखेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से सुंदर से भीली गीत को।

सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: किसान साथियों, अभी तक हमने सुना मक्का और सोयाबीन की खेती करके हम किस तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं मूंग की खेती के ऊपर।
1: रविवार को अधिकांश मंडियों में मसूर के सौदे मामूली उठा पटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई फेरबदल दर्ज नहीं किया गया। वहीं बात मसूर की पैदावार की करें तो बता दें कि इस साल मसूर की उपज में कुछ कमी जरूर आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कैसा है मसूर का बाजार, आइए जानें।
2: घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 14,40,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज महज 14,90,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 50,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22,90,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 17 जून को मसूर का भाव रहा 6,200 रुपए। 18 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,200 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में मसूर का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 17 जून को मसूर का भाव रहा 7,040 रुपए, जो कि 18 जून को 10 रुपए बढ़कर 7,050 रुपए हो गया। वहीं राज्य की गुंडा मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 जून को मसूर का भाव रहा 7,400 रुपए प्रति क्विंटल। साथ ही उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में मसूर के सौदे मामूली नरमी के साथ हुए। यहां 18 जून को मसूर का भाव 10 रुपए गिरकर 6,610 रुपए से 6,600 रुपए हो गया।
1: तो अभी आपने जाना मसूर के बाजार के बारे में, आइए इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रवि जी, मसूर के भाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आगे इसमें हम किसी तरह का बदलाव देखेंगे या फिर अभी जो हाल बना हुआ है यही बरकरार रहेगा?
3: मसूर की डिमांड यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। दामों में एक तेजी का ट्रेंड है। हाल फिलहाल में देखें तो इस साल लगभग 8-10% की तेजी ऑलरेडी मसूर में देखने को मिल चुकी है
1: जी।
3: मंडियों में स्टॉक काफी अच्छा है, लेकिन अभी दामों में थोड़ा और तेजी का रुझान बन सकता है।
1: बिल्कुल, तो अच्छे स्तर पर है इसके दाम, आपका कहना है आगे इसमें और भी बेहतरी हो सकती है, तो ऐसे में किसान क्या करें, हमारे क्या सलाह रहेगी आपकी?
3: जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अच्छे दाम बने हुए हैं, हमारे किसान मंडियों का रुख कर सकते हैं, अच्छे दाम अर्जित कर सकते हैं बिकवाली करके, और थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आगे भी अनुमानित है, तो आप आगे भी बिकवाली करके चल सकते हैं, अच्छी आमदनी अर्जित यहाँ पर की जा सकती है।
0: किसान भाइयों, अभी आपने मसूर की खेती को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना, बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना और आगे भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं एक प्यारे से भीली गीत को।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्याभील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, आप लगातार हम जान विभिन्न भिन्न फसलों की जानकारी हम ले रहे हैं। आइए डालते हैं एक नजर बाजरे की खेती के ऊपर।
1: आगे बात करते हैं अब बुलेटिन में बाजरे की। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 94,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन की रही थी। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य ही बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में बाजरा बिकवाली के लिए पहुंचा। इसके साथ ही अगर हम इसके हाजिर भाव की बात करते हैं, इस पर नजर डालते हैं, तो बता दें एक मार्क नेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,940 रुपए। इसके साथ ही राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें, यहां पर सौदे दर्ज किए गए 1,922 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे हुए 2,010 रुपए पर। और वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की ही बहजोई मंडी की, तो यहां पर बाजरे का भाव रहा 2,010 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना अपने बाजरे के बाजार के बारे में, प्रतिक्रिया लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। रवि जी, बाजरे को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप?
2: बाजरे की डिमांड इस बार काफी अच्छी देखने को मिल रही है
1: जी,
2: और खास तौर से बात करें तो स्टॉक में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है
1: जी,
2: और इसी वजह से दामों में बहुत ज्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है।
1: बिल्कुल, तो एक सीमित दायरा यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं?
2: बाजरे का स्टॉक जिन किसान भाई बहनों के पास है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और आने वाले हफ्तों में अपना स्टॉक निकालकर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना बाजरे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंट्याभील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्याभील 90.8 एफएम।

0: એમ આપણું રેડિયો આપણી વાતે કિસ્મત પર નહીં પરિશ્રમ પર ચલતા હું કિસ્મત પર નહીં પરિશ્રમ પર ચલતા હું પ્રકૃતિ કી સુનકર પ્રકૃતિ કો હી સુલઝાતા હું ખેતો મેં બોતા હું ખેતો સે ઉપજાતા હું ઇસીલિયે તો અન્નદાતા મેં કહેલાતા હું
1: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: नमस्कार किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि आप रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर रोज शाम को 6 से 8 खेतीबाड़ी कार्यक्रम को सुनते हैं और खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को लेते हैं। किसान साथियों, वक्त आ गया है हमें पर्यावरण के अनुरूप खेती करने का। बदलते इस पर्यावरण में हमें हमारी मृदा का, हमारे पर्यावरण का, हमारी फसलों का और हमारे स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखने की बहुत बहुत आवश्यकता है। किसान भाइयों, जैसा कि हमारा किसान भली भांति वाकिफ है, दिन प्रतिदिन जिन रासायनिक दवाइयों का हम प्रयोग करते हैं वह न केवल हमारे स्वास्थ्य को बल्कि हमारी फसलों को, हमारी कृषि भूमि को, हमारे जल स्रोतों को, हमारे पर्यावरण को भी दूषित करता है। इसलिए किसान साथियों, हमें यहाँ पर ज़रूरत है एक बदलाव की, हमें ज़रूरत है प्राकृतिक खेती की, हमें ज़रूरत है जैविक खेती की। किसान साथियों, आज पुनः हम आपके सामने हाजिर है कुछ और नई कृषि संबंधी जानकारियों को लेकर। तो किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बरसात में होने वाली सब्जियों को लेकर और कृषि स्वरोजगार योजना के ऊपर। तो किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ। रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांटिया भील रोज हांजे 6 से 8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। किसान साथियों, आइए जानते हैं बरसात की खेती और कृषि शिक्षा स्वरोजगार क्या होता है।
2: जैसा कि मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अभी खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है जिसको हम बरसात की मौसम भी बोलते हैं
3: जी।
2: और इस मौसम में जो मुख्य रूप से सब्जियां लगाई जाती है वो खासकर बेल वाली सब्जियां, घिया, तोरी, करेला, खीरा, पेठा, ऐसी सब्जियां लगाई जाती हैं। साथ ही साथ है, इसके अलावा जो टमाटर वर्गीय सब्जियां हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च और हम लोबिया, इसके अलावा हम ओकरा का भी इस समय खेती करते हैं। हम पत्तेदार सब्जियों की बात करते हैं तो पत्तेदार सब्जियों में लाल चौलाई और हरी चौलाई की हम इस समय खेती करते हैं मुख्य रूप से। और इसके अलावा अन्य सब्जियां जैसे हम राउंड दयर में पालक और धनिया, इनकी भी खेती हम इस समय कर सकते हैं।
3: तो बहुत सारी वैरायटीज है, कई सब्जियां हैं जिनकी खेती आप इस समय कर सकते हैं, लेकिन खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अच्छी उपज हासिल कर सके, इसके बारे में विस्तार से आज हम जानकारी लेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
4: बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या हो सकती है, यही वजह है कि वैज्ञानिक अच्छी जल निकास वाली जगहों पर ही सब्जियां बोने की सलाह देते हैं। इसके अलावा मेड़ बनाकर खेती करना भी जल जमाव से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बरसात के दौरान बेल वाली सब्जियों में खीरा, तोरी और करेले की खेती की जा सकती है। इन सब्जियों को सीधे जमीन पर ना लें, क्योंकि बारिश का पानी सब्जियों को दागदार बना देता है, जिससे बाजार भाव पर असर पड़ता है। इसलिए इन्हें बोने के बाद बांस और रस्सियों की मदद से मचान बना लें। बरसात में भिंडी, बैंगन, फूलगोभी, लोबिया, बीन्स और चौलाई जैसी फसलों में खरपतवार की समस्या काफी ज्यादा रहती है। इससे फसल की बीमारी भी ज्यादा लगती है और कीट भी। इसीलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। अलग अलग फसलों की बात करें तो भिंडी को लगभग सभी तरह की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसकी उन्नत किस्मों में पूसा ग्रीन भिंडी 5, पूसा A4, पूसा सावनी, पूसा मखमली, वर्षा उपहार, परभनी क्रांति, आजाद भिंडी और अरका नामिका के नाम लिए जा सकते हैं। लोबिया की खेती के लिए गर्म और नमी युक्त जलवायु सही मानी जाती है। पूसा कोमल, पूसा सुकोमल, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, अरका, गरिमा, काशी गौरी और काशी कंचन लोबिया की बेहतर किस्में हैं। प्याज के लिए ऐसी जलवायु की जरूरत होती है जो ना बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडी। आमतौर पर सभी तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जाती है, लेकिन उपजाऊ दोमट मिट्टी सबसे बेहतर है। इसकी N53, पूसा रेड, पूसा रतनार, एग्रीफाउंड लाइट रेड, एग्रीफाउंड रोज, पूसा व्हाइट राउंड, पूसा व्हाइट फ्लैट और भीमा डार्क रेड इस मौसम की अच्छी किस्में हैं। मैदानी हिस्सों में जून जुलाई के दौरान खरीफ मिर्च बोई जा सकती है। इसके लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। जून के अंत तक मिर्च की रोपाई जरूर कर लें। वहीं बैंगन को लंबे गर्म और बरसाती मौसम की जरूरत होती है। इसे भी सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है।
0: किसान साथियों, अभी आपने बरसात में की जाने वाली सब्जियों के बारे में जाना, आपने जाना कौन सी उत्तम किस्म की, उत्तम बीजों के बारे में भी साथ ही आपने जाना कैसे हमें जल भराव आदि जो समस्या है उनसे भी हमें कैसे उनको बचाकर रखना चाहिए आदि जानकारियों को जाना, और इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। उससे पहले आइए रुक कर लेते हैं, कृषि स्वरोजगार क्या है?
5: देखिए, कृषि क्षेत्र की जब बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में काफी परिवर्तन आ गया है। आज की कृषि 20 साल पहले जो कृषि थी उसमें आज में काफी परिवर्तन आ गया है। आज की कृषि की हम बात करते हैं तो एक प्रतिस्पर्धी कृषि हो गई है। प्रतिस्पर्धी से मतलब है कि किसान के पास जो संसाधन है उनको किस तरह से उच्चतम उपयोग किया करके ज्यादा से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। किसान ये भी बात आजकल चाहता है कि कैसे से अधिकतम उसको आय प्राप्त हो, ये उसका मुख्य उद्देश्य हो गया। साथ ही हम देखेंगे कि जो बाजार की जो कंडीशन है जहां उसे मूल्य मिलते हैं उसकी भी काफी परिवर्तन आ गया है। वो एक प्रतिस्पर्धी हो गई है, कौन से बाजार में बेचना है उसके लिए एक स्किल, एक जानकारी की जरूरत होती है। इसलिए कृषि क्षेत्र में काफी चेंजेज आ गए हैं। हम देखेंगे जब हम कृषि क्षेत्र की बात करें कि कृषि में किस तरह के लोग इसमें काम करते हैं, हम देखते हैं कि अभी भी कृषि में ज्यादा कम शिक्षित लोग हैं और यह अशिक्षित लोग हैं जो कृषि के व्यवसाय में काम करते हैं। वो अपने खेत पर उनका प्रबंधन, खेत का प्रबंधन करते हैं, तो इसलिए काफी, और क्योंकि हमने अधिक से अधिक तम आय प्राप्त करनी है, अधिक से अधिक तम लाभ प्राप्त करना है, तो इसलिए कृषि को एक इनोवेटिव कृषि बनानी है, नवोन्मेष कृषि बनानी। इसके लिए हमें कृषि के जो इन्वॉल्व लोग हैं, कृषि में जो शामिल लोग हैं, उनको एक तरह से हमें कहेंगे कि उनका उत्थान करना है, उनको मानव संसाधन कृषि क्षेत्र में निर्माण करना है। इसके लिए कृषि की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरत है।
3: बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि किस तरह से साल दर साल जो कृषि है उसके तौर तरीकों में बदलाव आ रहा है, और अब तो कई तरह की नई तकनीकी भी आने लगी है, और ऐसे में इन चीजों के बारे में किसानों के लिए जानना बेहद जरूरी है। कृषि में जहां अल्पशिक्षित लोग भी जुड़े हुए हैं, तो वहीं आज हम देख रहे हैं कि आज के दौर में उच्च शिक्षा हासिल करके भी युवा इस क्षेत्र में आ रहे हैं और जो कृषि है उसे उद्यमिता की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे में कृषि शिक्षा उनके लिए किस तरह से कारगर साबित हो सकती है, विस्तार से आज हम बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
6: कृषि में उच्च शिक्षा और स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आज कृषि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की दक्षता और क्षमता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कृषि शिक्षा को लेकर विद्यार्थी स्वरोजगार के लिए भी खुद को तैयार कर सकते हैं। देश के युवा अपना खुद का रोजगार कर सके, इसके लिए सरकार और देश में मौजूद कृषि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा देने और इसे आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। देश में 1877 में पहली बार कृषि शिक्षा की जरूरत महसूस की गई और इस तरह सईदापेट में पहले कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई। देश के दूसरे कुछ हिस्सों में कृषि शिक्षा को इंजीनियरिंग विद्यालयों से शुरू किया गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बड़े अनुसंधान संस्थान की शुरुआत महसूस की गई। 1905 में ये सपना भी पूरा हो गया और पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इस समय देश में करीब 99 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 66 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनसे शिक्षा लेकर युवा खुद को स्वरोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। कृषि शिक्षा पाकर युवा अनाज, फल, सब्जियों, दूध से बने उत्पादों, नकदी फसलों, मछली पालन, मुर्गी पालन और मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। कृषि शिक्षा का ही नतीजा है कि अब खेती सिर्फ आजीविका का साधन मात्र नहीं है, बल्कि देश के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही है।
0: जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में देखा, हमारी जो कृषि है वो न केवल आजीविका का साधन बनी हुई है बल्कि हमारे देश के विकास में भी एक अहम भूमिका निभाती है। तो किसान साथियों, हमें हमारी जो कृषि है उसमें हमें उन्नति उसमें लानी है, उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है, हमें उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। हम जानते हैं हमारा किसान सदियों से कृषि करते आया है, बिना किसी शिक्षा के हमारा किसान खेती करता आ रहा है, परंतु बदलते इस समय में हमें बहुत जरूरी है हमारे ज्ञान का आदान प्रदान करने की, हमारे ज्ञान का वो साझा करने की, हमें दूसरों से सीख लेने की, हमें कैसे हमारा दूसरा किसान जो एक उन्नत किसान है, एक सक्षम किसान है, वो अपने खेतों में कौन सी पद्धति अपना रहा है, कौन सी नई खोजें उन्होंने अपने खेतों में की है, इन सारी चीज़ों को जानने की आवश्यकता है, जिससे हम जितना हमारे ज्ञान को हम जितना साझा करेंगे एक दूसरे के साथ, उतना ही हम हमारी कृषि में एक नया बदलाव ला सकते हैं और हमारी आय के स्रोतों में भी हम एक बदलाव ला सकते हैं। साथ ही
5: कृषि क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा संभावना है। कृषि क्षेत्र की हम बात करें और रोजगार की हम बात करें, तो एक हम जॉब भी हम दूसरी कंपनियों में या पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मुख्य जो संभावनाएं हैं कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो उद्यमी बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं कृषि क्षेत्र में। तो उसके लिए जो हमारे ग्रामीण युवा है, तो उनको हमें कृषि क्षेत्र में बनाए रखने के लिए और उनको सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होगा कि उनको कृषि क्षेत्र को एक ल्यूक्रेटिव सेक्टर बनाना है, उसको आर्थिक रूप से एक आकर्षित एक क्षेत्र बनाना है। और उसके लिए हमें जरूरत है कि कृषि क्षेत्र में कृषि शिक्षा का प्रसार करके उनको उद्यमी बनने की शिक्षा हम दें।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, यहाँ पर हम हमारे किसान का एक सवाल था, उससे हम लेते हैं कि बारिश के समय में वह कौन सी फसल लगा सकता है। साथ ही उन्होंने कुछ फसलें अपने खेतों में लगाई हुई है, तो उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को वो जानना चाहते हैं, तो आइए लेते हैं इसमें एक्सपर्ट की राय।
2: आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बरसात का मौसम है, खासकर खरीफ का मौसम है, ये बहुत ही उपयुक्त समय है और हम इसमें बैंगन, मिर्च, टमाटर की खेती आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके क्षेत्र में जो भी प्रचलित प्रजाति है और आपके आसपास जो भी अनुमोदित प्रजाति है उसका चयन करें, और इसके लिए सबसे पहले आपने नर्सरी तैयार करना है। नर्सरी को आप वायरल फ्री, वायरस के प्रति अवरोधी प्रजाति का भी चयन करें, साथ ही साथ उसको उगाते समय आप इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस में उगाते हैं तो अच्छी नर्सरी तैयार होगी, और उसको आप 25 से 30 दिन के बाद आप अपने जो मुख्य खेत है उसमें आप रोपित कर सकते हैं। रोपित करने से पूर्व आप विशेष सावधानी रखें कि बरसात का मौसम है तो उसको आप 15 सेंटीमीटर ऊंची हुई उठी हुई मेड़ों पर ही आप उसकी रोपाई करें।
0: जी, जी। किसान साथियों, साथ ही साथ आइए पूछते हैं करेले की खेती के बारे में। हमारे एक किसान भाई ने हमें करेले की खेती को लेकर भी कुछ जानकारियों को के लिए हमें आग्रह किया था, तो आइए लेते हैं एक्सपर्ट की राय और जानते हैं करेले की खेती के ऊपर।
2: की जो वैरायटी है पूसा दो मौसमी और पूसा सदाबहार है, आप इसका आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी पूसा की बहुत अच्छी वैरायटी पूसा औषधि है, जो कि आप इसको महाराष्ट्र और उस क्षेत्र के लिए भी अनुमोदित है, तो आप इन प्रजातियों को लगा सकते हैं। आप इसके लगाने के लिए सबसे जरूरी है कि आपने जहां से भी बीज लेना है एक तो विश्वसनीय संस्था होना चाहिए, साथ ही साथ उसका उपचार अवश्य करेंगे और उसको जैसा कि मैंने बताया कि इसको आप मुख्य खेत में जो है नालियों में जो आपकी नाली होगी उन नालियों में आप 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आप लगाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि बरसात के मौसम में पानी खड़ी होने की संभावना रहेगी तो आप इसको मचान सिस्टम में ले जाएंगे तो और बेहतर खेती कर सकते हैं।
0: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: जी इस टाइम जो है खासकर जो बरसात की मौसम है और खरीफ का मौसम जिसको हम बोलते हैं जी। इसके लिए जो मुख्य रूप जो खेती की जाती है कद्दू बेल वाली सब्जियां जिसमें हम घिया तोरई करेला खीरा पेठा अन्य और भी हमारे जो खरबूज तरबूज का है उसको भी हम ले सकते हैं। इन सब्जियों को लेने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आपके क्षेत्र के अनुसार से
3: जी,
2: क्योंकि हर क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय कृषि संस्थान या कृषि विज्ञान केंद्र है
3: जी,
2: और वहां से जो भी किसान भाई है अगर खरीफ मौसम में बेल वाली सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि उपयुक्त जगह से जो कि विश्वसनीय संस्था हो, क्योंकि आजकल ये देखने को मिलता है कि एक बार बीज किसान अपने कहीं से भी बाजार से ले लेते हैं और उनका बीज अक्सर खराब निकलता है जो कि पूरी फसल नष्ट हो जाती है
3: जी, जी,
2: तो पहले श्योर करना है कि हमें अच्छी पैदावार लेने के लिए क्योंकि बारिश का मौसम है और इसमें वायरल और कीट पतंगों का ज्यादा प्रकोप होता है, तभी बहुत सारे ऐसे प्रजाति है जो कि वायरस के प्रति अवरोधी है बीमारियों के प्रति अवरोधी है, तो उन प्रजातियों का हमने चयन करना है और उसका अच्छी तरीके से बीज का उपचार करके
3: जी।
2: और जो भी अनुमोदित जैसे हमने बताया करेला में 50 सेंटीमीटर है, वैसे घिया तोरी वगैरह में जो दूरी रखते हैं 75 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक भी हम रखते हैं
3: बिल्कुल,
2: और एक नाली से जो दूसरी नाली की दूरी हम रखते हैं, ये पौधों की बढ़वार क्योंकि बरसात में पौधों की बेल वाली सब्जियों की बढ़वार ज्यादा होती है
3: जी,
2: तो उनके लिए 4 मीटर के नाली से नाली की दूरी कम से कम रखते हैं। साथ ही साथ आपने बेल वाली सब्जियों को ये कोशिश करें कि उसको मचान सिस्टम में बांस और रस्सी के सहारे उसको जमीन से ऊपर उठा के मचान सिस्टम में करते हैं, तो एक तो बहुत फ्रेश रहेगा सब्जी, कोई स्पॉट नहीं होगा और जो जमीन की सतह पे पानी में लगने की संभावना रहती है उसे भी आप बच सकते हैं और अच्छा आपको कीमत भी मिल सकता है।
0: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों एक बार पुनः डालते हैं रुख, हमें कृषि शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
5: कृषि शिक्षा की स्थिति की बात करते हैं तो पहले हम स्कूल शिक्षा से बात करते हैं। स्कूल लेवल पे एग्रीकल्चर एजुकेशन एज सच नहीं है हमारे यहाँ पर, कुछ राज्य हैं राजस्थान है उत्तर प्रदेश है मध्य प्रदेश है वहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल पर कृषि सब्जेक्ट है मतलब कृषि विषय है, लेकिन दूसरे राज्यों में हम बात करें तो कृषि स्कूल लेवल पर कृषि शिक्षा नहीं है। और जैसे कि हम औद्योगिक सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर ITI के सेंटर होते हैं, उस तरह का भी सेंटर हमारे कृषि शिक्षा में नहीं, तो स्कूल लेवल पर कृषि शिक्षा बहुत कम है
3: जी।
5: लेकिन जो हमारे जो डिग्री लेवल एजुकेशन की बात करते हैं तो कृषि शिक्षा का एक उच्च अच्छा स्तर है, मतलब पढ़ाई की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। खासकर हम कृषि विश्वविद्यालय की बात करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, 74 कृषि विश्वविद्यालय हैं राज्य स्तरीय, केंद्र स्तरीय और दूसरे कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो उनकी एक पढ़ाई का स्तर बहुत ही अच्छा है, तो एक अच्छी क्वालिटी का। लेकिन जब आजकल हम बात करते हैं तो कृषि शिक्षा के दूसरे तरीके भी आ रहे हैं, जिसको पारंपरिक कृषि शिक्षा में तो कृषि विश्वविद्यालय आते हैं।

0: लेकिन गैर पारंपरिक जो शिक्षा पद्धति है उसमें ओपन एजुकेशन सिस्टम है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, इस तरह के सिस्टम भी आ रहे हैं और उनके द्वारा भी व्यावसायिक शिक्षा, कृषि की व्यावसायिक शिक्षा के लिए बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं और इन बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं जो सीधा एक किसान को एक या ग्रामीण युवा को कृषि व्यवसाय, कृषि उद्यमी बनने की तरफ प्रेरित करते हैं। खासकर एक नया प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है कृषि व्यवसाय में पीजी डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस। उस प्रोग्राम को करने से क्या होगा कि आप एक साल में आप तैयार हो जाएंगे कि एक कृषि व्यवसाय करने के लिए, कृषि व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जितने भी आपको एक स्किल्स की जानकारी होनी चाहिए, स्किल आनी चाहिए या जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, वो सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। कैसे आप प्रपोजल बनाएंगे, बिजनेस का प्रपोजल बनाएंगे, कैसे बैंक को सबमिट करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज किस किस तरह से होती है, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंधन कैसे करेंगे। तो इस तरह का एक नया प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया है पीजी डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस। लेकिन अगर एक जो कृषि व्यवसाय के जो उद्यम है, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है या बी कीपिंग है, सेरिकल्चर है या ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो इस तरह की जितने भी व्यवसाय हैं जो कृषि आधारित व्यवसाय है, उनमें आप एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स और डिप्लोमा प्रोग्राम्स हमारे पास उपलब्ध हैं। और जैसे डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, एक पीजी एक डिप्लोमा इन प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम सीरियल्स पल्सेज ऑयल शीट्स, खाद्यान्नों से या तिलहनी फसलों से या जो दलहनी फसलों से कैसे मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं, उस तरह के डिप्लोमा हमारे पास है। साथ में एक वाटरशेड से रिलेटेड डिप्लोमा है, तो उसमें वाटरशेड एरिया में कौन कौन से व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, उस तरह के हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमें अभी कृषि शिक्षा की कितनी आवश्यकता है। हमारे देश में काफ़ी अनुसंधान है, काफ़ी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल्स हैं, जिसके माध्यम से हम कृषि शिक्षा को ले सकते हैं। किसान साथियों, इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम जानेंगे, उससे पहले यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से मिली गीत को। किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं इस बरसात के समय में टमाटर के लिए कौन सा बीज सबसे अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं और लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
1: तो आप पूसा की वैरायटी, पूसा रूबी और भी वैरायटी सदाबहार है, हाइब्रिड भी है, हाइब्रिड एक दो है। इसके अलावा अर्का रक्षा करके एक बहुत अच्छी वैरायटी है जो कि IHR बंगलोर की है, आप इसकी भी कर सकते हैं और ये 4 से 5 फीट तक बेल भी जाती है। इसको आप स्टैकिंग करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है क्योंकि अर्का रक्षक में वायरस के प्रति और औद्योगिक प्रजाति है, तो आप अर्का रक्षक लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप नर्सरी जो तैयार करें, नर्सरी का अच्छा, क्योंकि अगर नर्सरी स्वस्थ होगा तो भी आगे खेती में आपकी फसल स्वस्थ होगी। तो आपने नर्सरी को अच्छे तरीके से वायरल फ्री तैयार करना है, फिर उसको ट्रीटेड करके, जब हम सीडलिंग्स को भी ट्रीटेड करके और मुख्य खेत में रोपित करेंगे, जो कि जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि ऊंची उठी हुई मेड़ पे ही इसको लगाएं ताकि बारिश के पानी से इसका ज्यादा क्षति ना हो।
2: बिल्कुल। साथ ही सह फसल क्या ले सकते हैं टमाटर के साथ?
1: अगर टमाटर की फसल है तो आप जगह गैप रखते हैं, तो अगर गैप रखते हैं तो उसमें हम टमाटर के मेड़ों के साइड में, जैसा कि अभी बहुत लोग बहुत किसान भाई कर भी रहे हैं, जिसको करीब 30 से 40 दिन में तैयार हो जाता है, आप धनिया और पालक भी आप मेड़ों के किनारे लगा के अलग से आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
0: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: डॉक्टर राकेश
1: जी, ये बैगन और मिर्च दोनों को आप अगर अलग अलग लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मिर्च में खासकर वायरल का ज़्यादा प्रकोप होता है खरीफ सीजन में, तो आपने अगर दोनों फसलों को अलग अलग लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम फसली की बात करते हैं, फसल लेने की, तो आप अगर स्पेस बढ़ा देते हैं तो आप उसके नीचे, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बोला था कि पालक और धनिया का आप इस उसमें लगा के, क्योंकि वो 30 से 40 दिन में जब हमारा बैगन जब बड़ा साइज हो जाएगा, उसके पहले हम फसल को जड़ सहित निकाल के उससे हम एक एक्स्ट्रा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
2: बिल्कुल। इसके साथ ही जानना चाहेंगे कि सब्जियों की नर्सरी जिन्हें तैयार करनी है उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, साथ ही खेत की तैयारी के दौरान किन बातों का ध्यान रखें।
1: मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो खरीफ का मौसम है, क्योंकि खरीफ के मौसम में और अन्य मौसम की अपेक्षा बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्या आती है। एक तो खरपतवार भी ज्यादा होता है, साथ ही साथ जल भराव की भी समस्या होती है, और उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है इस समय
2: जी।
1: तो इस समय किसान भाइयों को मुख्य मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे तो आसानी से इस समय खेती कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आपने गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करके छोड़ दिया होगा, तो उसमें जो भी आपके हानिकारक खरपतवार और आपके जो कीट के अंडाणु है, ये सारे नष्ट हो जाते हैं, तो ये बहुत फायदेमंद रहता है जो गर्मी की जुताई होती है, जिससे सॉइल सोलराइजेशन द्वारा उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है
2: जी।
1: फिर जहां पे हमें फसल लगानी है, क्योंकि सब्जियों को मुख्यतः जो है दो तरीके से उगाया जाता है, तो अधिकतर जो सब्जियां है वो सीधी बुआई की जाती है। कुछ सब्जियां जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च, अगेती, फूलगोभी, इनकी हम खरीफ प्याज, इनकी हम पौध तैयार करते हैं, उसके पश्चात हम इसको मुख्य खेत में लगाते हैं। तो जैसा कि जो सीधी बोई जाने वाली या पौध से तैयार की जाने वाली सब्जियां हैं, इसको आपने एक तो बहुत अच्छे, जैसा कि मैंने पूर्व में भी चर्चा किया था कि बीज जो है का चुनाव जो है जो आपके क्षेत्र के लिए अनुमोदित है, क्योंकि जो भी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि संस्थाएं हैं वो हर क्षेत्रवार अलग अलग प्रजातियों का अनुमोदन करती है, उसके हिसाब से आप अनुमोदित करें। साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि मृदा का उपचार और बीज का उपचार आप अवश्य करें, उसके पश्चात जो नर्सरी से तैयार की जाने वाली सब्जियां हैं उसमें हमने दो तरीके से, जैसे कि आमतौर पर किसान भाई क्या करते हैं कि समतल खेत क्यारी बना के और उसमें बीजों को डाल देते हैं, जिससे कि बहुत सारे बीज का नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि अभी हम जो अच्छी प्रजाति का चुनाव करते हैं और अच्छी बीज लेते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। पहले पूर्व में क्या होता था, बीज ज्यादा होता था तो ज्यादा भी डलती थी तो कम जमने के बाद भी किसान अपना इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीज करीब करीब आधे की मात्रा में हमारी उपयोग में आ जाती है, इसके लिए किसान भाई को ऊंची उठी हुई बेड, जैसे 1 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा, जमीन से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बेड बनाए और उस बेड पे ही 5-5 सेंटीमीटर की गहरी, 1 सेंटीमीटर गहराई में लाइन बना के और उसमें आप बीजों को छोड़ के और ऊपर खाद और मिट्टी से मिक्स करके उसको ढक दें।
0: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ये जो हम नर्सरी की बात कर रहे थे तो आपने ऊंची उठी हुई बेड, क्योंकि बरसात का मौसम है हम प्लेन में नहीं करेंगे, क्योंकि पहले उसमें क्या होता है कि पानी खड़ी हो जाने से हमारा बीज सड़ जाता है या छोटी पौध नुकसान हो जाती है, तो हमेशा आप ऊंची उठी हुई बेडों पे ही नर्सरी तैयार करें। इसके अलावा किसान भाई आजकल जैसे कि सर भी बता रहे थे कि प्रशिक्षण हर जगह पे हर कृषि विज्ञान केंद्र में होता है, तो आप कोशिश करें कि जैसे हम टमाटर की बात करते हैं कि 150 से 200 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम प्रो ट्रे के माध्यम से करते हैं तो उसमें हमारा 60-80 ग्राम में ही काम चल जाता है।
2: अच्छा।
1: तो एक बहुत अच्छी तकनीकी है और इसको आप इजी वे में उसको कहीं भी रख सकते हैं, आप छतों के ऊपर भी लगा सकते हैं, और अगर इंसेक्ट प्रूफ नेट, अगर लो कॉस्ट इंसेक्ट प्रूफ नेट लगा लेते हैं तो इसमें वायरल फ्री आप नर्सरी आसानी से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता, सॉइललेस मीडिया का इस्तेमाल होता है।
0: किसान साथियों, आइए अब एक्सपर्ट से बात करेंगे कि अगर हम एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, क्या वहां पर कुछ सर्टिफिकेट कोर्स हैं, क्या हम घर से ही ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इस कोर्स को हम कर सकते हैं, या हमारे लिए अगर हर रोज आना और वहां रहकर जहां यूनिवर्सिटी और कॉलेज में रहकर पढ़ाई करना उतना संभव नहीं है, तो इसके लिए क्या समाधान हो सकता है, आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
4: देखो, जो जो कृषि क्षेत्र के जो लोग काम करते हैं तो वो एक उनको मुख्य समस्या है कि उनके पास इतना समय नहीं कि एक किसी संस्था में जाके वहाँ के जगह क्लासेज अटेंड कर सकते हैं या एग्जाम दे सकते हैं, तो हमें ऐसी कृषि शिक्षा पद्धति की जरूरत है जो उनको घर बैठे जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ पर ही उनको शिक्षा दी जाए। इसी के लिए जो दूरस्थ शिक्षा का एक माध्यम काफी प्रचलित है, वो उसी तरह ऑनलाइन एजुकेशन भी हमारे कृषि क्षेत्र में धीरे धीरे आ रही है, तो इस तरह के जो सिस्टम है उनको अपना कर, और खासकर इन सिस्टम की बात करते हैं तो व्यवसाय शिक्षाएं वो पाठ्यक्रम अवेलेबल है काफी खासकर हम देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस तरह के सेरिकल्चर, तो इस तरह के पाठ्यक्रम काफी अवेलेबल डेयरी के सेक्टर में काफी अवेलेबल है, वैल्यू एडिशन से रिलेटेड पाठ्यक्रम अवेलेबल है, तो इस तरह के काफी पाठ्यक्रम। इन पाठ्यक्रम की खास बात ये है कि आपको जो थ्योरी एजुकेशन है आपको घर बैठे आपको मिलती है, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, सिंपल सरल भाषा में स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, और साथ में आपको कोई पढ़ते समय कुछ आपको कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है तो उसके लिए एक स्टडी सेंटर आपको मिलता है, वहां जाकर वो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे तो उन विषय की वहां जाकर चर्चा कर सकते हैं, जो वहां पर टीचर्स होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं। जो प्रैक्टिकल कुछ ऐसे जो कृषि शिक्षा की बात करते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल कंपोनेंट होते हैं जिसमें आपको दक्षता दी जाती है, उसको टेक्निकल कंसेप्ट समझा जाता है, तो उसके लिए स्टडी सेंटर में जाकर आप वो प्रैक्टिकल सवाल अटेंड कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इसी तरह जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो भी काफी उसमें भी काफी धीरे धीरे कृषि के सेक्टर में आ रही है, और खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय, उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म जो दिया है स्वयं प्लेटफॉर्म है www.swayam.gov.in, उसमें बहुत सारे पाठ्यक्रम कृषि के सेक्टर में भी अवेलेबल है, तो उसमें मुख्य जो कई सारे पाठ्यक्रम इग्नू की तरफ से भी अवेलेबल है, जैसे कि भारतीय कृषि विकास, इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स है इसमें, फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स की बात है, तो इस तरह के 8-10 प्रोजेक्ट एनालिसिस कोऑपरेटिव पे उसमें एक पाठ्यक्रम, इस तरह के बहुत सारे पाठ्यक्रम,
2: कई तरह के पाठ्यक्रम हैं जो दूरस्थ शिक्षा के जरिए भी किसान जो है जिनसे जुड़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते।
0: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: चेरी टोमेटो के लिए जैसा कि हमने टमाटर के बारे में चर्चा किया था कि चेरी टोमेटो की वैरायटी है, पूसा की वैरायटी है, आप पूसा चेरी के टोमेटो के नाम से आपको मिल सकता है, साथ ही साथ कुछ निजी कंपनियों के भी है।

0: वहाँ से आपके पास से जो भी आपके क्षेत्र में निजी कंपनियां हैं वहां से आप संपर्क कर सकते हैं, या वहां पे जो संस्था है वहां से आप चेरी टोमेटो का सीड लेके और आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
1: जी बिल्कुल। तो सुशांत जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और डॉक्टर राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि चेरी टमाटो और इसी की तरह कई तरह की जो एग्जॉटिक सब्जियां हैं वो आजकल किसान उगाना चाहते हैं क्योंकि बाजार में उनको और बेहतर भाव मिल जाते हैं। इसके अलावा जो बेमौसम सब्जियां हैं उसमें भी काफी फायदा होता है किसानों को। ऐसे में अगर संरक्षित खेती के जरिए बेमौसम सब्जियां लेना चाहते हैं तो आप क्या उन्हें सुझाव देना चाहेंगे इस वक्त के लिए?
0: मैं किसान भाई को बताना चाहूंगा कि जो आमतौर पर सब्जियां लोग बेल वाली सब्जियां हैं, टमाटर है, बैगन है, मिर्च, ये तो बहुत पुराने पद्धति के सही चली आ रही है
1: जी।
0: लेकिन अभी कुछ जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कृषि में रोजगार की बात हम करते हैं, क्योंकि अब किसी को हम परंपरागत तरीके के बजाय उसको हम एक रोजगार का माध्यम माने तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसके लिए किसान भाई को कुछ नई चीज या नई किस्मों का या नई पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फायदा हो सकता है। तो इस समय जो है, जो जैसे हम बात करते हैं कि खासकर प्याज का जो खेती होता है मुख्य रूप से हमारा जो लगभग पूरे इंडिया में रबी सीजन होता है, और महाराष्ट्र और जो हम इधर का एरिया है, वेस्टर्न का एरिया है भारत का, इसमें खरीफ का प्याज होता है, जिससे कि आप देखते हैं कि प्याज की आपूर्ति नहीं हो पाती। तो अगर ये चीजें इस क्षेत्रों में भी प्याज की, जैसे बरसात की मौसम की प्याज हम दो माध्यम से करते हैं, एक तो हम नर्सरी तैयार करते हैं, साथ ही साथ हम गंठी बना के भी, गंठी की भी सीधी रोपाई कर लेते हैं अगस्त के महीने में
1: जी।
0: तो अगर इस समय प्याज किसान भाई लगाते हैं तो ये दिसंबर के आसपास खुदाई हो जाती है, क्योंकि उस समय बाजार का भाव बहुत ज्यादा होता है। तो एक तरह से किसान ऑफ सीजन में ये प्याज लगा के अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकती है। आमतौर पर किसान जो गाजर की खेती करते हैं वो अक्टूबर में नवम्बर में जाके करते हैं। पूसा की एक वैरायटी है, पूसा वृष्टि, अगर उसको किसान भाई जुलाई अगस्त में लगाते हैं तो अगेती जब किसान भाई लगाना सोचेंगे उस टाइम खुदाई हो जाती है। तो उस टाइम इस वैरायटी को लगाते हैं तो ऑफ सीजन में उनको अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही मूली का है, मूली जो कि आमतौर पर यह समझा जाता है कि रबी की फसल है, मूली, पालक, धनिया, तो इनको भी आप कुछ संरचना है, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है तो आप शेडनेट हाउस में 50% का अगर सफेद शेडनेट लगाते हैं आप, तो उसके नीचे में आप देखेंगे कि इस समय धनिया की कीमत करीब 200 से 250 रुपए किलो के आसपास बाजार में बिक रही है। तो अगर आप शेडनेट के नीचे करते हैं तो तापमान जो बाहर का होता है उससे आप 8 से 10 डिग्री जो सेंटीग्रेड है नीचे रहता है उसके अंदर।
1: क्या वजह हो सकती है इसकी डॉक्टर राकेश, और क्या किया जा सकता है?
0: अरबी की फसल में जो पीलापन आ रही है इसका वजह अभी क्या हो सकता है कि आपने, क्योंकि अभी तापमान बहुत ज्यादा था और इसमें हम गर्मी के मौसम में पानी लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ जमीन का सरफेस होता है वहाँ पे फंगल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो उस अवस्था में आप कुछ फफूंदीनाशी है जैसे कार्बेंडाजिम का आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, और उसमें आप ध्यान दें, अगर आपके आसपास में कोई संस्थान है आप वहां से संपर्क कर लीजिए और वहां से विशेषज्ञ को दिखाइए। ये पीलापन होने का एक वजह न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी भी हो सकती है
1: जी।
0: लेकिन आमतौर पर अभी क्या है कि गर्मी ज्यादा थी, तापमान ज्यादा थी और उसमें आप सिंचाई कर रहे होंगे, तो उस अवस्था में भी फफूंदी जनित बीमारियों की वजह से भी पीलापन होता है। तो आप फफूंदी नाशी का स्प्रे कर लीजिए, अगर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है तो आप उसको आप जांच करा के और उसको न्यूट्रिएंट की जो है उसकी पूर्ति करें।
2: किसान साथियों, आइए जानते हैं और लेते हैं एक्सपर्ट की राय। हमारा जो पौधा है सब्जियों का, उसमें कभी कभी सब्जियां नहीं आती है, क्या कारण हो सकता है कि हमारी सब्जियों का जो पौधा है वह काफी तंदुरुस्त होता है? हम समय समय पर पानी डालते हैं, उपयुक्त खाद डालते हैं प्रचुर मात्रा में, उसमें सारा पोषण आहार उसमें देते हैं, लेकिन क्या कारण हो सकता है कि उसमें हमारी सब्जियां नहीं आती है? तो आइए जानते हैं और लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
0: क्या हुआ, पीछे कुछ दिनों से क्योंकि टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहा, तो उसमें आपने देखा होगा भिंडी नहीं, हमारे जितने भी बेल वाली सब्जियां भी है, जो गर्मी के सीजन में लगाई गई थी उनमें भी फैलाना बंद हो गए थे, तो एक हमारा पोलिनेशन की क्रिया जो है उस समय डिस्टर्ब हुआ है। और आप एक तो लगातार नमी बनाए रखिए, क्योंकि गर्मी के सीजन में जो जितनी भी सब्जियां हैं उसमें मॉइस्चर को आप कंटिन्यू बनाए रखिए। साथ ही साथ हो सकता है कि आपके उस आसपास में न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से भी कुछ रुक रहे हो, तो आप उसमें एनपीके 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से और मल्टीप्लेक्स जिसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से एक बार आप स्प्रे करें और सिंचाई बराबर करते रहें, तो निश्चित तौर पर एक बार पुनः भिंडी का स्टार्ट हो सकता है।
2: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: किसान साथियों एक बार और चलिए जानते हैं, अगर कोई किसान दूरस्थ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो इसमें कैसे वह एडमिशन ले सकता है, कैसे इस शिक्षा को ले सकता है और कैसे ये उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
4: एडमिशन जो प्रक्रिया है, प्रवेश लेने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। आजकल ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया होती है, इग्नू की वेबसाइट में जाके या ignoo.smarth.edu.in करके एडमिशन का प्लेटफॉर्म है, उसमें जाकर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है, नाम एड्रेस फादर्स नेम और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स जो 10वीं पास का सर्टिफिकेट या 12th पास का सर्टिफिकेट या जैसे भी क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करना होता है और साथ उसमें फीस भी आपको उसमें पे कर सकते हैं। सिंपल एक प्रक्रिया है, तो ऑनलाइन आपको एडमिशन फॉर्म भरना होता है, जैसे आप फॉर्म उसमें सबमिट करते हैं कुछ दिनों बाद आपका कंफर्मेशन आपके मोबाइल पे SMS के थ्रू आ जाता है या फिर आपको एक आइडेंटिटी कार्ड आपके एड्रेस पे आ जाता है।
1: जी बिल्कुल, और इसकी फीस कैसी होती है ये भी जानना चाहेंगे।
4: इसकी जो क्योंकि ये हमारा एक पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो हमने फीस इसकी बहुत ही कम रखी है। जैसे 6 महीने का प्रोग्राम है, अगर आप कर रहे हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं तो 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये के बीच में आपकी फीस है। और ज़्यादा के प्रोग्राम्स में हम देखते हैं कि हम लोगों ने जो STSC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस भी माफ़ कर रखी है, तो उसमें फीस का भी आपको एग्जम्पशन है।
2: किसान साथियों जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी सुविधाएं दी जा रही है, अच्छी योजनाएं हमें मिल रही है ताकि हम घर बैठे इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। और अगर STSC का विद्यार्थी है तो उसे स्पेशल प्रावधान भी दिया जा रहा है, इसीलिए हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और हमें अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहिए। किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: देखिए कृषि शिक्षा के क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में जो मुख्य चुनौती है हमारे जो युवा है उनको कृषि क्षेत्र में बनाए रखना, कैसे हमारे किस तरह से हम युवाओं को कृषि क्षेत्र में बनाए रखते हैं, इसके लिए हमें जरूरत है एग्रीकल्चर और कृषि क्षेत्र को एक इनोवेटिव एग्रीकल्चर सेक्टर बनाए। इनोवेटिव सेक्टर बना से क्या होगा कि आर्थिक रूप से यह क्षेत्र एक आकर्षित क्षेत्र बनेगा, ताकि जो युवा है जो कृषि क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनका एक सोशल स्टेटस, एक उनको परिवार को एक अच्छी तरह से यू नो जीवन यापन एक अच्छी शिक्षा, परिवार को अच्छी शिक्षा, एक सुविधा युक्त एक जीवन जीने का एक साधन मिल सके, इसके लिए हमने कृषि क्षेत्र को एक ल्यूक्रेटिव क्षेत्र या आर्थिक रूप से आकर्षित क्षेत्र बनाना होगा। इस आर्थिक रूप से आकर्षित क्षेत्र बनाने के लिए हमें कृषि क्षेत्र में खेती के साथ साथ उद्यमी भी विकास करने पड़ेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसमें थोड़ा सा हमें थोड़ा एडिशनल स्किल्स डेवलप करके जानकारी प्राप्त करके छोटी छोटी व्यवसाय, कृषि आधारित व्यवसाय हम प्रारंभ कर सकते हैं, और उसके लिए प्रशिक्षण और शिक्षा काफी अवेलेबल है। कई तरह से एक्सटेंशन सिस्टम भी हमारे पास है, कृषि विज्ञान केंद्र भी हमारे पास है, कृषि विश्वविद्यालय हमारे पास है, और कृषि शिक्षा के नए तरीके जिसमें दूर शिक्षा या ऑनलाइन एजुकेशन, ये सारे साधन हमारे पास है। इनकी तरह से हम जिस भी सेक्टर में आपका इंटरेस्ट हो उस सेक्टर की प्रशिक्षण प्राप्त करके या उसकी शिक्षा प्राप्त करके पूरी प्लानिंग करके व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो अपनी बातें।
2: किसान साथियों, यहाँ पर हम लेते हैं हमारे किसान का सवाल। उन्होंने हमें सवाल किया था कि उनके खेत में उनके बैंगन की जो फसल है उसमें कीड़े पड़ रहे हैं। चलिए लेते हैं एक्सपर्ट की राय और जानते हैं कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं।
0: दलवीर जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो बैंगन की फसल हम जब लगाए थे तो उस समय आपने शुरू से ही ध्यान देना होगा, क्योंकि आमतौर पर किसान भाई क्या करते हैं कि जब पूरी तरह से कीट प्रकोप आ जाता है तो उस समय फिर दवा का इस्तेमाल करते हैं, और खासकर बैगन में दवा कोई भी इस्तेमाल करते हैं उसका असर नहीं होता। तो ये जरूरी हो जाता है कि जैसे आपने फिजिकली मॉनिटरिंग करें, खेत पे आप घूमते समय ये देखें कहीं उसमें दो तरीके का आता है, एक तो सूट बोरर आता है, एक फ्रूट बोरर। तो आप देखेंगे बैगन के जो टॉप होगा उसमें तना मुरझाया हुआ सा होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जितने भी खेत में ऐसे तना मुरझाया हुआ हो तो आप एक प्लास्टिक वो थैली ले लीजिए और कैंची के सहारे जहां से भी आपको सुराग दिखाई दे रहा है उससे एक इंच नीचे की कटाई कर लीजिए और उसको थैली में रखते जाइए। आप वैसे ही पूरे खेत में आप घूम के देख लीजिए कि बैगन में अगर कोई शुरुआती अवस्था में कीट लग रहा है तो इसकी छटाई कर लीजिए, और इसके लिए आपने जो स्प्रे करना है इसका आप स्पाइनोसेट का 1 ml 3 लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे तो आपका जो है ये फ्रूट बोरर जो बोलते फल छेदक कीड़ा है वो रुक जाएगा और आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और आपका उत्पादन भी अच्छा होगा।
2: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से विराम का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम में रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ।

0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में।
1: किसान भाई को, जैसे कि हम बरसात की गर्मी की जुताई की बात कर रहे थे कि हमने बरसात के मौसम शुरू होने से पहले गर्मी की जुताई की जाती है, किसान भाई को मैं ये भी सलाह देना चाहूंगा कि आप उसी टाइम जब खाली खेत हो और जुताई कर लिए हो तो आप अपने जमीन की सॉइल टेस्ट जरूर करा लीजिए, क्योंकि आजकल सरकार द्वारा भी सॉइल हेल्थ कार्ड का सब जिलों में सब कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बनाए जा रहे हैं
0: जी।
1: तो उससे ये पता चल जाता है कि कौन से न्यूट्रिएंट की कितनी कमी है, उसके हिसाब से हम उसका निर्धारण करते हैं। और इसके लिए जैसे हम अनाज वाली फसल है, इसके लिए जैसे 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद डालते हैं, लेकिन सब्जियों में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है तो हम 20 से 25 टन का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो हम सड़ी हुई गोबर खाद इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जो हमें अंतिम जुताई के समय खाद दी जानी होती है, फास्फोरस, पोटास और जिंक और भी

0: हमारे जो तत्व है उसको बुआई के समय दे दीजिए, और जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसको हम स्प्लिट डोज में थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में हम अपने फसलों को देते हैं, जिससे कि फसलें अच्छे तरीके से चलती है और अच्छा उत्पादन देती है।
1: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आरजे अविनाश के साथ।

0: संगीत की इस महकती हुई शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर, और चलिए मिलते हैं एक और उभरते हुए कलाकार से, एक नए टैलेंट से। कौन है ये, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं और इनके गीतों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम को। आइए दोस्तों, इस बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म जो कि नए टैलेंट्स के लिए मौजूद है, नए संगीतकारों के लिए, नए गायकों के लिए, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के कलाकार प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ जो टैलेंट, जो गायिका है, वो है अर्चना मोरे जी। बाकी जाहिर सी बात है, अर्चना जी अपने बारे में खुद बताएंगी, हम उनकी पर्सनैलिटी को समझेंगे, उनके गीत सुनेंगे, उनके साथ बातें करेंगे। शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। तो अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द होल टीम ऑफ 90.8 एफएम, और उमेश जी को भी शुक्रिया कहना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए रिकमेंड किया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो श्रोतागण अपना कीमती समय देके इस प्रोग्राम को सुन रहे, तो उनका भी दिल से शुक्रिया। मेरा नाम है अर्चना मोरे, जैसे कि आपने बताया। ओके, सो मैं अंधेरी वेस्ट में रहती हूँ। घर में मेरी दो बेटियां हैं, हस्बैंड है मेरे
0: जी।
1: और मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ है
0: जी।
1: और साथ साथ उसके बाद में मतलब पढ़ाई का शौक था, तो मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर भी कर लिया। हम जुड़वा बहने हैं और दो मेरे भाई हैं, एंड परवरिश मेरी मेरी बुआ और मेरे मामा जी के यहाँ पर हुई थी।
0: वेरी नाइस।
1: और अगर गाने की, अगर हम लोग मेरा जो गाने का जो सिंगिंग करियर जो है उसके हिसाब से अगर बात करें, तो स्टार मेकर पर मैं जुड़ी हुई हूँ पिछले 6-7 सालों से। वहाँ पर मेरी जो ब्लिस फैमिली है, वहाँ पे मैं एज अ मेन वोकलिस्ट वहाँ पर हूँ। कुछ सिंगिंग प्रोग्राम्स के लिए मैंने मतलब एज अ जज भी मैंने वहाँ पर काम किया है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर YMCA यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन जो है, उनके साथ में, उस एनजीओ के साथ में मैं जुड़ी हुई हूँ। वहाँ पे हमारा बॉयज होम है, बच्चे जो है ऑर्फन या फिर सिंगल पेरेंट वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के साथ में हम वहाँ पर काम करते हैं। सो ये मेरा एक शॉर्ट सा परिचय है, छोटा सा।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अर्चना जी। तो दोस्तों, आपने सुना अर्चना जी का परिचय, चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत भी अर्चना जी की ही आवाज में।

0: बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा गीत। चलिए अर्चना जी, बचपन में चलते हैं। आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: बचपन से ही अगर सोचा जाए, मैं सोचती हूँ तो हाँ जी, मैं बचपन से ही मैं इंजीनियर ही बनना चाहती थी, जो कि बन गई।
0: वेरी नाइस।
1: एक्चुअली 1987 में, मतलब जब मैं सेवेंथ में थी, तब हमारे स्कूल में एक ऐसे प्रोग्राम स्कूल की ओर से कंडक्ट किया गया था, जहाँ पे वो लोग एक मतलब कंप्यूटर्स वो सब लेके आए थे। तो उस वक्त वो जो CRT डिस्प्लेस बड़े बड़े हुआ करते थे, वहाँ पे डॉस सिस्टम, मतलब विंडोज भी तब मेरे ख्याल से नहीं आया था। तो उस डॉस वर्जन पे हमें कुछ क्विक बेसिक की प्रोग्रामिंग वो सब उन लोगों ने कुछ इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो तभी से एक क्रेज था कि हाँ, मतलब कुछ नया है, कुछ अलग है, तो ये मुझे करना है। सो ये एक रीजन था मेरा इंजीनियरिंग करने के पीछे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि उस वक्त क्रिकेट भी काफी, मतलब लोग शौक रखते थे क्रिकेट देखने का, तो उस वक्त अनिल कुंबले जो थे वो मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर हुआ करते थे। और बाद में पता चला कि भाई वो भी एक इंजीनियर है, तो ये क्रेज कुछ और थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया।
0: ओके okay.
1: और हाँ जी, तो उस हिसाब से फिर आगे चल के वही, मतलब मैंने उस पैशन को अचीव किया।
0: ऑलराइट, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दोस्तों आपने सुना कि अर्चना जी बचपन में क्या बनना चाहते थे, तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अर्चना जी का ही गाया हुआ।

0: बहुत बढ़िया। अर्चना जी, अभी हम बचपन में ही हैं और बचपन से लेकर आज तक की जिंदगी में आपका फेवरेट टीचर कौन था, कौन थे और क्यों?
1: फेवरेट टीचर्स तो किसी, मतलब मैं किसी एक का तो नाम ऐसे नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स का, हम बोलते हैं ना, योगदान होता है, उनका कंट्रीब्यूशन होता है हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, या हमारे फ्यूचर के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो किसी विषय, स्पेसिफिक विषय में अगर हम लोग अगर रुचि डेवलप करते हैं, अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, तो श्योरली वो सारा क्रेडिट जो है वो मेरे हिसाब से हमारे टीचर्स को ही जाता है। तो इस हिसाब से स्कूल में हमारे मुड़े सर थे, फिर जो मतलब मैथ्स पढ़ाते थे, सो मैथ्स में मैं काफ़ी रुचि रखती हूँ, और इंग्लिश में, इंग्लिश की जो हमारी टीचर्स टीचर थी जाधव मैडम, और कॉलेज में भी शिंदे सर थे जो बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। और तो ये वो लोग हैं ना कि उन्होंने अपना फ्यूचर नहीं, हमारे फ्यूचर के लिए काम किया। जैसे कि एक थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में आजकल हम लोग देखते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन में काफी लोग काफी प्रोफेशनल्स ही हो गए हैं टीचर्स, तो ये वो दौर था। हाँ, ये वो दौर था टीचर्स का कि काफी डेडिकेटेड टीचर्स हम लोगों को नसीब हुए, और शायद उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू माई टीचर्स, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं उन लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी।
0: बहुत बहुत खूब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके ये शिक्षक लोग, आपके ये टीचर्स भी आपके इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। मैं अगला गीत आपके सारे टीचर्स को ही डेडिकेट करना चाहूंगा। आइए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत अर्चना जी की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया। अर्चना जी, आप एक सिंगर हैं, एक गायिका हैं, तो किसी न किसी गायक से आप जरूर इन्फ्लुएंस्ड होंगी, प्रभावित होंगी, तो आपके सबसे पसंदीदा गायक कौन हैं और क्यों?
1: पसंदीदा गायक भी बहुत सारे हैं, बट उनमें से मतलब कुछ चुनिंदा से कुछ लोग हैं कि वो काफी मतलब दिल के करीब है मेरे। फिर भी जैसे लता जी है, किशोर साहब है, रफी साहब है, आशा जी है, इनका तो कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा है। तो इनके इनको हम लोग साइड ट्रैक करके तो हम लोग बॉलीवुड का म्यूजिक जो इसको हम लोग इमेजिन ही कर पाएंगे। ये एक सही मतलब ये तो मतलब एक सही बात है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यशुदास जी जो है वो मुझे उनकी आवाज मुझे बड़ी पसंद है। मतलब उनकी आवाज का एक ऐसे अलग ही टेक्सचर है, मतलब एक रिदम वाली आवाज है। और अपार्ट फ्रॉम दैट साधना सरगम जी भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उनकी भी आवाज ना काफी एक बैलेंस्ड उनका वॉइस है, मतलब बोलते हैं ना कि एकदम रफ भी है और ओवर स्वीटनेस भी नहीं है उसमें, एकदम बैलेंस्ड काइंड ऑफ उनकी वॉइस है। और मन्नाडे, ये तीनों जो गायक है मतलब मुझे उनकी सिंगिंग बड़ी पसंद है।
0: क्या कहा आपने, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। मन्ना डे मेरे भी फेवरेट फेवरेट सिंगर हैं। मैं उनको हमेशा सबसे ऊपर रखूंगा। उनकी गायकी, उनकी आवाज में जो लरस थी, जो पकड़ थी, जो ठहराव था, वो अमेजिंगली किसी और गायक की आवाज में मुझे मिला ही नहीं। मुझे याद है एक कोई किस्सा मैंने कहीं पढ़ा था कि जब पड़ोसन फिल्म बन रही थी और उसमें एक गीत जिसमें किशोर कुमार और मन्ना डे को गाना गाना था, तो उस गाने में मन्ना डे जी ने एक चतुर्नार करेक्ट तो मन्ना डे ने वो गाना गाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर है फिल्माया गया वो हार जाता है और जो जीतते हैं वो किशोर कुमार थे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं ये गीत नहीं गाऊंगा। तो किशोर कुमार ने उनके पैर पकड़ लिए कि दादा मेरे लिए प्लीज आप ये गाना गा दीजिए। बड़ी मुश्किलों से मन्ना डे तैयार हुए थे, क्योंकि मन्ना डे प्योर क्लासिकल म्यूजिक में बिलीव करते थे। किसी भी गीत के साथ उन्होंने कभी कोई नाइंसाफी की ही नहीं। तो इस वजह से मन्ना डे मेरे भी फेवरेट फेवरेट सिंगर हैं। बहुत खूब। चलिए दोस्तों, सुने अर्चना जी की ही आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गीत, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अर्चना जी, एक आराम से कंफर्टेबल फन क्वेश्चन। अपनी जिंदगी में सबसे पहली खाने की चीज आपने क्या बनाई थी, आपको याद है, और वो कैसी बनी थी?
1: खाने की चीज, वैसे अगर मेरा खाने का बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो आई यूज्ड टू बी अ बुकवर्म, काफी पढ़ाकू लड़की थी घर में।
0: okay.
1: और मेरे हाँ जी, तो मेरी फूफा जी और मेरे फूफा जी और मेरी मतलब आत्या मामा मैं उनको कहती हूँ, तो उनके घर पे बड़े लाड़ प्यार से मैं बड़ी हुई हूँ। तो किचन के साथ में कांटेक्ट उतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन मेरी कुकिंग का सारा क्रेडिट जो है वो मैं मेरे मामा जी को ही देना चाहूंगी। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले मैंने कांदा पोहे बनाए थे।
0: ओके।
1: और सारे हाँ जी सारे इंस्ट्रक्शंस मेरे मामा जी ने मुझे दिए थे कि बेटा ऐसा कर, बेटा वैसा कर, और बना लिए थे मैंने। मुझे तो उसका टेस्ट तो याद नहीं, लेकिन हम कहते हैं ना कि अपना बच्चा जब पहली कोई चीज पहली बार एक्सपीरियंस करता है तो उसका वो कुछ अलग ही ठाट होता है। नहीं तो शायद वो अच्छे ही बने होंगे, क्योंकि मेरे मामा जी की आंखों से वो जो खुशी छलक थी मतलब मैंने देखी, तो भाई आज जब मेरी बच्ची मेरी लड़कियां जब ऐसे कुछ खुद से बनाकर मुझे परोसती है तो मैं रिलेट कर सकती हूँ कि वो क्या क्या बोलते वो क्या खुशी होती होगी, मतलब उन्होंने क्या किस खुशी को उन्होंने उस वक्त महसूस किया होगा। तो हाँ जी, कांदा पोहे ही मैंने बनाए थे और आज भी मेरे हिसाब से मेरे हाथ के कांदा पोहे सबको पसंद आते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया बात अर्चना जी। दोस्तों आपने सुना, तो चलिए एक गीत भी सुनते हैं अर्चना जी का गाया हुआ।

0: बहुत बढ़िया। अर्चना जी, जैसे अभी अभी आपने जिक्र किया कि आप एक बुक वॉर्म थी, आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, तो टेक्निकल बुक्स के अलावा, इंजीनियरिंग की बुक्स के अलावा, मैथमेटिक्स की बुक्स के अलावा, आप अपनी एक फेवरेट बुक का नाम लीजिए ना। कौन सी फेवरेट बुक है आपकी और उसके ऑथर कौन है?
1: मेमोयर ऑफ गीशा एक जो बुक बनी है, वो मेरी काफी, मतलब मैंने दो बार मैं पढ़ चुकी हूँ, उसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी। सो अभी मुझे ऑथर ऑन द स्पॉट में याद नहीं कर पाऊंगी, बट ये एक जापानीज नॉवल था, बहुत ही खूबसूरत। तो मतलब मैं रिकमेंड भी करना चाहूंगी कि अगर किसी को चांस मिले तो जरूर पढ़े उसको।
0: आप उसका नाम फिर से लेंगे हमारे लिए?
1: द मेमोयर ऑफ गीशा।
0: द मेमोयर ऑफ दीशा, डी
1: गीशा,
0: गीशा, जी एच आई।
1: हाँ हाँ, गीशा मतलब ये वहाँ की वो एक वहाँ का पे कल्चर है ना, वो लोग वो किमोनो पहन के वो चेहरा जो है वो सफेद भी वो चेहरे पे लगाते हैं, और उनका एक एक ट्रेडिशनल डांस होता है वो फैन लेकर।
0: Okay.
1: तो वो एक, हाँ जी, तो उनके लाइफ के ऊपर, वो गीशा के लाइफ के ऊपर वो बेस्ड वो नॉवल थी, बहुत सुंदर नॉवल थी। एक्चुअली मैंने मूवी पहले देखी थी और बाद में उस नॉवल को पढ़ा था।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अर्चना जी की ही आवाज में।

0: आगे बढ़ते हैं अर्चना जी, एक दूसरा फन क्वेश्चन। अगर आपको 24 घंटों के लिए इनविजिबल कर दिया जाए, सिर्फ 24 घंटों के लिए, तो क्या करना चाहेंगी आप उन 24 घंटों में?
1: 24 घंटों में अगर मैं इनविजिबल हो जाती हूँ तो मैं टाइम ट्रैवल करना पसंद करूंगी, मेरे बचपन में जाना चाहूंगी।
0: Alright.
1: बहुत सारी चीजें, हाँ जी, बहुत सारी चीजें जो हल्की फुल्की सी उस वक्त, मतलब कभी लगा भी नहीं था कि ये जो लाइफ में जी रही हूँ आगे चल के ये मेरे लाइफ टाइम मेमोरीज बन जाएंगे, तो वो जो लाइफ टाइम मेरे जो छोटे छोटे मेमोरीज जो चंक्स है मेरे बचपन के, तो मैं उनको मैं विटनेस करना चाहूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं मेरे आते मामा के यहाँ पे पली बड़ी हुई थी, तो मेरे मम्मी पापा, मेरे दादी का घर, नाना नानी का घर, तो ये सारी जो यादें उनसे जो जुड़ी हुई है, मेरी बुआ लोग जो सारी छोटी छोटी थी, और हम लोग हमारे घर में मैं और मेरी बहन, हम लोग मतलब पहली बच्ची आए, मतलब जनरेशन हमसे स्टार्ट होता है, नेक्स्ट जनरेशन मेरी मम्मी के मायके की तरफ से भी और मेरे पिताजी की तरफ से भी, तो काफी लाड़ प्यार था। तो मेरे ख्याल से मेरे सिंगिंग का जो मेरी जो हॉबी है या गाने सुनने की जो मेरी जो एक जैसे कि एक लत लग गई थी अच्छे अच्छे गाने सुनने की, तो शायद उसका जो ओरिजिन है वो कहीं पे वहाँ पे बसता है। मतलब मेरे दादी का जो आंगन हुआ करता था, वहाँ पे एक लोहे की एक ऐसी पलंग हुआ करती थी जहाँ पे हम दोनों बहनें ऐसे सोकर आसमान को, खुले आसमान को देखा करती थी, वहां पे वो उड़ते हुए पंछी, और दूर से सरगम मूवी के गाने, और मुझे अभी भी याद है, और निकाह के गाने, दूर से उसकी आवाज ऐसे आती थी, मतलब तो हम काफी ऐसे ध्यान से सुनते थे, क्योंकि ऐसे बीच बीच में वो कुछ वर्ड्स उसमें से गायब हो जाते थे क्योंकि बहुत दूर से वो आवाजें आती थी, तो ये काफी मतलब बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हुआ करता था वो। तो उन चीजों को हम बोलते ना कि फिर से ऐसे जीने का मन करता है। छह छह महीनों में जब मैं जाती थी तो फिर मेरे मम्मी पापा जब मुझको देखते थे तो उनकी आंखों में एक अलग सी खुशी हुआ करती थी। जो छोटे दो भाई हुआ करते थे, वो मतलब मेरे दोनों भाई छह छह महीने के बाद में अचानक से, मतलब उस बीच के स्लॉट में मैं उन्हें अचानक से बड़ा ऐसे बड़े होते हुए मैं उनको कभी देख नहीं पाई, तो ये सारी चीजें मेरी कुछ छूट गई है। तो बचपन तो काफी सुंदर था, तो ये सब चीजें हैं, और छोटे बच्चों की खुशियां बहुत छोटी छोटी चीजों में समाई हुई रहती है। जैसे कि मुझे अभी भी याद है कि वो निरमा वॉशिंग पाउडर का वो पानी का झाग, उसके कपड़े हम लोग डुबोते थे, वो झाग के साथ में खेलना, तो काफी छोटी छोटी चीजें थी। मेरे चाचा की साइकिल की कैरी पे बैठ के हम लोग बाजार जाते थे, मतलब पता नहीं, मतलब ये अगर फिर से अगर जीने को ये सब मिले, मतलब ये जो पल है, तो मुझे लगता है। और एक और चीज, मतलब ये सब बचपन जो है, मतलब जो मेरी, हम बोलते हैं ना कि एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर लम्हे में आके ये चीजें छूट जाती है हमसे, तो एक वो भी पल की जब मेरी पहली बेटी का जन्म हुआ, तब मैंने देखा था, मैं तो बेहोश थी, फिर जब मैंने मतलब होश में आने के बाद मैंने देखा था कि मेरे हस्बैंड उसको अपनी गोद में लेके बैठे हैं, उसको देख रहे हैं, तो दैट वॉज द मोमेंट की जब फील हुआ कि अरे अभी अपना बचपन छूट गया, अभी हम लोग बड़े हो गए, तो ये सारे वो जो पल है ना, इनको मैं वापस विटनेस करना चाहूंगी।
0: बहुत बहुत खूबसूरत।

0: आगे बढ़ते हैं अर्चना जी, आपकी जीवन में आज तक की डेट में सबसे अच्छा तोहफा आपको क्या मिला है?
1: तोहफे तो काफी सारे मुझे मिले हैं, लेकिन अगर सबसे बेहतरीन अगर मैं तोहफा या फिर सबसे, तो मेरे मेरे मामा जी की दी हुई जो घड़ी है वो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि शादी के बाद में, मतलब बहुत साल के बाद में, मतलब जब मामा जी एक बार मुझे मिलने आए थे, तो पता नहीं उनको, मतलब उन्होंने बोला था कि ना बेटा अच्छे से रहना, पता नहीं अभी हम लोग बूढ़े हो चले हैं तो मुलाकात होती है नहीं होती है, मुझे पता नहीं उनको कैसे पता चल गया था। और उस वक्त वो मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए और मेरी बहन के लिए, हमारे लिए तीन घड़ियां लाए थे। और बाद में विद इन फोर फाइव डेज मतलब उनकी डेथ हो गई, तो वो घड़ी आज भी मेरे साथ में है। और जब, मतलब वो मेरे मामा जी की मेरे लिए सौगात है, और जब भी मैं उस घड़ी की तरफ देखती हूँ तो फील होता है कि भाई ये समय कितना कीमती है। तो बड़ा समय, मतलब सच में बहुत वैल्यूएबल होता है, तो हमको उस पर से परेशान और दुखी होकर हम लोग ना बिताए तो ही बेहतर है।
0: बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: अर्चना जी आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि कभी आपने कोई छोटी मोटी चीटिंग की है कोई एग्जाम में दुकान पर या कुछ ऐसा कुछ?
1: अरे बाप रे, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं, चीटिंग का तो कोई सवाल ही नहीं आया। मतलब मैं उन लोगों में से हूँ कि जो बिना, वो बोलते हैं ना, बिना टिकट खरीदे कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाएगी भी नहीं, और अगर टिकट खरीदने के बाद भी अगर टीसी दिख गया तो भी डर जाएगी कि अरे बाप रे, अगर टीसी अगर मुझे बुलाता है और अगर एन वक्त से अगर मुझे मेरा टिकट नहीं मिला मेरे बैग में तो मेरा क्या होगा। तो नहीं नहीं कोई सवाल ही नहीं आता था चीटिंग का। एक दो बार मुझे चांस मिल गया था बट नहीं कर पाई।
0: ओके
1: नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं।
0: आइए दोस्तों सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अर्चना जी की आवाज में।

0: और अर्चना जी, अब हम हमारे प्रोग्राम के उस जगह आ गए हैं जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कुछ कहिए।
1: सुनने वालों को मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब भी गाते हैं तो दिल से गाइए। और मैंने बहुत बार देखा है जैसे कि स्टार मेकर जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग जब अपना वीडियो बनाते हैं तो एक रिस्पेक्टफुल माहौल भी वहां पर आपको होना चाहिए आपके को सिंगर के साथ में। किसी का डुएट जब हम लोग गाते हैं तो बोलते ना कि एक प्रॉपर आपका एक पोस्चर होना चाहिए, सिटिंग पोस्चर होना चाहिए, आगे टेढ़े बैठ के कैसे भी आप, तो उसमें क्या होता है कि आपके को सिंगर का भी कहीं ना कहीं पे आप सम्मान नहीं रख रहे हो। और जैसे भी आए दिल में आप गाना बोलते ना कि प्रॉपरली प्रिपेयर होने के बाद में ही आप कोई भी आउटपुट देना, ट्राई टू गिव यू 100% टू दैट सॉन्ग, क्योंकि वो सॉन्ग के पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, वो सॉन्ग राइटर से लेके, वो म्यूजिक कंपोजर से लेके, जो सिंगर होते हैं, तो बहुत सारी चीजों से गुजर के वो सॉन्ग हमारे पास आता है। तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ में अगर आप मतलब गाना अगर आपको होगा तो रिस्पेक्ट के साथ में गाएं तो ज्यादा बेहतर है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी, जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमने आपके गीत सुने, आपसे बातें की। थैंक यू सो मच।
1: थैंक्स टू।

बेहद शानदार गायकी, बेहद शानदार टैलेंट, एक और हसीन संगीत और गीत से भरी हुई शाम के लिए कल फिर हाजिर हो जाऊंगा एक नए टैलेंट के साथ। सुनना ना भूलिएगा।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। मिथिलेश पाठक साहब हैं आज हमारे प्रतिभा, हमारे टैलेंट, हमारे सिंगर, हमारे गायक, और जो

0: प्रतिभा उनके पास है उसी तरह की उनकी शख्सियत है, उनकी पर्सनैलिटी है। आज हम उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके गीत सुनेंगे, तो दोस्तों आपको पता चलने वाला है मिथिलेश जी कौन हैं, कहां से हैं, क्या करते हैं। तो मिथिलेश जी का मैं स्वागत करते हुए उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि मिथिलेश भाई हमारे सभी सुनने वालों के लिए थोड़ा सा बताइए ना, भला आप कहां हैं, क्या करते हैं, कौन हैं आप।
1: समीर जी आपको बहुत बहुत नमस्कार और सारे श्रोताओं को भी नमस्कार। मैं मिथिलेश पाठक, मैं अभी मझवारी गांव में हूँ। मेरे गांव का नाम मझवारी है और यह बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बक्सर जिले में स्थित है।
0: बहुत खूब, और आप करते क्या हो भाई?
1: यूं तो अपना पर्सनल बिजनेस है, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी दुकान भी है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ इंसान हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी चीजों को करने में रुचि रखता हूँ।
0: बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो दोस्तों जानिए, हमारा वैसे भी एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम हम लोग शुरू करने वाले हैं, मेरा गांव मेरा देश। तो आज मिथिलेश भाई हमारे हिंदुस्तान के उन छोटे छोटे सौंधे सौंधे प्यारे प्यारे गांवों में से एक गांव से आए हैं। बहुत मजा आएगा उनसे बातचीत करने में। तो चलिए शुरू करें इस प्यारे से प्रोग्राम को और पेश करता हूं मिथिलेश भाई के ही गाए हुए ये गीतों से। लुत्फ उठाइए, जरा महसूस कीजिए उस मिट्टी की गंध को। मैं वापस आता हूं।

0: बहुत बढ़िया शुरुआत मिथिलेश भाई। तो चलिए सबसे पहले ऐसा करते हैं, आपके बारे में जानते हैं, फिर आपके संगीत के बारे में जानेंगे। जब आप छोटे थे, बच्चे थे, जब आप शायद पढ़ रहे थे, तब क्या सपने थे आपके, क्या विचार थे कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा वो बनूंगा? अपने आसपास के लोगों को शायद आप देखते होंगे, सो क्या बनना चाहते थे आप?
1: समीर जी, सपने तो यूं बहुत थे, बट सिचुएशन कह लीजिए या बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां ऐसी बनी कि शायद कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाया, लेकिन मैं छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढता रहा और पुरजोर कोशिश करता रहा कि मैं सफल हूं, और उसी मुकाम में मैंने अपने बच्चे को सफल बनाने की पुरजोर कोशिश की और उसकी शिक्षा, उसकी परवरिश पे मैंने पूरा ध्यान दिया, और उसी का नतीजा है कि आज वह केंद्रीय विद्यालय में एक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद पर कार्य कर रहा है और एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। धन्यवाद।
0: अमेजिंग, क्या बात है, क्या बात है। हाँ मिथिलेश भाई, मैं आपको ना एक बड़ी पुरानी मूवी याद दिलाना चाहूंगा। एक फिल्म थी, है, जिसमें राजेश खन्ना साहब ने एक्टिंग की और वो डायरेक्टर डायरेक्शन था ऋषिकेश मुखर्जी जी का। अब ऋषिकेश मुखर्जी आप जानते ही हैं, ये बहुत ही बढ़िया चुटीली फिल्में बनाया करते थे। तो उनकी फिल्म का नाम था बावर्ची। अब बहुत सारे लोगों को ध्यान आ रहा होगा इस फिल्म का, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मतलब पावरफुल मूवी है एक संदेश के साथ। उसमें राजेश खन्ना साहब ने एक बहुत ही प्यारा डायलॉग दिया था जो अभी अभी आपने दिया। हम लोग बड़ी खुशी के चक्कर में छोटी छोटी खुशियों को जाने देते हैं, उन्हें एंजॉय नहीं करते और बस जिंदगी यूं ही खिसक जाती है। आपने भर भर के इन छोटी छोटी खुशियों को खूब जिया, बस यही तो होती है जिंदगी मिथिलेश भाई। बहुत बढ़िया, फिर आपने पूरी ताकत अपने बच्चे के लिए लगा दी, बस जिंदगी सफल हो गई। दोस्तों देखिए ना, इतनी प्यारी सी छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करते हुए मिथिलेश भाई हम तक आ पहुंचे, या कह लीजिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज मिथिलेश भाई को सुन पा रहे हैं। तो चलिए पेश करता हूं मिथिलेश भाई के ही गाए हुए ये गीत जो उन्होंने हमारे लिए तैयार किए। आइए

0: बहुत खूब। चलिए आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं, जिससे कि लोगों को आपकी शख्सियत के बारे में और पता चले। मुझे ये बताइए कि सबसे पहली बार कहीं पर बहुत सारे लोगों के बीच में, फिर वो जैसा भी माहौल रहा हो सकता है कोई पारिवारिक माहौल हो सकता है स्कूल का कोई फंक्शन हो या और भी कोई, कब आपने पहला गीत गाया सब लोगों के सामने, याद है कुछ?
1: जहां तक गीत गाने की बात है तो कॉलेज की लाइफ में थोड़ा बहुत मैं गुनगुनाता था, लेकिन अगर सच कहूं तो अपने रिटायरमेंट लाइफ में मैंने एक्चुअली गाना शुरू किया है। और जब मेरा बच्चा सेटल हो गया, जब मैंने अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियां लगभग पूरी कर ली, तो गाने में मेरी रुचि थोड़ी और बढ़ गई है और मैं खुल के गाना गा पा रहा हूं।
0: ऑलराइट, सो इस तरीके से मिथिलेश जी की गायन जो जर्नी है, ये यात्रा है, उस तरीके से शुरू हुई। दोस्तों बहुत खुल के गाना शुरू किया इन्होंने जब अपनी कमान अपने हाथ में संभाली। भाई वाह, तो लीजिए आगे बढ़ते हुए उनके इन गीतों का आनंद तो उठाइए जो मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने अभी।

0: बहुत खूब मिथिलेश भाई, बहुत खूब। चलिए आपकी संगीत के बारे में, आपकी मोहब्बत जो संगीत के प्रति है, आपका पैशन जो संगीत के लिए है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हुए, किस तरह का संगीत पसंद है आपको? मतलब फोक म्यूजिक, भोजपुरी, बॉलीवुड, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, भजन, किस तरीके का म्यूजिक आपके दिल को ज्यादा पसंद है? मैं मानता हूं सभी तरीके का म्यूजिक आपको पसंद होगा, फिर भी बताइए ना
1: जी। इस मामले में मैं बहुत ज्यादा पार्टिकुलर नहीं हो सकता हूं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सभी तौर के, सभी जोनर्स के संगीत मुझे पसंद हैं, लेकिन खास करके अगर मैं कहूं तो देशभक्ति के अलावा भोजपुरी गाने और जो हमारे जैसे कि रीजनल जो भी हमारे म्यूजिक होते हैं उनमें मेरी थोड़ी खास रुचि है।
0: ओके, तो जाहिर सी बात है भोजपुरी। और मैं आपको सच बताऊं मिथिलेश भाई, मैं बहुत समय से सोच रहा था, क्योंकि बनारस में ही पढ़ाई लिखाई मेरी हुई, तो थोड़ा एक कनेक्शन बना हुआ है कि भोजपुरी गीतों का एक प्रोग्राम बनाएं। हमारा एक प्रोग्राम है भी, रीजनल प्रोग्राम आज के कलाकार का, तो अगर आपको भोजपुरी गीतों में आपका कुछ दखल है तो हमें मौका दीजिए ना, भोजपुरी गीतों का एक प्रोग्राम बनाते हैं, क्या कहते हैं?
1: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूँ।
0: बहुत मजा।
1: और मैं चाहता भी हूँ कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो लोकल गीत हैं, कहीं ना कहीं उसकी जो पहुंच है वो उस तरीके की नहीं है, या फिर उसका जो प्रेजेंटेशन है वो उस तरीके का नहीं है। तो इस मामले में मैं जरूर काम करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि भोजपुरी का जो एक दूसरा पहलू है वो मैं लोगों के सामने लेकर आऊं।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो लीजिए दोस्तों, मजा आ गया। अब समझिए भोजपुरी गानों का प्रोग्राम मिथिलेश जी के हवाले, बहुत मजा आएगा, बड़े प्यारे प्यारे गीत सुनने में आएंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही एनर्जी से भरे हुए गीत होते हैं ये दोस्तों। लेकिन अभी रुकिए, चलते हैं, पहले तो सुनते हैं मिथिलेश जी की ही आवाज में गाए हुए ये प्यारे से गीत, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत खूब, अमेजिंग, मजा आ गया साहब, बहुत बहुत ही प्यारे गीत। मिथिलेश जी, अपने किसी दो प्यारे से दोस्तों के बारे में बताइए ना, कौन है जो वो, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड, मैं मानता हूं, लेकिन कौन है वो जिन्होंने आपको हमेशा प्रोत्साहन दिया, आपको सपोर्ट किया, कई बार आपकी गलतियों को भी सुधारा होगा, कौन है वो लोग? तो अगले जो गीत हैं हम उन्हीं को समर्पित करेंगे, उनके बारे में बताइए ना
1: जी। समीर जी, मेरे सबसे खास दोस्त में आते हैं राजन लाल, जिनको कि मैं राजीव रंजन सिन्हा, उनको यहाँ गांव के लोग जानते हैं। और वो मेरे खास मित्र में से बहुत ही एक हैं, और अब हालांकि वो नहीं है, लेकिन जब भी मुझे जरूरत होती थी या मेरे सुख दुख में वो हमेशा शामिल रहते थे, और आज भी मैं उनको याद करके बहुत ही भावुक हो जाता हूँ।
0: ओके, और दूसरे?
1: जहां तक मेरे दूसरे दोस्त की बात है तो वो नीलांबर मिश्र हैं, जो कि अपने गांव के ही हैं, और वो भी मेरे दुख सुख में हमेशा ही शामिल रहते हैं और हमेशा मेरी खोज खबर लेते रहते हैं और हर परिस्थिति में मेरे साथ वो खड़े रहते हैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब भाई, वाह क्या बात है। तो आइए दोस्तों, अगले गीत हम मिथिलेश जी के ही इन्हीं दो बहुत ही प्यारे मित्रों को समर्पित करते हैं, डेडिकेट करते हैं, उनको याद करते हुए आइए एंजॉय करते हैं ये बहुत ही प्यारे से गीत।

0: बहुत बढ़िया। तो मिथिलेश भाई, संगीत के प्रति जो आपकी मोहब्बत है, हम लोगों के बीच में आज आप आए हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपके प्यारे से गीत हमको सुनने को मिल रहे हैं, आपसे बातें हो रही हैं, लोग बाग आपके बारे में जान रहे हैं। तो बस चलते चलते आप सभी लोगों के लिए, आप पूरे हिंदुस्तान के हमारे सारे फैमिली मेंबर्स, परिवार के लोगों से जुड़ गए हैं, क्या संदेश देना चाहोगे उन सब लोगों को, बिहार से उठती हुई ये प्यारी सी मिट्टी की महक के साथ कुछ संदेश दीजिए ना।
1: अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि गांव केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि वह हमारी आत्मा का हिस्सा होता है। मेरा गांव मझवारी भले ही छोटा है, लेकिन उसकी सोच, उसकी संस्कृति और लोगों का दिल बहुत बड़ा है। मुझे गर्व है कि मैं इस गांव से जुड़ा हूं, और मैं चाहता हूं कि जो मेरा गांव है वो लगातार प्रगति करे, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर लाए, और हमारी नई पीढ़ी और अपनी संस्कृति और मूल्यों को कभी नहीं भूले।

0: बहुत खूब भाई वाह, क्या बात है। तो सबसे पहले तो मैं मिथिलेश भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, उनका आभार देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें सच मायने में गांव से जुड़ने का एक मौका दिया। मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हमारा जो प्रोग्राम आ रहा है मेरा गांव मेरा देश, उसकी बागडोर संभाले। दूसरा भोजपुरी, भोजपुरी का गानों का जो मजा है, जो टेस्ट है, वो भी हमें कराएं। मिथिलेश भाई आपका बहुत बहुत आभार है, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके दिल खुश हो गया साहब, थैंक यू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं चाहूंगा कि भोजपुरी भाषा का जो प्रचलन है, जो उसका एक दूसरा पहलू है, मैं वो चाहूंगा कि वो संगीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचे, लोग उसको एंजॉय करें और सभी लोग खुश रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी ये दिल है के इसको जुनून है।
0: दोस्तों, आज के कलाकार के इस सुरीले से सफर में बस यही तक। मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल आपके दिल में एक मीठी याद छोड़ गई होगी। दोस्तों, कुछ गीत खत्म नहीं होते, बस दिलों में बस जाते हैं, और जब भी याद आते हैं तो फिर से मुस्कुराहट बिखेर जाते हैं। तो हम फिर आएंगे नए सुरों और नए कलाकारों के साथ, तब तक अपने दिल को बस यूं ही गुनगुनाने दीजिए। नमस्कार।

शांति और ऊर्जा के साथ करने की, तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: धर्म है।
1: दिव्य दर्शन के एक और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र प्रोग्राम में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हम हमेशा बात कर रहे हैं कि ये विषय गूढ़ है, ये मजे मजे का विषय नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से हम कुछ ऐसे प्रबुद्ध इंसानों को, प्रबुद्ध व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं जिससे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ समझा हो और हमें वो उस बात को समझा सके। तो आज मेरे साथ जो मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारे साथ हैं, वो हैं अनिल गौड़ साहब। बाकी मैं अनिल गौड़ साहब से ही प्रार्थना करूंगा, उनका आभार व्यक्त करते हुए, उनका स्वागत करते हुए, कि अनिल जी अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, जिससे कि हमारे जानने वाले जो इस हमारे सुनने वाले जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो अनिल जी के साथ आध्यात्मिक तौर पर जुड़ सकें। तो अनिल जी बहुत बहुत आभार है आपका जो आप आए। अब आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें परिचय दीजिए, भला आप कौन हैं?
2: हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार आपको समीर जी। और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि आप कौन हैं, और ये जो कौन का जो जवाब है यही स्पिरिचुअलिटी में छुपा होता है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम क्यों हैं। और इसी का जवाब जब मिल जाता है लोगों को तो वो निश्चित तौर से आगे बढ़ जाता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, जो मेरा परिचय है वो ये, मैं कानपुर शहर का निवासी हूँ और आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। और जहाँ तक भगवत भक्ति की बात है, स्पिरिचुअलिटी की बात है, तो ये संवेदनाओं का विषय है। और चूंकि मैं कलाकार हूँ तो जाहिर सी बात है कि कलाकार संवेदनशील होता है और वो आसपास जितनी भी घटनाएं घटती हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं कानपुर शहर में रहता हूँ, भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता हूँ, संगीत का विद्यार्थी हूँ, गीत वगैरह गाता हूँ, और साथ में एक अभियान चला रहा हूँ अपनी तरफ से कि स्पिरिचुअलिटी, धर्म, रिलीजन और इससे जुड़ी जो विषय है, जिसमें काफी कुछ भ्रांतियां भी हैं लोगों के मन में, काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सही रास्ते पर नहीं जा रही, तो क्यों ना उन्हें जागृत किया जाए अपने भजनों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से। तो वो प्रयास मैं करता रहता हूँ, मेरे लेख अखबारों में भी छपते हैं। और ये जो आपके पास, आपने जो हमें बुलाया है और इसके लिए आपने जो